ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 18वीं तिथि तदनुसार 9 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब जान लेते हैं कार्यक्रम विवरण। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 7:10 का समय है गोल्ड सुप्रभात का। 7:30 पर आज सवेरे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 पर आप सुन सकेंगे दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप कोणार्क की यात्रा तय कर सकते हैं। 1:10 का समय है कलाकार बेमिसाल का और आज के कलाकार हैं अक्षय कुमार। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत.com। 3:10 का समय है मन भावन का। 4:30 पर कार्यक्रम परिक्रमा आप सुन पाएंगे और 5:10 का समय है गाते गुनगुनाते कार्यक्रम का। 6:30 पर मार्केट मंत्रा और 7:10 पर सुर्खियों में सुन सकते हैं। 8:10 पर मधुरिमा, 9:30 का समय है चर्चा का विषय। 10:30 पर आप सुनेंगे हर श्रृंगार और 11:40 का समय है गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम का। 8:40 आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35

0: हजार करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's unified payments interface, UPI, is the undisputed champion of the success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without

आध्यात्मिक जीवन में एक दिन की प्रार्थना या ध्यान से सब कुछ नहीं बदल जाता, लेकिन प्रभु का स्मरण और स्वयं को समझने का प्रयास जब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगता है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं अर्पण, उर्वशी के साथ सुप्रभात।

जिस तरह समुद्र की कितनी भी ऊंची लहर हो आखिरकार शांत होकर किनारे से गुजरती हुई वापस सागर में मिल जाती है, मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। जीवन में विचारों और भावनाओं की लहरें उठती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे मन अपने मूल की ओर लौटना सीख लेता है। यही जीवन का सार है। 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण, समय 6:17 और 32 सेकंड।

कहते हैं मनुष्य के भीतर शिव और शक्ति दोनों के अंश मौजूद हैं। शिव की तरह शांति, धैर्य और चेतना, और शक्ति की तरह साहस, ऊर्जा और सृजन। जीवन का संतुलन भी इन्हीं दोनों को पहचानने से और अपने भीतर महसूस करने में है। सुनते रहिए अर्पण FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:30 हो चुके हैं। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं अर्पण। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा ज्ञान और समझ बढ़ती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपेक्षाएं, तर्क, शंकाएं भी जुड़ने लगती हैं, और कई बार यही समझ, यही ज्ञान ईश्वर और हमारे बीच भी आ जाता है। इसीलिए अगर ईश्वर के और करीब जाना है तो अपने भीतर बच्चे जैसा निस्वार्थ प्रेम और गहरा विश्वास बनाए रखना होगा, जहां संदेह के लिए कोई जगह ही ना हो।

0: इंसान के लिए जितना ज़रूरी संसार को समझना है, उतना ही ज़रूरी अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझना भी है, अपने भावों के अर्थ और उद्देश्य को समझना। क्योंकि जब हम खुद को समझने लगते हैं तो दुनिया को देखने का नज़रिया भी गहरा होता जाता है, संसार से जुड़ाव भी बढ़ता है और शायद यही हमें ज़िंदगी को और खूबसूरती से जीना सिखाता है।
1: People to ignore philosophical complications and contradictions and focus on experiencing the divine. If you seek sincerely, you will find him. Just look into yourself. You don't have to run for idols or books or sermons or rites. Call him and he will answer. This led Kabir to declare,

कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, कुछ नहीं सामने नज़र आता जहाँ पर हम जा सकें, कोई रास्ते बन सकें, पर ऐसे में भी एक विश्वास होता है मन में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ही सही रास्ते ज़रूर नज़र आएंगे। और इसी विश्वास को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो चलिए ये विश्वास हम में यूं ही बढ़ता रहे। अब सुनते हैं FM गोल्ड पर आगे रामचरितमानस।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है,

अभी आप सुन रहे थे एफएम गोल्ड पर रामचरितमानस, और अब वक्त है हिंदी, अंग्रेजी और फिलहाल संस्कृत में समाचारों का।

0: विनिमयाः अभिलेखिताः। सः सबलं प्रतिपादितवान् यत् धनविनिमयव्ययस्य न्यूनीकरणाय वित्तीयप्रौद्योगिकीप्रणालीषु वैश्विकसहकारः नूतनं लक्ष्यं भवितव्यम्।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतेन नवोन्मेषं सर्वसमावेशितान् च केन्द्रे निधाय वित्तीय प्रौद्योगिक्याः यात्रा नूतनानि शिखराणि प्रति नीता अस्ति। असौ उक्तवान् यत् एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम चेत्यादयः प्रविधयः वित्तीयक्षेत्रे नवीन सम्भावनानां द्वाराणि उद्घाटयन्ति। चतुर्दिवसीयम् ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्येतत् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य एकादश दिनांक पर्यन्तं मुंबई नगरे आयोजितः अस्ति। ध्यातव्यमिदं यत् फेस्ट इदं ह्यः एव आरब्धमासीत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् संकटकाले भारतं सर्वदा दृढतया श्रीलंकायाः पक्षे स्थास्यति। सः उक्तवान् यत् भारत श्रीलंका देशयोः सम्बन्धाः समान इतिहास संस्कृति आस्थासु आधारिताः सन्ति। भारतीय प्रवासी समुदायेन सह संवादावसरे सः एतत् उक्तवान्। असौ एतदपि कथितवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये घनिष्ठाः सांस्कृतिकाः रिक्थसम्बद्धाश्च सम्बन्धाः सन्ति, येन द्विपक्षीय सम्बन्धानां विकासाय सुदृढाधारः प्रदत्तः अस्ति। श्रीसिंहः कोलम्बो नगरं प्राप्तवान्। ध्यातव्यमिदं यत् तत्र असौ श्रीलंकायाः शीर्षनेतृत्वेन सह वार्तां करिष्यति। भारतस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः दीपक मिश्रः कटकनगरे सरला साहित्य सांसदा कलिंगरत्न पुरस्कारेण सम्मानितः अस्ति। पुरस्कारे देवी सरस्वत्याः रजत प्रतिमा, प्रशस्तिपत्रञ्च सम्मिलिते स्तः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणाः न्यायमूर्तिः मिश्रः उक्तवान् यत् मनुष्यः जीवने कियत् दूरमपि गच्छेत् तथापि जन्मभूमेः मृत्तिका, तस्य स्मृतिं, परिचयं, सांस्कृतिक परम्पराञ्च निरन्तरं निर्माति। संविधानस्य उल्लेखं कुर्वन् न्यायमूर्तिः मिश्रः प्रस्तावनायां वर्णितं बन्धुत्वम् एकं जीवन्तनैतिक सम्बन्धं वर्णितवान्। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रालयेन अद्य वाराणस्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय पोषण मासस्य शुभारम्भः करिष्यते। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य उपस्थितौ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इत्यत्र अस्य अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे राष्ट्रिय पोषण मासस्य विषयो वर्तते अस्माकं आंगनवाड़ी केन्द्राणि अस्माकं दायित्वम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया।

0: बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में जिस गतिविधि की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो अब रोजमर्रा की वास्तविकता बन गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। कनाडा ने अमेरिका के 600 से ज्यादा वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात भी शामिल है। अमरीका के लगभग 700 उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और क्वाइन ऑपरेटेड आर्किड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल हैं। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉ. मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सामालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एरिना सामालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशलिनसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: Bharat ki fintech story adbhut rahi hai, aur iska ek bada champion hai. हमारा यूपीआई, मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas

आपको पता है जैसे ये बिल्कुल सही है ना कि जब हम अच्छा फील करते हैं तो मुस्कुराते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये भी बिल्कुल सही है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो अच्छा फील करते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं उर्वशी के साथ गोल सुप्रभात में। नमस्कार।

7:16 और 32 सेकंड हो चुके हैं। गोल सुप्रभात में आप हैं उर्वशी के साथ। और आज आपने तारीख पे नज़र डाली हो तो आज है 9 सितंबर, यानी 9-9। आज की तारीख में 2-9 आ रहे हैं। अब बहुत से लोग इसमें बहुत सारे मतलब निकाल लेते हैं, बट मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें नोटिस करने के लिए होती हैं। हमेशा हर चीज़ में मतलब निकालना ज़रूरी नहीं होता। फिलहाल आज के मौसम की बात कर लें तो आज थोड़ा सा गर्म और हेज़ी मौसम का रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए दिन में बाहर निकलते हुए पानी ज़रूर साथ रखिएगा, एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और वैसे मौसम चाहे जैसा भी हो, हाइड्रेशन का नोटिफिकेशन तो बॉडी खुद ही भेजती रहती है, इसलिए चेक करते रहा करिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सात बजकर 24 मिनट और 37 सेकंड हो चुके हैं। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं गोल्ड सुप्रभात में। दोस्तों, एक दिन हेल्दी खाना अगर मिस कर दिया तो ऐसा नहीं है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, और एक दिन बहुत हेल्दी खा लिया तो ये भी गारंटी नहीं है कि हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि लाइफ में फ़र्क अक्सर एक दिन से नहीं बल्कि रिपीटेशन से पड़ता है। एक बार की अच्छी या बुरी हैबिट शायद कुछ बड़ा चेंज ना कर पाए, पर वही आदत अगर रोज़ रोज़ रिपीट करने लगे हम तो धीरे धीरे वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाती है, और फिर लाइफस्टाइल जब बन जाती है तो वो लाइफ को अच्छी एक डायरेक्शन तय करने लगती है उसकी। तो सवाल ये नहीं है कि आज हमने क्या खाया, सवाल ये है कि जो हम अच्छा आज खा रहे हैं क्या वो रिपीटेशन में है, क्या वो हम दोहरा रहे हैं।

अभी जब गाना सुन रही थी ना, तो आंचल फट सुन के बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा था, क्योंकि आजकल साड़ी दुपट्टा पहनना काफ़ी कम होता जा रहा है। अब क्या करें भाई, लाइफ इतनी फास्ट है ना, तो फास्ट लाइफ में आजकल आसपास क्या चल रहा है, चलिए ये भी जान लेते हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। मैं मिलती हूँ आपसे 8:45 पर FM गोल्ड पर।

0: कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रमुख स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मनुष्य को आलस्य का त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी कहती हैं कि इंसान को अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को याद करके ठंडी सांसें नहीं भरनी चाहिए। जब हृदय में दृढ़ संकल्प और कुछ करने की आग होगी, तभी आंखों में आने वाले मनुष्य के आंसू भी सार्थक हो जाएंगे।
1: True.
0: कवित्री मनुष्य के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहती हैं कि यदि इस सफलता रूपी साधना के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े, तो वो तुम्हारी हार स्वाभिमान और विजय की पताका बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख तो हो जाता है, लेकिन वो राख उस अमर दीपक की निशानी बन जाती है। महादेवी आगे कहती हैं कि हे कर्तव्य पथ के साधक, तुम्हें संघर्षों और कांटों रूपी अंगारों की शैया पर अपने कोमल मन से प्रेम और शांति के फूल बिछाने हैं, अर्थात तुम्हें विपरीत परिस्थिति

0: आंखों में भी अपना धैर्य और कोमलता बनाए रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो श्रोताओं, सफलता के सौंदर्य रस से सनी हुई इन स्वर्णिम पंक्तियों को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए सफलता के मार्ग पर, मनुष्यता के मार्ग पर। आज के इस दिन की खूबसूरत और सुहावनी प्रभात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक में आपके साथ आज मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीवन। वेल, इट इज अ ब्रांड न्यू डे, अ क्लीन स्लेट, एंड योर ऑफिशियल रिमाइंडर दैट यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग व्हाटएवर दिस डे थ्रोस एट यू। यू डिडंट वेक अप टुडे जस्ट टू बी एवरेज, यू वोक अप टू मेक थिंग्स हैपन। एंड लिसनर्स, आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड दैट वर्ल्ड इज बिजी, loud and also constantly telling you what you can't do, but right here, right now, we are changing the narrative with those lines that Mukesh shared and me, Shagun Chopra, I also shared with you. This is Aaj Savere, and first we will begin today. It's actually 9th of September,
0: 9/9/2026.
1: Exactly. 9/9/10. If we add 2026 the digits, it may, it adds up to 10. So that as well, I had to point it out.
0: तो ये तो आज के दिन का एक तथ्य भी जो शगुन ने हमें बताया, लेकिन इसके बाद हम शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ इस कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि फिनटेक की चर्चा UPI के बिना अधूरी रहेगी।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है, और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि केवल अगस्त महीने में UPI के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि UPI केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। उन्होंने कहा कि UPI अब 11 देशों में उपलब्ध है।
1: 11
0: जी, तो ये तो बात हुई UPI की, और हम देख सकते हैं कि UPI का आज के हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग जो है कितना व्यापक होता जा रहा है।
1: राइट, 24/7 ट्रांसफर्स, नो बैंक डिटेल्स नीडेड, हाई सिक्योरिटी एज वेल।
0: वरना एक समय अगर हम बात करें तो आज से एक दशक पहले की तक हम जाएं तो बैंक से भी यदि हमें पैसे निकालने हैं तो उसके लिए कितनी लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था और कितना जूझना पड़ता था, उस भीड़ से
1: टीडियस प्रोसेस वी कैन से।
0: बिल्कुल, और अब वर्तमान सरकार में इन चीज़ों को, इन प्रक्रियाओं को बिल्कुल सरल बना दिया गया है। और इसका ही एक उदाहरण अभी जैसा हम बात कर रहे हैं, श्री मोदी जी ने बताया कि UPI कैसे विश्व पटल पर अपनी सफलता की कहानी लिख रहा है, और भारत का इसमें एक अहम योगदान है।
1: एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों आल्सो अप्रिशिएटेड।
0: बिल्कुल।
1: एंड नाउ वी विल मूव ऑन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड दैट इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड फर्मली विद श्रीलंका इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अंडरलाइनिंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड फेथ। Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden three-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship.
0: उधर छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने वर्ष 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारण्य ने स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजा कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
1: The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today, Poshan Maah. And Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. We have a detailed report.
3: The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centres, schools, panchayats and homes across the country with community partners.

0: Participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. Nutrition Month 2026 will highlight dietary diversity and adequate protein, fresh hot cooked meals at Anganwadi centers, community ownership and accountability, education for nutrition and early childhood development, and completion of 10 years of the Pradhan Mantri Matrivandan Yojana. The inaugural event in Varanasi will feature a nutrition fair, a video presentation based on beneficiaries' experiences, and a dialogue between the Union Minister and Anganwadi workers. Union Minister of State Savitri Thakur and the State's Minister for Women's Welfare, Child Development and Nutrition, Baby Rani Maurya, will also be present. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: Meanwhile, Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Anganwadi workers and helpers. State government has issued an order in this regard. As per the order, an additional increase of 4,000 rupees per month has been made in the state share of Anganwadi workers and 2,000 rupees per month in the state share of helpers. Following this revision, Anganwadi workers will receive a total honorarium of 12,000 rupees per month, while helpers will receive 6,000 rupees per month.
2: जी बिल्कुल, ये तो बात हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की। और अब श्रोताओं को जानकारी देते हैं खेलों की दुनिया की। तो अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना साबालेंका और पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। एरिना ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की खिलाड़ी को हराया। वहीं फ्रांसिस ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया।
1: मुकेश, द इंडियन कंटिंजेंट फॉर द एशियन गेम्स 2026 रिसीव्ड अ ग्रैंड सेंड ऑफ इन न्यू दिल्ली यस्टरडे इन द प्रेजेंस ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉ मनसुख मांडविया। सो डॉ मांडविया अलोंग विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट P.T. Usha, Sports Secretary Hariranjan Rao, and Chef the Mission Sahadev Yadav unveiled the official jersey of the Indian contingent in the presence of athletes and the support staff. The Ministry of Youth Affairs and Sports informed that the Asian Games 2026 will be held in Japan, where the Indian contingent will compete across multiple sporting disciplines. And this is a 503-member contingent, which includes athletes and support staff, with more than 300 athletes set to make their debut at the Asian Games. And this reflects the growing depth and bench strength of Indian sport.
2: Jee.
1: 503-member.
2: Bilkul.
1: Along with that, we also have the update about Indian para archers. They will be in hunt for multiple medals. This update is about World Archery. Para series in Ahmedabad today, and they compete in several gold and bronze medal matches across different events. In the para recurve mixed team gold medal match, India's Bhavna and Harvinder Singh will take on China's Liang Qirong and Xie Li. In the final, India's Sheetal Devi will have another opportunity to claim gold when she faces Aizada Sedan of Kazakhstan.
2: और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा की संभावना है। आने वाले दिनों में होने जा रही इस वर्षा से कमज़ोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित करने की भी संभावना है। इसके कारण सितंबर के बीच में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। उपग्रहों से प्राप्त ताज़ा तस्वीरों में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में बादलों में उल्लेखनीय रूप से कमी दिखाई दी, जबकि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा लाने वाले बादलों के समूह सक्रिय बने हुए हैं। किसानों के लिए वर्षा का ये समय महत्वपूर्ण होगा अगर हम बात करें शगुन तो, क्योंकि विशेष रूप से अनियमित मानसून के बाद सितंबर की वर्षा मिट्टी की नमी बनाए रखने और फसलों के महत्वपूर्ण विकास चरणों के दौरान सहायता के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए ये किसानों के लिए एक बेहद खास समय जो है माना जा रहा है। तो ये तो श्रोताओं हुए अब तक के मुख्य समाचार। और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली से।
1: जी,
2: असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम MCD ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही और MCD आयुक्त संजीव खेरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों की पहचान करने, जोखिम के स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करने तथा कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जहां आवश्यक हो सीलिंग और ध्वस्तीकरण सहित तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सरकार पेइंग गेस्ट आवास विनियमन और सुरक्षा विधेयक लेकर आएगी। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पेइंग गेस्ट संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा, संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय जीओवी पीजी पोर्टल की व्यवस्था करना है। और यूजीसी नेट की पुनर्परीक्षा आज और कल होगी। इस परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा में शामिल होने जा रहे दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए यूजीसी नेट द्वारा एक सलाह भी जारी की गई है। निर्देश में आगामी राजधानी में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना बताई गई है। वहीं विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे अपने प्रवेश पत्र में बताए गए रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुरूप ही अतिरिक्त समय लेकर अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचें।
1: नाउ
2: बेंगलुरु से आपके पास क्या समाचार है शगुन?
1: राइट मुकेश, Karnataka Minor Irrigation and Science and Technology Minister Dr. Ajay Dharam Singh met ISRO Chairman Dr. V. Narayanan in the Space Agency headquarters in Bengaluru and congratulated him on the recent success of EOS 05 Earth Observation Satellite launch. The minister equated the successful launch as another important milestone in India's scientific and technological capabilities. He extended the state government's support for the growth of space science in the country. He further said that its policy is to encourage space sector research, space tech, deep tech, space startups and emerging technologies. Well, this was for the successful launch of EOS 05 Earth Observation Satellite.
2: Ji. और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र सरकार ने आगामी गणेशोत्सव के दौरान कोंकण जाने वाले श्रद्धालुओं को ले जाने वाले वाहनों को टोल शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। ये छूट 11 से 27 सितंबर तक मुंबई बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 और कोंकण जाने वाली अन्य सड़कों के टोल प्लाजा पर लागू होगी। अटल सेतु के रास्ते कोंकण जाने वाले वाहन भी टोल में छूट प्राप्त कर सकेंगे। श्रद्धालु पुलिस स्टेशनों, यातायात पुलिस चौकियों और आरटीओ कार्यालयों से गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन अंकित विशेष स्टिकर या प्राप्त जो पास हैं ये वो प्राप्त कर सकते हैं। ये पास वापसी की यात्रा के समय भी मान्य रहेगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी, अर्ध सरकारी और अन्य क्षेत्रों में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए 5% आरक्षण प्रदान करने वाली संशोधित नीति को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 2026 से 31 के दौरान राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रगति, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का उन्नत शासन और सुलभ प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ पुनर्कल्पना परियोजना को भी मंजूरी दी। इसमें एशियाई विकास बैंक से ऋण और परियोजना में राज्य की हिस्सेदारी शामिल है। और पुणे स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो, जिला महिला और बाल विकास विभाग और पालघर जिला परिषद के सहयोग से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आज से 3 दिन का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पोषण, शिशु देखभाल, आंगनवाड़ी सेवाओं और सरकारी योजनाओं पर केंद्रित सूचना और फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।
1: Now we will turn our attention to Hyderabad.
2: जी.
1: And this update is actually about Young Filmmakers Challenge 2026. Telangana Minister Komati Reddy Venkat Reddy called upon young content creators to make the most of the Bathukamma Young Filmmakers Challenge 2026. So this is an initiative which is designed to showcase youth talent while also promoting Telangana's rich culture globally. So unveiling the official event poster, the minister highlighted that this initiative is an ideal platform for emerging filmmakers or students and artists. And this competition encourages participants to produce short films, music tracks and promotional videos highlighting the cultural essence of the Bathukamma festival, regional folk arts as well and also the traditional heritage.
2: और कोलकाता नगर निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 1 से 7 सितंबर तक चले एक सप्ताह के अभियान में शहर भर में 5,900 से अधिक रेस्तरां, भोजनालयों और मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। नगर निगम ने स्वास्थ्य स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने और घटिया बासी भोजन साथ ही सड़ी हुई मछलियों और मांस परोसने के आरोप में 40 प्रतिष्ठानों को निलंबन नोटिस इस संबंध में जारी किए हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं

0: कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और शगुन के साथ। अब जानते हैं आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई की अगर बात करें तो वहाँ आज आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान आज 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी आज बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर में अगर तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: Chennai is said to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius, while the maximum temperature it is expected to be around 37 degrees Celsius. Bengaluru will have a partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature in Hyderabad will be around 25 degrees Celsius, while the maximum may reach 33 degrees Celsius in Hyderabad. Mukesh.
0: जी, और श्रोताओं अब वक्त है अतीत में हुई इन प्रमुख घटनाओं के बारे में जानने का जिन्होंने आज के दिन अपनी विशेष पहचान दर्ज की। आज 9 सितंबर है।
1: So yes, the year that we are beginning with is 1776. The United States got its name. The Continental Congress officially adopted United States of America, replacing United Colonies.
0: और इसके बाद बरस 1791 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी बनी। इस दिन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर इसका नाम रखा गया था।
1: In 1850, California became a state and was admitted to the Union as the 31st U.S. state.
0: और 1915 में उड़ीसा के काप्टेवाड़ा में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष भी आज ही की तारीख को शुरू हुआ था। 1920 में इसके 5 बरस बाद अलीगढ़ को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था।
1: In the year 1948, North Korea was established. The Democratic People's Republic of Korea was formally proclaimed. In 2015, Queen Elizabeth II became Britain's longest reigning monarch. She surpassed the previous record held by Queen Victoria.
0: और इससे 6 साल पहले यानी कि बरस 2009 में रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी। और इसके बाद 1 साल बाद 2010 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय भी लिया गया था। 2011 की अगर हम बात करें तो श्रोताओं ये एक महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि पुरावैज्ञानियों ने एक अवशेष ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा का इसी साल में पता लगाया था। ये मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज है जो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था। ये बंदर जैसा दिखता था। वैज्ञानिकों को ऑटिज्म से जुड़े 2 अलग अलग जैविक तनाव का पता चला है, जिनके बारे में उनका दावा है कि इससे बीमारी के प्रभावी इलाज का विकास हो सकेगा। इन खोजों की तुलना 1960 के दशक में हुई कैंसर के विभिन्न प्रकारों की खोजों से की जा रही है, और उम्मीद है कि इनसे ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों के संपर्क, सामाजिकरण और अन्य समस्याओं को अधिक सुलभता से और जल्दी से निपटाया जा सकेगा।
1: जी
0: जी, और अब बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो इस कड़ी में शुरुआत करते हैं लाला जगत नारायण से। हम याद कर रहे हैं आज उन्हें। वे प्रसिद्ध पत्रकार और हिंद समाचार समूह के संस्थापक थे। वे कांग्रेस और आर्य समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लाला जगत नारायण छुआछूत के विरोधी और महिला अधिकारों के पक्षधर थे। 80 के दशक में जब पूरा पंजाब आतंक की आग से झुलस रहा था, उस दौर में भी कलम के सिपाही और देश भावना से प्रेरित लाला जी ने अपने बेबाक लेखन से आतंकियों के मंसूबों को उजागर किया और राज्य में शांति कायम करने के भरसक प्रयास किए।
1: टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग कैप्टन विक्रम बत्रा, अ सिंबल ऑफ करेज एंड सैक्रिफाइस। वेल, He made the supreme sacrifice, and for his exceptional courage and leadership, he was posthumously awarded the Param Veer Chakra, and he became one of the most remembered heroes of the Kargil War. Mukesh.
0: जी बिल्कुल। इन्हीं के जैसे जो अगर हम बात करें विक्रम बत्रा और इन्हीं के सरीखे कई ऐसे सैनिक हुए जिनकी वजह से आज हिमालय जो है देश का ताज जिसे हम कह सकते हैं, उसके चेहरे पर उसके मस्तक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है।

0: है.
1: That is rightly said. His story continues to represent courage, leadership, duty and selfless service actually. These values continue to inspire generations.
0: विक्रम बत्रा को सन 1999 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2021 में इन पर एक फिल्म शेरशाह भी बनी थी.
1: जी.

0: और आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार राम वृक्ष बेनीपुरी की। बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 8 वर्ष जेल में बिताए। इन्होंने कई समाचार पत्र भी निकाले, जिनमें वर्ष 1929 का युवक नामक समाचार पत्र प्रमुख है। इसके अलावा आज ही पुण्यतिथि है भारत में दुग्ध क्रांति, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसके जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर कुरियन को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। भारत सरकार ने वर्गीज कुरियन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अलंकरणों से सम्मानित किया। इसके अलावा भी विश्व स्तर पर उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं।
1: लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग रामास्वामी कृष्णमूर्ति। वेल, ही इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम व्हिच इज कल्कि, द राइटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड द इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट आल्सो। ही रोट इन तमिल। ही चोज द पेन नेम कल्कि, द फ्यूचर इनकार्नेशन ऑफ द गॉड विष्णु। ही फाउंडेड अ मैगजीन एज वेल व्हिच वाज नेम्ड कल्कि। And Krishnamurti's writings, they include 120 short stories, 5 novels, 3 historical romances, as editorial as well, and political writings, and hundreds of film and music reviews. Today, it's his birth anniversary.
0: और हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र सामने आए, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में ही होता था। ऐसे दौर में भारतेंदु ने देशवासियों के मन के भीतर हिंदी की अलख जगाई, तो इसीलिए वे अपने स्वनाम से ही धन्य हैं, अगर हम बात करें तो।
1: जी, द विजनरी पोएट, प्ले राइट एंड थिंकर, लेड द फाउंडेशंस, एज यू राइटली सेड, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर, वाइल फियरलेसली यूजिंग हिज पेन टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड द चैलेंज एंड एक्चुअली चैलेंज द इनजस्टिसेस ऑफ द कॉलोनियल रूल एज वेल।
0: बिल्कुल। अगर हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कृष्ण चरित्र इनमें शुमार हैं।
1: Today we are also remembering Otis Ray Redding Jr., the singer and songwriter. He's regarded as one of the greatest singers in the history of the popular music and seminal artist in soul music and rhythm as well as blues.

और श्रोताओं, आज ही जयंती है भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब रमजान खान की। हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया। वो युवावस्था में मुंबई आए और एक स्टूडियो में काम करने लगे। महबूब खान ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1927 में प्रदर्शित फिल्म अलीबाबा एंड 40 थीव्स से अभिनेता के रूप में की। इस फिल्म का ये गीत आपके सामने प्रस्तुत है।

बहुत कम लोगों को ही शगुन पता होगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा के लिए महबूब खान का अभिनेता के रूप में भी चयन हुआ था। वर्ष 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया महबूब खान की सर्वाधिक सफल फिल्मों में शुमार की जाती है। सुनते हैं इस फिल्म का ये एक गीत।

और श्रोताओं, अब चलते चलते मना लेते हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार का जन्मदिन। अक्षय कुमार 100 से अधिक फिल्मों हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, मोहरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के कारण अक्षय कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो माना जाता है। इन्होंने खिलाड़ी कुमार के नाम से भी अगर हम शगुन बात करें तो दर्शकों में ये खास लोकप्रिय हैं। अक्षय 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। वर्ष 2009 में अक्षय को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अक्षय को फिल्म रुस्तम से उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था।

0: गाना पार्श्व में सुन रहे हैं ये इसी फिल्म यानी कि रुस्तम से उन पर फिल्माया गया है।
1: यस मुकेश, एंड वेल यस वी नो अक्षय कुमार फॉर हिज आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस टू हिज अनफॉरगेटेबल एक्शन, दिस इंक्लूड्स कॉमेडी एज वेल, ग्रेट कॉमिक टाइमिंग एंड ड्रामा एज वेल।
0: उसमें मेरी पसंदीदा की अगर बात करूं तो खट्टा मीठा में जो उनका एक रोल उन्होंने निभाया वो दिलचस्प है।
1: आई आल्सो एग्री विद यू एंड अक्षय हैज ट्रूली रूल्ड हार्ट्स अक्रॉस जनरेशंस।
2: गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
0: श्रोताओं अब चलते चलते आज का सुविचार की देश की मिट्टी को हमेशा अपने मस्तक पर अलंकृत करना चाहिए क्योंकि यही वो रज है जिससे आप ईश्वर के समक्ष भी और समाज के समक्ष भी मान पाते हैं।
1: well तो said.
0: इसी सुविचार के साथ मुकेश और शगुन को दीजिए आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण

0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible This is the

0: BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
2: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
4: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

0: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मॉनसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगड़ राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज यूपीआई इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ इंडियाज फिनटेक सक्सेस स्टोरी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिस्क्राइब्स इंडियन कम्युनिटी इन श्रीलंका एज इम्पॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज। US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Frances Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
4: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी।

0: शाहराह नंबर 66 पर 6 लेन वाले 5 किलोमीटर से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 641 करोड़ रुपए की लागत आई है। उम्मीद है कि इससे पणजी और रियासत के शुमाली हिस्से के दरमियान ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। ये राहदारी आम ट्रैफिक के लिए 11 सितंबर को शुरू कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उम्मीद है कि इस राहदारी से रोजाना 75,000 से 80,000 गाड़ियां गुजरेंगी। इस तरह मौजूदा सड़कों से तकरीबन 60% गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद मापुसा पणजी के मसरूफ रास्ते पर गाड़ियों के हजूम में कमी लाना है। ये उम्मीद भी की जाती है कि इस आम राहदारी से सयाहों और तजारती गाड़ियों की नकलो हरकत में बेहतरी आ जाएगी। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। इससे खित्ते मजीद तनाजे का खतरा बढ़ गया है। अमरीका ने कहा है कि उसकी फौज ने पिछले 2 दिन के दौरान अमरीकी बहरी जंगी जहाज पर ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाबी इस्लामी IRGC की तरफ से किए गए हमलों के बाद ईरान के खाम तेल के 5 टैंकरों को तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने उर्दुन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले 2 दिन के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीका के बहरी जंगी जहाज को निशाना बनाने की 2 बार कोशिश की, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। उधर IRGC ने बहरीन और कुवैत की बंदरगाहों के करीब टैंकरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कनाडा ने 600 से ज्यादा अमरीकी अशिया पर 50% तक जवाबी महसूलात आयद कर दिए हैं। इस तरह दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक तिजारती तनाजे को हवा मिल गई है। अमरीकी अशिया पर यह महसूल कल रात से लागू हो गया है। मुतासरा अशिया में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मादे, टॉयलेट पेपर जैसी घरेलू लाजमी अशिया शामिल हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी एजेंसियों को हुक्म दिया है कि वो कनाडा की अशिया की सरकारी खरीद उस वक्त तक बंद रखें जब तक कनाडा अमरीका के ताजिरों और किसानों को कनाडा की मार्केट में बराबर की रसाई फराहम नहीं कर देता। छत्तीसगढ़ में कनकेर की एक अदालत ने 5 माओनवाजों को सजाए कैद सुनाई है। इनमें खतरनाक माओनवाज प्रभाकर और उसकी अहलिया राजे कांगे भी शामिल हैं। इन लोगों को यह सजा 2015 में हिफाजती दस्तों पर किए गए एक हमले के केस में सुनाई गई है। प्रभाकर डंडा करनिया खसूसी जोनल कमेटी DKSZC का एक कारिंदा है और उसकी बीवी राजे कांगे डिविजनल कमेटी मेंबर DVCM दर्जे के साथ इस कमेटी से मुंसलिक है। इन दोनों को 7 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। इस केस में मुलविस 3 दीगर माओनवाजों को 5-5 साल की सजाए कैद सुनाई गई है। ये केस 2015 का है जब माओनवाजों के एक ग्रुप ने हिफाजती दस्तों की एक टीम पर हमला कर दिया था। भारत में जुनूब मगरबी मानसून के खत्म होने से पहले इम्कान है कि एक बार फिर मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो। बारिश का यह सिलसिला वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत में 12 से 21 सितंबर के दरमियान जारी रहेगा। मौसमियाती रुझान से पता चलता है कि यह आइंदा बारिश मानसून की वापसी के दौरान आर्जी तौर पर इसके सरगर्म होने की अलामत है, जिसके तहत सितंबर के दूसरे निसफ में मुल्क के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ छींटा पड़ेगा। जुनूब मगरबी मानसून की वापसी का सिलसिला आमतौर पर शिमाल मशरकी भारत से शुरू होता है। इसके बाद यह सिलसिला जुनूब और मशरक की तरफ चला जाता है। महकमे मौसमियात IMD ने आज बिहार, झारखंड, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि अंडमान निकोबार जजाइर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। अमरीकी ओपन टेनिस में खवातीन के सिंगल्स की दिफाई चैंपियन और आला दर्जे की खिलाड़ी एरेना सबालिन्का सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने एक सनसनीखेज क्वार्टर फाइनल में 6ठे दर्जे की लिंदा मास्कोवा को शिकस्त दी। सबालिन्का ने कल रात एक जबरदस्त मुकाबले में 7-6, 3-6, 7-6 से कामयाबी हासिल की। मर्दों के सिंगल्स में 11वें दर्जे के फ्रांसिस तियाफो ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने जोड़ीदार अमेरिका के एलेक्स माइकलसन को 5 सेटों के एक सनसनीखेज मैच में शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला 8वें दर्जे के अमरीकी शेल्टन बेन से होगा। अहमदाबाद में आज तीर अंदाजी की आलमी पैरा सीरीज में भारत के पैरा तीर अंदाज कई तमगे जीतने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ जुमरे में बहुत से सोने और कांसे के तमगे जीतने की तैयारी में हैं।

0: फाइनल में पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम के गोल्ड मेडल के लिए भारत की भावना और हरविंदर सिंह का मुकाबला चीन के लियांग क्यूरुंग और जाई ली से होगा। साल 2026 के एशियन गेम्स के लिए भारतीय दस्ते को कल नई दिल्ली में नौजवानों की उम्र और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में शानदार अलविदाइया दिया गया। डॉक्टर मांडविया और ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पीटी उषा, खेलों के सेक्रेटरी हरिरंजन राव और शेफ दे मिशन सहदेव यादव ने एथलीट्स और माविन स्टाफ की मौजूदगी में बाजाबता जर्सी का इजरा किया। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने मुंबई में मुनक्दा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सातवें एडिशन की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि UPI अब सिर्फ भारत तक महदूद नहीं बल्कि अब ये 11 ममालिक में दस्तियाब है। इसी अखबार की एक और खबर है, वजीर आजम ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर में 22 सितंबर को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता करेंगी।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि UPI भारत की फिनटेक कामयाबी के गैर मुतनाज़े काबिल जिक्र दास्तान है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसने अपने जंगी जहाज पर किए गए हमलों के बाद खलीज फारस में ईरान के 5 तेल टैंकर्स को तबाह किया है। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा अशिया पर 50% तक जवाबी महसूल आयद कर दिया है। इम्कान है कि 12 से 21 सितंबर के दरमियान जुनूब मगरबी मानसून खत्म होने से पहले वस्ती जुनूबी मशरकी और मगरबी भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। और टेनिस में न्यूयॉर्क में आरियाना सबालिंका और फ्रांसिस टियाफो अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिजनों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। श्री सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत

0: कि जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
1: भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी। कनाडा ने अमरीका की 600 से अधिक चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद और बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने संयुक्त बयान में वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के व्यवस्थित विस्तार के बीच द्विराष्ट्र समाधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल संयुक्त बयान में कहा कि इसराइल फलस्तीन के बीच संघर्ष का द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर समाधान पश्चिम एशिया और उससे आगे शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान की शुरुआत करेंगी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of the success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
3: भारत की fintech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said, UPI is now live in 11 countries, turning what was once imaginable into an everyday reality for international payments. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. In Chhattisgarh, a Kanker court has sentenced 5 Maoists, including dreaded Prabhakar and his wife Rajay Kange, to imprisonment in a case related to an attack on security forces in 2015. Prabhakar, a cadre of the Dandakaranai Special Zonal Committee, and his wife Raja Kange, associated with Divisional Committee member

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

चला है ये जानने का कि आज की तारीख यानी 9 सितंबर क्या कुछ समेट कर लाई है खुद में। तो जनाब आज का दिन साक्षी है देश के एक ऐसे वीर सपूत की जन्म जयंती का जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 9 सितंबर 1974 को जन्म हुआ था कारगिल युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का। ये दिल मांगे मोर।

ये नारा देकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले कैप्टन बत्रा की शहादत और शौर्य गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाती है। जैसे कि ये अगला ट्रैक जब भी सुनाई देता है, मानो खून में एक उबाल सा महसूस होने लगता है ना?

और जनाब, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के साहित्य और भाषा के इतिहास में भी आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि 9 सितंबर साल 1850 को जन्म हुआ था आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान कवि, नाटककार और युग दृष्टा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। महज 34 वर्ष की अल्प मंच और पत्रकारिता को जो नई दिशा दी वो अतुलनीय है। अपनी मातृभाषा की उन्नति और स्वाभिमान पर बल देते हुए उन्होंने लिखा था, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। यानी अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की प्रगतियों का आधार है।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: और यहां यानी FM गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी।

0: चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ। 9 सितंबर और बुधवार का दिन है आज, जो उर्दू साहित्य के उस अजीम शायर को भी याद करने का दिन है जिनकी गजलों में मोहब्बत और खुददारी की एक अनोखी रवानगी थी। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 9 सितंबर 1960 को पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे, जिनका असली नाम अहमद अली जिगर तथा जिगर साहब ने इश्क और जिंदगी के फलसफे को अपनी कलम से जो शक्ल दी वो आज भी हर दीवाने दिल की धड़कन है। यकीन नहीं आता तो उनका ये शेर सुन लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और फिर अपनी खुददारी को बयां करते हुए जिगर साहब लिखते हैं कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी,

फूलों से नाजुक, फूलों से नाजुक, कलियों से प्यारे, ये बच्चे ही तो हैं देश के दुलारे। इनकी हंसी में छिपी है खुशहाली, इनकी सुरक्षा से महकेगी हर डाली। और बिल्कुल यही संदेश देता है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक बेहद अहम और संवेदनशील अभियान, जिसका नाम है मिशन वात्सल्य योजना। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हर बच्चे को सुरक्षित, ममतामयी और भयमुक्त माहौल मिलने का पूरा हक है। इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई ये योजना देश के अनाथ, बेसहारा, आपदा प्रभावित और देख रेख की जरूरत वाले बच्चों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास के लिए काम करती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है संस्थागत और गैर संस्थागत माध्यमों से हर बच्चे को एक सुरक्षित छत और उज्जवल भविष्य देना, ताकि कोई भी बच्चा अपने मौलिक अधिकारों से वंचित ना रहे। क्योंकि जब देश का बचपन सुरक्षित होगा, तभी तो भारत का कल समृद्ध होगा।

क्या बात है, बचपन की वो मासूमियत और मीठी यादें आपके भी दिल को छू गई ना। भाई देखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना आ जाए, अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा मुस्कुराने दीजिएगा। और मशहूर शायर अहमद फराज साहब की ये बात हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने कहा है कि खुशियों की तलाश बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही पूरी होती है। तो बस अपनों का हाथ थामिए, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए और आज के इस खूबसूरत दिन का मजा लीजिए।

मैं मिलूंगी आपसे अब ठीक 10:30 यानी 10:30 पर। दिल का मेल बॉक्स रहेगा प्रोग्राम जहां सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी, बोलेंगे आप भी आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। उससे पहले देश और दुनिया का हाल, और उससे भी पहले म्यूजिकल दिलगी की प्लेलिस्ट से आज का ये लास्ट बट नेवर द लीस्ट सॉन्ग सिर्फ आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उधर कनाडा ने अमरीका की 600 से अधिक चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में

0: रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताज़ा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता से दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भारतेंदु ने भाव, भाषा और शैली में नवीनता का समावेश कर हिंदी को आधुनिक स्वरूप दिया। इसके अलावा श्री शाह ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि करगिल युद्ध में कैप्टन बत्रा ने न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया, बल्कि अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और वीरता के जरिए सहयोगी सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा का अनुमान है। मौसम के मॉडलों के ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज Read by Shagun Chopra. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of the success story. Inaugurating the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
2: भारत की fintech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा UPI. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी. लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden three-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. In Chhattisgarh, a Kanker court has sentenced five Maoists, including dreaded Prabhakar and his wife Rajay Kange, to imprisonment in a case related to an attack on security forces in 2015. Prabhakar, a cadre of the Dandakaranya Special Zonal Committee, and his wife Rajay Kange, associated with the Divisional Committee member rank, were each sentenced to 7 years in prison. The three other Maoists involved in the case were awarded 5 years imprisonment each. The case originates from 2015 when a group of Maoists attacked a team of security forces that was conducting a search operation in the Kora region. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centres, schools, panchayats and homes across the country with community participation. Canada has imposed retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 U.S. goods, escalating trade dispute between the two neighbors. The tariffs targeting U.S. merchandise officially came into force last night. Canadian commercial

0: Enterprises operating under the federal government's newly implemented dollar-for-dollar tariffs, covering approximately $28 billion US dollars worth of American imports. The measures, which took effect from midnight, imposed tariffs ranging from 15% to 50% on more than 600 US products. Meanwhile, US President Donald Trump has ordered federal agencies to stop purchasing Canadian products through the government's primary procurement catalog until Ottawa provides American businesses and farmers with equal access to the Canadian market. India could witness one final surge of monsoon activity before the southwest monsoon begins its seasonal retreat. Rains expected to return across large parts of central, southeast and west India between September 12 and 21. Weather models indicate that the coming spell could provide a temporary revival to the fading monsoon circulation, bringing showers and thunderstorms to several parts of the country during the second half of September. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. In US Open tennis, defending women's singles champion and top seed Aryna Sabalenka has advanced to the semi-finals after overcoming 6-seed Linda Noskova of the Czech Republic in the thrilling quarter-final. Sabalenka prevailed 7-6, 3-6, 7-6 in a tightly contested match last night. In the men's singles, Francis Tiafoe booked his place in the last four after defeating fellow American Alex Michelson in a 5-set thriller. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के जवाब में फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमेरिकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। भारत और कुवैत व्यापार, निवेश, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों समेत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत। और टेनिस में अर्ना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक स्तर का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
2: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो कर

0: करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच एक सेतु बताया। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: श्री राजनाथ सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेक्रिया ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में यह सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
4: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने संयुक्त बयान में वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों के व्यवस्थित विस्तार के बीच द्विराष्ट्र समाधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

0: है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बनहैम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री माकानी ने कल संयुक्त बयान में कहा कि इसराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर समाधान पश्चिम एशिया और उससे आगे शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबलेंका और पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबलेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। 503 सदस्य वाले दल में 300 से अधिक खिलाड़ी एशियाई खेलों में पहली बार भाग ले रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के जवाब में फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमेरिकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। भारत और कुवैत व्यापार, निवेश, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों समेत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत। और टेनिस में अरीना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. India and Kuwait agree to deepen strategic partnership across areas including trade, investment, defense and people-to-people ties. And in tennis, Arena Sabalenka and Francis Tiafo enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: Bharat ki fintech story adbhut rahi hai. और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: रिइटरेटिंग हिज कोर फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, the Prime Minister praised UPI as the an ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: Defense Minister Rajnath Singh has described the Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. Mr. Singh, who reached Colombo yesterday on a 3-day visit to Sri Lanka, made

वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका एक बार फिर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। ट्यून किया हुआ है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं कौन हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। शुरू हो चुका है प्रोग्राम, नाम है जिसका दिल का मेल बॉक्स और मेरे सामने खुला हुआ है इनबॉक्स जहां आपके ईमेल्स आने शुरू हो चुके हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस भी भर भर के आप भेज रहे हैं जिन्हें मैं जरूर करूंगी प्रोग्राम में शामिल। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। उसके लिए fmgoldeirdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर अगर व्हाट्सएप मैसेज आप करना चाहते हैं तो नंबर बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए 9868687853। जी हाँ, बिल्कुल इसी नंबर पर मैसेज करना है। अपना नाम, कहाँ से लिख रहे हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं ये तो आपने लिखना ही है, और साथ ही अगर कोई शेर व शायरी दिमाग में हो, कोई अच्छी सी बात हो, सुबह से क्या कर चुके हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर पाए हैं, ये भी आप लिखकर भेज सकते हैं। और इसी के साथ शेर व शायरी का तो इंतज़ार रहता ही है, तो चलिए इसी के साथ एक मैसेज शामिल कर लेते हैं जो कि ठीक मेरे सामने इस वक्त खुला हुआ है। TD मल्होत्रा साहब का, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने भेजा है और अपना फरमाइशी गीत भी लिखकर इन्होंने भेज ही दिया है। तो चलिए फरमाइश भी हम पूरी करें, उससे पहले चंद ईमेल्स भी शामिल कर लेते हैं जो कि आए हैं। सीधे के सीधे प्रवीण रणपारा जी की ओर से गुजरात गांधी ग्राम से। प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल और जगदीश जौहरी ने भेजा है और बड़े ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश भी लिखकर भेजी है और इसी के साथ एक कविता भी आ चुकी है जिसे मैं शामिल करती हूँ और उसके बाद पक्का गाना सुनाऊंगी। खूबसूरत सा मौसम है और दिलकश सा है नज़ारा, आगाज हुआ है प्रोग्राम का और अंजाम भी होगा प्यारा। मोबाइल की एक ऐप से अनगिनत निकलेंगे अफसाने, सुरीली सी फिजाओं में सुनने को मिलेंगे मीठे गाने। FM गोल्ड को सलाम जो दिल से दिल मिलाए, नगमों की करे जो बारिश और आरजे की बातें प्यारी प्यारी, चाय की चुस्कियों में घोल दे हर पल जो ताजगी सारी। सतीश अनेजा जी का ये मैसेज, बिमला अनेजा शामिल है साथ में, चंडीगढ़ सिटी से आया है मैसेज और शामिल हैं इसी मैसेज में जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक। और चलिए अब जैसा था वादा सुन लेते हैं अगला गाना जिसकी फरमाइश हमें भेजी है सुखविंदर सिंह जौड़ा, CT दीवाना, गुरवंश सिंह जौड़ा ने कृष्णा।

जी हाँ बिल्कुल, यारी है ईमान और आप सभी का प्यार है हमारी जिंदगी, और वो प्यार मुझे सीधा सीधा और भर भर कर नजर आ रहा है आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस में भी। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा जी का आ चुका है मैसेज। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का भी इसमें शामिल हैं, और अपना बड़ा ही खूबसूरत गीत इन्होंने सुनना चाहा है जिसकी फरमाइश इन्होंने हमें लिखकर भेजी है। इनके साथ ही अगला मैसेज मुझे नजर आ रहा है तुलसी मस्कीन साहब का। वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन शामिल हैं।

चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना भी है शामिल और कह रहे हैं कि रेगुलर कनेक्ट हैं हम, तो हमारा भी शामिल कर लीजिए नाम। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से भेजा है ये ईमेल। और चलिए इसी के साथ अब नजर घुमाते हैं तेजी से और अगला मैसेज करते हैं शामिल, जो कि हमें भेजा है मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुन्हेकर जी ने। और साथ ही इसमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से शामिल है PS नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर भी, और इन्होंने भी बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भेजी है। अगला मैसेज शामिल करते हैं जी, जयराम खोरवाल जी का कर लेते हैं। लिख रहे हैं कि आज कोई नाराज है उसके इस अंदाज से ही खुश हूं, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से ही खुश हूं, क्या बात है। और जिंदगी है छोटी, इंतजार में खुश हूँ, आज में ही खुश हूँ, हर पल में मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, खुशी रहना चाहिए और टेंशन को भूलकर, जैसा कि हम कहते हैं आपसे कि गाने सुनिए एक से बढ़कर एक, और लिखकर भी भेजिए कि कौन सा गीत अभी सुनना चाहते हैं। होली चौक उत्तम नगर से आया ये मैसेज, जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु रहे शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज के लिए। हरजिंदर सिंह भाटिया जी का मैसेज भी मुझे नजर आ गया है। एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया इनके साथ इसमें शामिल हैं। कहाँ से आया है ये मैसेज? स्टेशन रोड जमशेदपुर से आया है जी। और इन्होंने भी जैसा कि सभी कर रहे हैं एक बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। अगला मैसेज चलिए अब शामिल कर लेते हैं अनिल जैन जी का। जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन इसमें शामिल हैं। मालियान सरधना मेरठ से आया है ये मैसेज। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज मुझे नजर आ गया है पूजा रानी जी का। नायरा, यश, जैकी और लखेड़ा फैमिली, पूरी लखेड़ा फैमिली ने भेजा ये मैसेज सिरसा हरियाणा से। रविंदर कुमार लखेड़ा जी का तो नाम मैं पढ़ना ही भूल गई, दरअसल ये जो है ना अलग से लिखकर भेजा है, इसलिए उसके लिए माफी। चलिए एक और मैसेज शामिल करेंगे, उसके बाद सुनेंगे अगला गाना, ठीक है। और अगला मैसेज किसका शामिल करूं यही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैसेज वही नज़र आ रहे हैं जो मैं शामिल ऑलरेडी कर चुकी हूं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूं आपसे कि एक ही बार भेजिए ना प्लीज़। नवाब अहमद भारती जी का मैसेज, शबाना भारती, अरहान अहमद और सूफिया नवाब जी ने बल्ली मारन से भेजा है ये मैसेज, और एक बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश लिखकर भेजी। और चलिए इसी के साथ करते हैं पूरी फरमाइश, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, जिसकी फरमाइश आई है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू की ओर से रघुवीर नगर से।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में needle या injection share करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

क्यों चुपके से वो लोग उतर जाते हैं दिल में, जिन लोगों से किस्मत के सितारे नहीं मिलते। ये एक प्यारी सी शिकायत हमें लिखकर भेजी है गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और अनु खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए, लेकिन ये शिकायत खुद से दूर कीजिए, दिल से दूर कीजिए और किसी ऐसे को ढूंढिए जो आपके साथ वक्त बिताना पसंद करे, आपसे बातें करना पसंद करे, जैसे कि हम यानी FM गोल्ड बने हुए हैं आपके साथ। और उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपके मैसेजेस ये बता रहे हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। चलिए इसी के साथ अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं, कलानौर से, जो कि आया है अभी अभी चंद सेकंड्स पहले। नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का ये मैसेज।

मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी बिल्कुल, आपकी कोशिश भी देखिए रंग ले ही आई है और आपका मैसेज मुझे न सिर्फ दिखा है बल्कि मैंने प्रोग्राम में शामिल भी कर लिया है। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं सतप्रकाश सनोठिया जी का रोहिणी से, और इन्होंने भी एक बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। अगला मैसेज जो मुझे नजर आ रहा है संदीप गुगलानी जी का है, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और जग्गी दुआ जी की तरफ से ये शामिल किया है मैंने मैसेज। कहाँ से आया है थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो रही है, मॉडल टाउन करनाल से आया है, जी हाँ। और इसी के साथ चलिए अब नज़र डालेंगे ईमेल पर। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है भाई मेरे सामने, लिखा है कि जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना, समझे, जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्त पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। बिल्कुल शत प्रतिशत सही बात लिखकर भेजी है आपने भारत भूषण जी, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का ये मैसेज। कहाँ से आया है, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज के लिए। धर्मेंद्र छीपा जी का भी मैसेज मुझे नजर आ चुका है जी, लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम है लेकिन ना तो फरमाइश का गीत बजता है और ना ही हमारा मैसेज शामिल होता है, आखिर कितना इंतजार करें और कितने मैसेज भेजें भाई, क्या हमारा नंबर भी आएगा या नहीं आएगा, आज आप बता ही दीजिए। उफ, इतनी नाराजगी। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जी, उम्मीद है आपकी नाराजगी अब दूर हो गई होगी। भोपालगढ़ राजस्थान से ये मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज को भेजने के लिए। और इसी के साथ अगला मैसेज अनिल कुमार वत्स जी का, और लिख रहे हैं कि भतीजी के आंगन में परी आई है, क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत ही खुशी का ये मौका है आपके लिए। अनिल वत्स राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से, तो मनाइए खुशियां, परी का कीजिए स्वागत और बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। और अब फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये अगला गाना जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांदी ने, टोरोवाल नवा शहर पंजाब से।

और जी आपको क्या हो गया है? माना कि पुणे जो है वो दिल्ली से दूर है, लेकिन क्या आप हमारी फरमाइश ही पूरी नहीं करेंगे? ये शिकायत लिखकर भेजी है महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ ने, और बड़ी ही नाराजगी के साथ भेजा ये मैसेज। ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है और मैंने देखिए कोशिश तो पूरी की है आपकी नाराजगी को दूर करने की, और आपका नाम और आपका पता भी शामिल कर लिया है प्रोग्राम में। गाना हम अगली बार देखेंगे, है ना, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से भाग जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे 10:30 बजते हैं और कैसे 11 बज जाते हैं। और चलिए इसी के साथ अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं। अनवर साबरी जी का कह रहे हैं कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है जी, बस नाम पढ़ दीजिएगा इतना काफी है। शन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी इनके साथ शामिल हैं। दाऊद सराय सहारनपुर से भेजा है मैसेज और हम कह रहे हैं आपको शुक्रिया। इसी के साथ मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने भी भेज दिया है मैसेज। पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आया है और ये भी शिकायत कर रहे हैं भाई कि प्रोग्राम तो अच्छा लगता है आपका, लेकिन आप नाम हमारा शामिल नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी नाराजगी भी हमने दूर कर दी है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का भी मैसेज आ चुका है और लिख रहे हैं कोई भी गीत सुना दीजिए। और उग्रसेन यादव जी का भी मैसेज आया हुआ है। शकुंतला यादव गरिमा न्यू दिल्ली से भेजा है और अपना फरमाइशी गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है हमें। और इसी के साथ रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने ईमेल के जरिए भेजी है अपनी फरमाइश और भेजा है ढेर सारा प्यार, जिसे हम कर रहे हैं कबूल और आपको सुना रहे हैं आज का दिल का मेलबॉक्स की प्लेलिस्ट से, या प्लेलिस्ट से नहीं बल्कि आपकी फरमाइश की लिस्ट से ये आखिरी गाना। और जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मुलाकात हमारी फिर होगी 11:10 पर। प्रोग्राम होगा तस्वीर, बड़े ही खूबसूरत जगह आज आपको ले जाने वाली हूँ, तो मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और उससे पहले जानिएगा देश और दुनिया का हाल समाचारों के जरिए हिंदी और अंग्रेजी में।

अच्छा, इस सॉन्ग की फरमाइश किसने भेजी ये तो सुनते जाइए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी ने भेजी है इस गाने की फरमाइश। सुनते हैं, एंजॉय करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर कल कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाक अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए गए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिलमे की सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और वहां पहुंचने में कठिनाई के कारण टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। उधर अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिन में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण तथा बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज जेसिका ने एम्मा नवारो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग. ट्यून इन कर चुके हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम गोल्ड और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज. कैलेंडर में आज तारीख है 9 सितंबर और जनाब सितंबर का ये महीना अपने आप में बड़ा ही रूहानी होता है. बारिशों के बाद का ये वक्त, न चुभती गर्मी न कपाने वाली ठंड, बस एक मीठा सा मौसम जो है ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है ना. और मौसम के इसी खुशनुमा मिजाज को देखते हुए अब वक्त हो चला है हमारे और आपके पसंदीदा शो तस्वीर का.

निदा फाजली साहब क्या खूब कह गए हैं ना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। लेकिन जनाब एफएम गोल्ड पर हमारे आज के सफर में धूप नहीं, बल्कि सूरज की उसी धूप को तराश कर बनाए गए एक जादुई अजूबे की बात होगी। आज मैं और आप चल रहे हैं पूरब की एक बेहद खूबसूरत रियासत ओडिशा, और ओडिशा में भी हमारी मंजिल है कला, रहस्य और इतिहास का सबसे बड़ा कैनवस कोणार्क। एक ऐसा शहर जहां के पत्थरों में है जान और समंदर की लहरों में है एक अलग ही धुन।

क्या बात है, गानों में इस तरह की जबरदस्त बीट्स हों और सफर में आप जैसे प्यारे लिसनर्स साथ हों तो रास्ता तो यूं चुटकियों में पार हो ही जाएगा ना। तो चलिए फिर सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस अद्भुत शहर कोणार्क तक आप पहुंचेंगे कैसे। अगर फ्लाइट से आएंगे तो लैंड कीजिएगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां से कोणार्क सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन से आना है तो सबसे नजदीकी और बड़ा स्टेशन पुरी है, जहां से कोणार्क की दूरी महज 35 किलोमीटर है। और यकीन मानिए, पुरी से कोणार्क तक का जो मरीन ड्राइव वाला रास्ता है ना, उफ, एक तरफ हरे भरे घने जंगल और दूसरी तरफ दूर तक फैला नीला समंदर। इस रास्ते पर ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है, बिल्कुल इस अगले एनर्जेटिक गाने की तरह।

और इस शानदार सफर के बाद फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है कोणार्क में। कोणार्क, ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण यानी कोना कॉर्नर और अर्क यानी सूर्य सन। 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने यहाँ जो अजूबा बनवाया था ना, वो आज दुनिया भर में कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये मंदिर कोई आम सा मंदिर नहीं है जनाब, बल्कि इसे सूर्य देवता के एक विशाल काय रथ यानी चैरियट के रूप में डिजाइन किया गया है और जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं, और ये 7 घोड़े हमारे हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं, है ना? कितना अमेजिंग थॉट।

तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां आज हो रही है सैर ओडिशा के कोणार्क की। साथ ही बात हो रही है यहां मौजूद विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की। इस मंदिर की नक्काशी देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, ये तो पक्की बात है। रथ के रूप में बने इस मंदिर में दोनों तरफ 12-12 यानी कुल 24 विशाल पहिए लगे हैं, जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इन पहियों की खासियत बस इतनी सी नहीं है, बल्कि असल में धूप घड़ी यानी सन डायल्स हैं। मतलब आज भी अगर आप इन पहियों पर पड़ने वाली परछाई को देखेंगे तो एकदम सटीक समय का पता लगा सकते हैं। कमाल है ना। आज से 800 साल पहले साइंस और इंजीनियरिंग का ये लेवल एकदम माइंड ब्लोइंग है, और ये अगला गाना भी तो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग है।

और कोणार्क में मौजूद इस अजूबे के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। जानते हैं, पुराने जमाने में समंदर से गुजरने वाले पुर्तगाली नाविक यानी सेलर्स इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर के टॉप पर एक 52 टन का भारी भरकम चुंबक यानी मैग्नेट लगा हुआ था और मंदिर के बेस में भी एक मैग्नेट था। इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर खासियत मैं आपको बताऊं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि मुख्य मूर्ति जो थी वो बिना किसी सहारे के हवा में तैरती रहती थी। लेकिन फिर इसी मैग्नेटिक पुल की वजह से कंपास काम करना बंद कर देते थे और कई जहाज समंदर में क्रैश होने लगे। इसीलिए बाद में उस चुंबक को वहां से हटा दिया गया। तो मिस्ट्री, हिस्ट्री और साइंस, इन सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये जगह यानी कोणार्क, जिसके बारे में बातें आगे भी रहेंगी जारी। लेकिन उससे पहले आ गई है ये अगला ट्रैक सुनने की बारी।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ओडिशा के कोणार्क और वहीं मौजूद अद्भुत सूर्य मंदिर की सैर कर रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर। सूर्य मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियों को निहारते हुए जब आपको शाम होने लगे तो सीधा रुख कीजिएगा चंद्रभागा बीच की तरफ। कोणार्क के मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर मौजूद ये समंदर का किनारा इतना साफ और शांत है कि यहां बैठकर लहरों की आवाज सुनना किसी मेडिटेशन से कम नहीं लगता। सुबह के वक्त यहां का सनराइज दुनिया के सबसे बेहतरीन नजारों में से एक माना जाता है। तो हाथों में हाथ डाले समंदर किनारे एक सुकून भरी वॉक तो बनती है ना बॉस।

और भाई ट्रिप पर आए और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हम इंडियंस की फिलॉसफी में है ही नहीं ना। तो कुछ हटकर खरीदना है अगर, तो कोणार्क के पास ही एक छोटा सा गांव है पिप्पली। ये गांव अपने एप्लिक वर्क, जिसे यहां पर चांदुआ भी कहा जाता है, इसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर ये भी सुन लीजिए। तो रंग बिरंगे कपड़ों से जोड़कर बनाए गए खूबसूरत छाते, लालटेन, झोले और वॉल हैंगिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आपका दिल मचल ही जाएगा, गारंटीड। मन करेगा कि सब कुछ पैक करवा लें। तो फिर सोचना क्यों है, जमकर शॉपिंग कीजिए। और हाँ, मोल भाव करना मत भूलिएगा।

तो घूमना फिरना और शॉपिंग निपटाने के बाद अब बात करिए पेट पूजा की। तो आपको बता दूं कि ओडिशा का खाना इतना टेस्टी और फ्लेवरफुल होता है ना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। यहाँ आए तो दालमा, जो कि सब्जियों और दाल का एक कमाल का मिक्स है, और मच बेसरा, सरसों के पेस्ट में बनी एक फिश करी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी तरह मीठे के शौकीन हैं तो जनाब छेना पोड़ा खाए बिना तो वापस लौटने के बारे में सोचिएगा भी मत। बेसिकली ये भुने हुए पनीर और गुड़ से बनी एक ऐसी मिठाई है जिसे आप देसी ओडिया या ओडिया चीज़ केक भी कह सकते हैं।

जाते जाते बस इतना ही कहूंगी आपसे कि जब ढलते हुए सूरज की किरणें कोणार्क मंदिर के नक्काशीदार पत्थरों पर पड़ती हैं, तो वो पत्थर

ऐसा लगता है मानो सदियों पुराना इतिहास आज भी हमारे सामने जिंदा खड़ा है। जिंदगी में एक बार ये नजारा तो अपनी आंखों से देखना बनता है ना। और इन्हीं खूबसूरत नजारों और ढेर सारी यादों के साथ अब वक्त हो चला है कि इस सफर को यहीं पर दिया जाए विराम। मैं यानी नाज अब आपसे लूंगी विदा, लेकिन जल्द ही मिलूंगी किसी नई जगह की एक और नई खूबसूरत तस्वीर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गांवों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
0: भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बम्बई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनबाड़ी।

0: घर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
1: रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और रश्मि जी, हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और देखिए रश्मि जी, जो हमारे श्रोता है ना, उनका साथ हमें वो ऊर्जा देता है जिससे हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाते हैं, क्यों?
1: जी बिल्कुल।
0: और तो ऐसे ही हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमें हर रोज एक नई ऊर्जा से भरते रहिए। तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज अपने आज के प्रश्न से, क्यों?
1: जी। और प्रश्न से पहले कुछ एक जानकारी भी दे दे।
0: हाँ जी, हाँ।
1: तो देखिए, क्योंकि आज जो है हम याद कर रहे हैं मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी को, और उनकी पुण्यतिथि है आज, और उर्दू के प्रसिद्ध शायरों में उनका नाम गिना जाता है। जो उनकी गजलें हैं वो प्रेम और संवेदना का संदेश देती हैं।
0: जी जी बिल्कुल। और देखिए, काफी अभी अपनी अभिव्यक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध रहे मुरादाबादी जी, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देखिए, आज साथ ही साथ आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारत तेंदु हरीशचंद्र जी की भी जयंती है। और आपका जो मूल नाम हरीशचंद्र था और भारत तेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारत तेंदु हरीशचंद्र से ही माना जाता है। उन्होंने गद्य से लेकर कविता, नाटक और पत्रकारिता तक हिंदी का नक्शा बदल कर रख दिया था, है ना। और
1: अनगिनत जो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। और अगर हम याद करें तो भाई, अब जो सितंबर माह है, बहुत जल्दी हिंदी दिवस भी आएगा प्रतिभा। और उनका जो कहा हुआ कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा की जो तरक्की जब होती है तो फिर सब तरफ से तरक्की होती है। तो इसी से कुछ जुड़ा हुआ है हमारा आज का प्रश्न। तो हम आज याद कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, और उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और साथ ही ले रहे हैं इसी सब्जेक्ट से जुड़ा, विषय से जुड़ा प्रश्न। वो बताइए आप
0: जी। आज देखिए रश्मि जी, जो भाषा होती है वो सिर्फ संवाद का जरिया ही नहीं होती बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी होती है।
1: वाह, कितनी सुंदर बात
0: जी। और तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे श्रोताओं को बताना है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उनकी उसकी कौन सी खासियत बहुत प्रिय है।
1: वाह,
0: है ना, उसके बारे में हमारे श्रोता आज हमें बताएं। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं।
1: ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष लिया है प्रतिभा आपने। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जो है वो भाषा अपने आप अकेले में तो बोलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ उन भाषा में संवाद नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है अपने अपने काम में लगे होते हैं तो भाषाएं जो है ना हमारी छूटती सी जाती हैं परिवार
0: जी,
1: में
0: जी, बिल्कुल।
1: तो ये अच्छी बात है कि वो क्या कर रहे हैं।
0: तो हमारे श्रोता हमें इस प्रश्न का जवाब दें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com।

0: दुल्हन एक रात की। अभी इस फिल्म से आपने गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और बात करते हैं रश्मि जी ज़ीरो FIR की, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल। और ये जो ज़ीरो FIR है, ये एक ऐसी FIR है प्रतिभा, जो घटना होती है वो उसके स्थान के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले भी किसी भी पुलिस थाने में ये ज़ीरो FIR करवाई जा सकती है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है ज़ीरो FIR, इसके बारे में आप बताएं।
0: देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि होता क्या है कि अगर घटना किसी दूसरे शहर में पहले होती थी तो जो भी पीड़ित होती थी महिला या कोई भी व्यक्ति, तो वो उस अधिकार क्षेत्र में जो थाना आता था वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते थे। तो इस समस्या के हल

0: के लिए अभी ये किया गया है कि अगर घटना किसी भी शहर में हुई है तो आप वहां जाकर उस थाने में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
1: या जिस महिला के साथ घटना दूसरे शहर में हुई है, तब भी वो अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है। तो ऐसा होता है, जो संबंधित पुलिस थाना होता है, वो बाद में उस FIR की कॉपी को क्षेत्र के संबंधित थाने में भेज देता है जहां पर घटना हुई थी। ऐसा जो थाना है वो मना नहीं कर सकता कि जो है उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। तो 0 FIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि घटना के स्थान को लेकर जो है कोई विवाद ना हो और शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी ना हो।
0: हाँ बिल्कुल। और देखिए, किसी भी पुलिस थाने में जैसा कि आपने बताया कि शिकायत ये दर्ज कराई जा सकती है, क्षेत्र अधिकार की बाध्यता नहीं है जैसा अभी हम बता ही रहे थे, यानी कि जरूरी नहीं है कि FIR उसी थाने में दर्ज हो जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।
1: और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है जो छेड़छाड़ या हिंसा या कोई ऐसा अपराध हो जाए, उस स्थिति में तत्काल अगर शिकायत करानी हो तो ये इस्तेमाल की जा सकती है, और दर्ज कराने में, शिकायत दर्ज कराने में इसकी में मदद मिलती है।
0: बिल्कुल। और देखिए, शिकायत दर्ज होने के बाद आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, और अपराध की जगह कोई भी हो, शिकायत दर्ज कराने में देरी नहीं होनी चाहिए, और जो 0 FIR है इसी अधिकार और सुविधा को मजबूत करती है।
2: Yeah.

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी तकदीर। और रश्मि जी देखिए, अब बात करते हैं नागालैंड के एक ऐसे गांव की जिसने

0: जीवन शैली की मिसाल माना जाता है।
1: जी, यानी कि जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो भाई ये जो गांव है और यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि अब जो बाकी सारे गांव हैं उनके लिए भी अनुकरणीय है। तो होता क्या था प्रतिभा, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो शिकार के लिए जाने जाते हैं
0: जी,
1: और शिकार करने जाते थे, पर बुजुर्गों को ये महसूस हुआ कि इस अत्यधिक शिकार से जो वन्य जीवन वो प्रभावित हो रहा है, और वहाँ पर जो एक अति दुर्लभ पक्षी जो थे उनका जब शिकार हुआ तो वो बहुत ही उनको लगा कि ये अब रोकना पड़ेगा, और उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये माना कि हमें ये रोकना चाहिए। और शिकार जो जब रोका गया तो फिर पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया, और उसके बाद जो है ये सिलसिला चल पड़ा।
0: बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जो है ना हॉर्नबिल नाम का जो एक पक्षी है उसकी प्रजाति एकदम विलुप्त हो गई थी, जैसा कि आप बात कर रहे थे। तो जो बुजुर्गों ने ये जो एक इनिशिएटिव लिया, एक जो स्टार्ट किया, ये बहुत ही अच्छा किया। और देखो यहाँ की जो ना केवल उनका जो एफर्ट है कि प्रकृति संरक्षण, साथ ही साथ अगर हम खनोमा गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर पारंपरिक सीढ़ीदार खेती और एल्डर पेड़ों का उपयोग भी प्रकृति के साथ तालमेल का जो एक बेहतरीन उदाहरण है। और जो खनोमा ने प्रकृति की रक्षा के साथ आजीविका के अवसर भी देखिए विकसित किए हैं। यहाँ पर इको टूरिज्म, होम स्टे, बांस के उत्पाद और वर्षा जल संचयन की जो भी जो शैली है उसने उनकी जीवन शैली को बहुत ज़्यादा टिकाऊ बना दिया है। और जो खनोमा गाँव जो है हम एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है।
1: हाँ, और यहाँ पर इसके अलावा जो ट्रेपोगन अभ्यारण्य है उसको विकसित किया गया है, और जो दुर्लभ जो वन्य जीव है, खासकर जो ब्लाइथ ट्रेपोगन है, इन पक्षियों का संरक्षण हुआ है। और जो आपने पारंपरिक एल्डर पेड़ों की बात की तो सीढ़ीदार पारंपरिक होते ही हैं पेड़, तो उससे क्या होता है जो उर्वर रहते हैं खेत, और ये भी कोशिश की गई क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो उसमें भी बहुत मदद मिली। तो कुल मिलाकर सभी जो रहवासी हैं उन्होंने मेहनत करी और जो गांव को एक अच्छा पर्यावरण संरक्षण करते हुए उदाहरण बना दिया।

0: मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी महबूबा। और रश्मि जी, हमारा जो प्रश्न था उसके जवाब आने लग गए हैं हमारे
1: जी,
0: पास।
1: बिल्कुल, और एक प्रश्न आप एक बार फिर बता दीजिए।
0: देखिए, हमारा जो श्रोताओं प्रश्न था वो भाषा से जुड़ा हुआ था कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत प्रिय है, उसके बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: और जो पहला जो जवाब आया है वो नवीन भाटिया जी का मोतीनगर से आ गया है। वो कहते हैं सिंधी में हम बोलते हैं और सबसे अच्छा शब्द जो लगता है उन्हें वो है सुथो। शायद मैं सही उच्चारण किया है, बताएंगे वो, यानी अच्छा। और भाई वाह, बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल। और देखिए, दूसरा जो जवाब आया है वो महेश अग्रवाल जी का आया है और उन्होंने बोला है कि हमारी जो मातृभाषा है वो सदाबहार भाषा है और यहाँ ये जो है हमारे रग रग में रची बसी हुई है और कहीं ना कहीं हम इस भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। तो देखिए, ये बात तो है ही है कि सदाबहार है हमारी मातृभाषा जो हम अपने घर में बोलते हैं, बड़ों से, बुजुर्गों से, बच्चों से। उसका असर तो हमारे व्यवहार में, बोलचाल में नजर आता ही आता
1: और
0: है।
1: और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ नागलोई से और वो कह रहे हैं कि भाषा तो अपनी जगह सभी अच्छी है, लेकिन हमें अपने जानकारों से बात करना या परिवार के सदस्यों से बात करना, उसमें मातृभाषा का असर ही ज्यादा काम करता है और भाषा से ही इंसान की खूबियों का पता चलता है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वे कह रहे हैं कि भाषा जो है संस्कृति, समाज और परिवार और देश की पहचान होती है। भाषा पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे को भी आपस में जोड़ देती है और हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और आप उसके अलावा शुभकामनाएं उन्होंने लिखी हैं और ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और एक और मेल हमारे पास आया है, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब तो नहीं है परंतु आपने जो 0 FIR के बारे में कहा था ना, प्रतिभा, तो डॉक्टर राजेश्वर राव का जो ये मेल आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप 0 FIR को रजिस्टर करने से मना करते हैं तो ये एक कानूना अपराध होता है और इसको चैलेंज किया जा सकता है उच्च अधिकारियों के द्वारा के पास। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं तो उसके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी हमें दी है। तो ऐसे ही हमारे पास से जुड़े रहिए और हमें मेल करते रहिए, हमें आपकी मेल्स का इंतज़ार रहता है श्रोताओं। लेकिन आप जो है हमारा प्रश्न दोबारा प्रतिभा आपको बता देती है, मेल एड्रेस फिर बता देती हैं। हमारा प्रश्न है
0: जी, हमारा प्रश्न मातृभाषा से जुड़ा हुआ है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत ज़्यादा प्रिय है और उसके बारे में आपको हमें बताना है। और साथ ही साथ अपने घरों में आप बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा मेल आईडी है

0: ifmgoldga@gmail.com।
1: और एक और मेल आ गया है प्रतिभा हमारे पास, उमेश जी, उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं कि हमें अपनी मातृभाषा का वो शब्द प्रिय है जिसमें भावना हो और अपनों का प्यार हो और संस्कृति हो, उसमें अपनापन और सुकून तो होता ही है, और बच्चों को जो है हम अपनी मातृभाषा भी सिखाना बहुत जरूरी है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
2: हंसो मत, बोलो।

0: अभिनेत्री फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: और अब बात करेंगे, एक ऐसी ज़रूरी बात है ये जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था मन की बात कार्यक्रम में, और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि इस अभियान का जो लक्ष्य है वो ड्रग फ्री इंडिया है। उन्होंने कहा कि युवा किसी न किसी तरह से जो ये नशे की लत का शिकार है, तो हमारा सामूहिक संकल्प ये रहेगा कि युवाओं की जो का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो खुशी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प होना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, और देखिए नशे की आदत सिर्फ युवा या उस व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी बात के दौरान उन लोगों की सराहना भी की है जो ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं।
1: और ये भी जरूरी है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में ऐसा रचनात्मक कंटेंट बनाए, चाहे वो वीडियो हो चाहे पोस्ट हो, तो जो कि समाज को नशे के खिलाफ जागरूक कर सके। और क्रिएटिव जो कंटेंट है उसके फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा उसका असर होता है और वो ज्यादा कारगर होता है।
0: बिल्कुल, और देखिए लोगों और क्रिएटर से उन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपील की है मन की बात में कि वे इस अभियान से जुड़ी अपनी कोशिशों और कहानियों को सोशल मीडिया पर हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ शेयर करें ताकि ये एक व्यापक जन आंदोलन बन सके।
1: और जो युवा संगीतकार है और लेखक है उनसे ऐसे ड्रग फ्री जीवन जीने का और उसका संदेश देने वाले शक्तिशाली नारे और गाने बनाने के लिए आग्रह किया। और ये भी कहा है उन्होंने कि छात्र और जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे दिल को छू लेने वाले नाटक लिखें और उसे प्रसारित करें जिसमें कि ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनके साथ उनसे बाहर निकलने के रास्तों को दिखाया गया।
0: बिल्कुल, और देखिए कि ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिससे हम भी जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं और किसी के जीवन को बेहतर और नशा मुक्त बनाने में हम मदद कर सकते हैं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म से. अभी आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की.
1: जी, और ये फिल्म भी प्रतिभा जो नशे से मुक्ति के लिए ही बनी थी, उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में पूरी कहानी बुनी गई थी. तो ये गीत आपने इस जो सुनवाया हमारे श्रोताओं को, और अगला जो विषय है वो क्या लेने जा रही हैं आप?
0: देखिए, अगला जो विषय है वो पोषण से जुड़ा हुआ है, है ना. देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे देश का भविष्य, ये हम सभी जानते हैं, और उनके स्वस्थ भविष्य की नींव जो जीवन के शुरुआती वर्षों में ही पड़ती है. पहले 6 वर्ष बच्चों के शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
1: और ये जो बात आप इसलिए बता रही हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष दिन है, उसके बारे में भी तो बताइए.
0: जी, आज का दिन जो है 9 सितंबर से जो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की शुरुआत हो चुकी है.
1: जी बिल्कुल,
0: तो इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं. और जो ये जो शुरुआत हुई है इस माह की, उसका जो उद्देश्य है वो बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने और समुदाय को पोषण संबंधी प्रयासों से जोड़ने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शुरू किया गया
1: जी,
0: है.
1: और इस वर्ष की थीम है प्रतिभा हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी. अभियान का जो उद्देश्य है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जो है प्रारंभिक बाल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में मजबूती से विकसित करना है. जो पोषण माह है इसके दौरान स्थानीय और कम लागत वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री से तैयार जो व्यंजन होते हैं उन्हें प्रदर्शन करना भी. देखो, हमारा जो स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी बहुत पोषण में मजबूत हैं, जैसे कि जो मिलेट्स हैं, यहाँ के मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, दालें हैं, ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना पौष्टिक हैं खाद्य पदार्थ. जो इनको दैनिक आहार में शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है, और साथ में जो है कम लागत से बनने वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री को पोषण मेले और प्रोटीन रिच फूड अभियान जैसी गतिविधियों से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है. और इसी को ये आयोजन इसी को अंडरलाइन करते हुए किया जा रहा
0: जी,
1: है.
0: बिल्कुल. और देखिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पके भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी इस जो चलेगा जो महीने पूरा भर जिसमें गतिविधियां होंगी उसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा इस बात पर भी. और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर माताओं और अभिभावकों को

0: पोषण और बाल देखभाल की जानकारी भी देंगे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रतिभा, जो हमारी भारतीय माएं हैं वो तो बड़े, उनको चिंता रहती है कि बच्चों को जो है ताजा और गर्म भोजन मिले। हर एक माँ की यही चिंता रहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं बच्चे को जो है ताजी अपने हाथ से बनी हुई रोटी खिला सकूं, है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो ये पोषण से भी जुड़ी हुई है और जरूरत है कि ये जो बच्चों का सुपोषण है भाई, सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। समझो और समझो।

0: और उसमें चालबाजियां सीखनी है कि कैसे आपको सामने वाले को हराना है
1: जी। और क्योंकि एलेना जो है उसकी उम्र बहुत कम है भाई, वो सिर्फ 4 साल और 6 महीने की है वो लड़की, और ऐसी जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नन्ही सी कली ने एक आधिकारिक FIDE रेटिंग हासिल कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है।
0: बिल्कुल।
1: और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने एलेना मिश्रा को 1432 की आधिकारिक ब्रिट्स रेटिंग दी है। भाई क्या बात है।
0: और देखिए ये जो उपलब्धि है उन्हें प्रतिस्पर्धी शतरंज में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली। और देखिए इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेटिंग हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है
1: जी।
0: और देखिए खास बात यह है कि 2022 या उसके बाद जन्म लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिनकी आधिकारिक फीडे रेटिंग मौजूद है आज।
1: और प्रतिभा मैं इनकी फोटो देख रही थी, बड़ी एक इनोसेंट सी इनकी फोटोग्राफ थी, और मुझे लग रहा था इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब ये लगता है कि अभी ये छोटी बच्ची क्या ही समझ पाएगी। लेकिन भाई ऐसी रणनीति बनाकर जो उन्होंने शतरंज खेली, भाई चाल ही तो चलनी होती है उसमें
0: जी।
1: तो ये कमाल की इस बच्ची ने शतरंज खेली और ये बड़ी रेटिंग लेकर आई, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी उपलब्धि जो है उन्हें अपने आयु वर्ग में दुनिया की सबसे अलग और खास खिलाड़ियों में शामिल करती है।
0: बिल्कुल। देखिए आज वो दुनिया का उभरता हुआ सितारा बन गई है, और जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये मान रहे हैं कि अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में भारत को एक और बड़ी शतरंज खिलाड़ी मिल सकती है।

0: और इस बीच एक और मेल आ गई है, मुकेश शटवार लक्ष्मीबाई नगर से कह रहे हैं कि हम बे शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो उत्तर प्रदेश से हैं और दादरी क्षेत्र से कहते हैं, और कहते हैं हम छोटे बच्चों से इसी भाषा में बात करते हैं। इसके अलावा मंटू शर्मा कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबसे प्रिय भाषा है, राजू अग्रवाल हरियाणा से, और समय कह रहा है
1: कि हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति, लेकिन रश्मि जी ये हमारा वादा है अपने श्रोताओं से कि फिर किसी और दिन इसी वक्त पर हम अपने श्रोताओं से ज़रूर मिलेंगे बहुत सारे विषयों के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ, लेकिन आप हमारे साथ इस मंच पर, इस कार्यक्रम पर हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, क्यों रश्मि जी?
0: जी बिल्कुल, और फिलहाल हम लेते हैं उनसे अनुमति और कार्यक्रम को समेटते हैं जिसका नाम है घर आंगन, और कहते हैं नमस्कार। घर आंगन
2: आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल। आज जन्मदिन है ऐसे अभिनेता का जिन्हें हम खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बात हो रही है अक्षय कुमार की। आपके साथ रहूंगी मैं रजनी। कलाकार बेमिसाल की शुरुआत करते हैं धड़कन फिल्म के टाइटल सॉन्ग के साथ। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की।

0: रहते हो।
1: आज ही के दिन 9 सितंबर 1967 को राजीव हरिओम भाटिया का जन्म हुआ था पुरानी दिल्ली में। उनके पिता हरिओम भाटिया उर्फ ब्रिजमोहन भाटिया एक आर्मी ऑफिसर थे। उनके पिता को कुश्ती से बहुत लगाव था। अक्षय कुमार भी बचपन से ही खेलों में रुचि रखते थे। अक्षय कुमार के बचपन में ही उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर अक्षय बॉक्सिंग सीखने के लिए थाईलैंड चले गए। वहां उन्होंने कई मार्शल आर्ट सीखी और साथ में अपना खर्चा चलाने के लिए शेफ का काम करने लगे। थाईलैंड से लौटने के बाद अक्षय कुमार ने कई काम किए। कोलकाता में एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, ढाका में शेफ के रूप में कार्यरत रहे, दिल्ली आके कुंदन ज्वेलरी बेची और मुंबई आके मार्शल आर्ट सिखाने लगे। इतने अलग अलग तरह के काम करने के बाद उनका अभिनय का सफर कैसे शुरू हुआ बताएंगे आपको खिलाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है एक बार फिर अभिजीत और अलका याग्निक की।

के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए रिकमेंड किया। अक्षय ने कुछ प्रिंट विज्ञापन किए और इसके बाद कुछ फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी वो दिखाई दिए। उनकी पहली नोटेबल स्क्रीन प्रेजेंस थी 1987 की फिल्म आज। इसमें उन्होंने कराटे इंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा रोल किया था और इसी फिल्म से उन्हें अपना स्क्रीन नेम भी मिला। हुआ यूं कि आज फिल्म के हीरो थे अक्षय कुमार गौरव और इस फिल्म में उनका नाम था अक्षय। और ये नाम अक्षय कुमार को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना नाम राजीव भाटिया से बदलकर अक्षय कुमार रख लिया। कुछ समय बाद ही उनकी पहली फिल्म दीदार साइन उन्होंने की, लेकिन इस फिल्म में डिले होने के कारण उनकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो थी सौगंध, जो 1991 में आई थी। इसके बाद डांसर और मिस्टर बॉन्ड उनकी ये फिल्में भी आई, लेकिन उनकी तीनों ही फिल्मों को दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके अगले साल आई फिल्म खिलाड़ी ने अक्षय कुमार को घर घर में पहचान दिला दी। इसके बाद तो उन्होंने खिलाड़ी सीरीज की 5 और फिल्में की, जैसे कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मिस्टर मिसेस खिलाड़ी और तू अनाड़ी मैं खिलाड़ी। इसी फिल्म से अगला गीत आपको सुनवाते हैं, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: चली। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: इस छोटे से ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में हम आज बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। खिलाड़ी सीरीज के बाद सैनिक, मोहरा, सुहाग, जैकिशन, संघर्ष, तू चोर मैं सिपाही जैसी फिल्मों से उनकी एक्शन हीरो की छवि मजबूत हुई। इसके बाद धड़कन, आरजू, बेवफा, एक रिश्ता, एतराज और अंदाज जैसी फिल्मों में वो एक रोमांटिक नायक के रूप में नजर आए, और साल 2000 में आई हेरा फेरी से अक्षय का एक नया रूप दर्शकों के सामने आया। उनकी गजब की कॉमिक टाइमिंग, जो कि हेरा फेरी के बाद भागम भाग, आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, हाउसफुल, सिंग इज किंग और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में दिखाई दी। भूल भुलैया से अगला गीत आप तक पहुंच रहा है श्रेया घोषाल और एम जी श्री कुमार की आवाजों में।

0: India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: साल 2010 के बाद अक्षय कुमार ने समसामयिक विषयों को उठाना शुरू किया अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी के जरिए। उन्होंने रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ओएमजी, गुड न्यूज और मिशन मंगल जैसी फिल्मों का निर्माण किया जिन्हें दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजनबी और गर्म मसाला फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 2008 में सिनेमा में उनके योगदान के लिए विंडसर यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट प्रदान की और इसके अगले साल भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला गीत फिल्म सिंह इस गिल से।

0: communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: 150 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के अलावा अक्षय कुमार ने टेलीविजन पर कई रियलिटी शोज को भी होस्ट किया। परोपकार के कामों में भी अक्षय कुमार हमेशा आगे रहे हैं, चाहे जलयुक्त शिविर अभियान में सहायता देना हो, पुलिस कर्मियों के लिए कैंसर आश्रय बनाना, स्टंटमैन के लिए बीमा योजना शुरू करना हो, शहीद जवानों के परिजनों की सहायता करना या स्वच्छ अभियान के लिए एम्बेसडर की भूमिका निभाना। 2017 में उन्होंने भारत सरकार की मदद से भारत के वीर ऐप लॉन्च की, जो शहीद जवानों के परिवारों के खाते में सीधे पैसा भेजने की सुविधा देता है। एफएम गोल्ड की ओर से अक्षय कुमार को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कलाकार बेमिसाल का आज का आखिरी गीत उनकी फिल्म मोहरा के उनके बेहद ही लोकप्रिय गीत के साथ समापन करते हैं।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज्म का इरादा किया। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का कौमी तख्जिया महीने का आगाज वाराणसी में हुआ। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क के मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरक तहजीबी अख्तार के हामिल करीबी पड़ोसी और बहरी साझेदार के तौर पर भारत और श्रीलंका दोनों मुल्कों की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस खित्ते में हिफाजत, सलामती, अमनो खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के अज्म का इरादा भी किया। ब्रिक्स सरबराह इजलास से पहले ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग इस माह की 9 से 10 तारीख के दौरान मुंबई में मुनक़िद हो रही है। इस साल ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक का मौजू है इस्तेहकाम, इख्तिरा, बाहमी तावुन और पायदारी के लिए मिलकर काम करना। इससे कबल वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात गुज़श्ता माह जयपुर में हुई थी। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने मुंबई में हतमी मीटिंग से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतायज का जायजा लिया। नवा कौमी तख्जिया महीना आज वाराणसी के इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी के साथ ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के कई वजीरों की मौजूदगी में शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नवे कौमी तग्जिया महीने के जरिए तग्जिया से भरपूर और बाइख्तियार भारत बनाने का अज्म है। ये मुहिम हर माँ की सेहत, हर बच्चे के तग्जिए और हर कुनबे के खुशहाली से मरबूत है। उन्होंने कहा कि खालिस और मुतवाजन ग़िज़ा सेहतमंद और खुशहाल मुल्क के लिए मजबूत बुनियाद है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2014 से गरीबों, बच्चों, हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए सेहत बख्श तग़ज़िये को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी मराकज़ के निज़ाम में वाज़ह तब्दीलियाँ आई हैं। आंगनवाड़ी मराकज़ अब सिर्फ तग़ज़िये की तकसीम के मराकज़ नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों की सेहत, तग़ज़िये और इब्तदाई नश्वोनुमा के मराकज़ हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने आज कहा है कि काठमांडू में मौजूद भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में नुमाया पेशरफ्त की है और अब तक 1000

0: 400 से ज्यादा डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है। वजारत ने बताया कि टीम ने अब तक 378 डीएनए प्रोफाइल्स तैयार किए हैं। इस दौरान भारत की मुश्तरका तकनीकी टीम ने आज चिली में सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। ताहम सुरंग की ढलवान और महदूद रसाई की वजह से टीम को जदीद तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद मुश्किलात का सामना है। वजारत खारजा ने कहा कि सुरंग की सफाई के लिए भारी मशीनरी अंदर ले जाने की खातिर आरजी रास्ता बनाने का काम भी आगे बढ़ रहा है और तवक्को है कि ये काम मजीद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 27वें कौमी यूथ पार्लियामेंट मुसाबिका 2025-26 के इनामात की तकसीम की तकरीब नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कल मुनक्किद की जाएगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू इस तकरीब की सदारत करेंगे और इनाम जीतने वाले तलबा और विद्यालयों को मुसाबिके में मुमताज कारकर्दगी के लिए इनामात तकसीम करेंगे। पार्लिमानी उमूर की वजारत पिछले 30 साल से जवाहर नवोदय विद्यालयों में यूथ पार्लियामेंट मुसाबिके का इनेकाद कर रही है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए कौमी यूथ पार्लियामेंट मुसाबिके की स्कीम के तहत मुल्क भर के नवोदय विद्यालय समिति के 8 इलाकों में फैले 100 विद्यालयों में 2025-26 के लिए 27वां मुसाबिका मुनक्किद किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अवामी जिंदगी में उनके 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से 1 माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी सदर नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम आइंदा 7 अक्टूबर को अवामी खिदमात के 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। साल 2001 में इसी दिन जनाब मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर अपनी मुद्दत कार का आगाज किया था। उन्होंने मजीद कहा कि इन बरसों के दौरान जनाब मोदी ने अवामी खिदमात से कौमी खिदमात के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए अवामी खिदमत के अपने सफर को मजबूती से मुसलसल जारी रखा। बीजेपी के सदर ने जोर देकर कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत की पेशरफ्त सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही बल्कि भारत की सकाफती शिनाख्त और विरसे को भी मजबूती मिली। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त जनाब मोदी ने मुल्क की क्यादत संभाली भारत को मफलूज पॉलिसी का सामना था और उसका शुमार दुनिया की 5 कमजोर मईशतों में होता था, लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है।
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: सेवा संकल्प अभियान खून अतिया कैंप के साथ शुरू होगा। जनाब नबीन ने बताया कि वजीर आजम को तशक्कुर का इजहार करने के लिए गांव और शहरी इलाकों को जोड़ते हुए 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम आज से रवा माह की 15 तारीख तक भारत के दौरे पर होंगे। ये दौरा नायब सदर सीपी राधाकृष्णन की दावत पर हो रहा है। वो कल नायब सदर से मुलाकात करेंगे। इस्माइली बिरादरी के 50वें इमाम की हैसियत से मनसब संभालने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का ये भारत का पहला दौरा है। नई दिल्ली में क्याम के दौरान आगा खान सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला और वजीर खारजा जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। राजस्थान में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 162 शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए वोटिंग सिक्योरिटी के वसी इंतजामात के दरमियान हो रही है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दीगर दरियाओं में पानी की सतह में कमी आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गंगा नदी पटना में गांधी घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर ऊपर, दीघा घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 109 सेंटीमीटर और हाथी दाह के करीब खतरे के निशान से 165 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में नदी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। आबी वसाइल का महकमा और रियासती इंतजामिया की टीमें पुश्तों पर करीबी नजर रखे हुई हैं। पटना से निधिश्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: भारतीय मौसमियात महकमे

0: in 7 weeks and continuing to trade near those elevated levels. The Ministry of Labour and Employment, in collaboration with the Maharashtra government, will organise a national conference on building and other construction workers, BOCW, in Mumbai on the 11th and 12th of this month. The conference will be chaired by Union Minister of Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandviya. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Defence Minister Rajnath Singh holds meeting with Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake in Colombo. Both leaders reaffirm to work for security, peace and prosperity of the region. Final breaks, finance ministers and central bank governors meeting kicks off in Mumbai. Ministry of Women and Child Development National Nutrition Month launched in Varanasi. BJP to launch month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिक्सानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके निर्माण की, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।

0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश

0: चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:30 हो चुके हैं, यानी समय हो चुका है संगीत.com का, जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और आज आपके साथ मैं हूँ रजनी।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Sangeet.com का पहला गीत आपने सुना फिल्म याराना से, आवाज थी किशोर कुमार की। याराना उन गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में से एक है जिसमें कोई भी गीत फीमेल वॉइस में नहीं था। इसमें जितने भी गीत थे वो या तो किशोर कुमार ने गाए थे या फिर मोहम्मद रफी ने। फिलहाल अगला गीत एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। जैसे कि याराना में जो गीत आपने सुना अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पर फिल्माया गया था, एक और अगला गीत जो कि अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पर ही फिल्माया गया है। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर और आवाजें हैं किशोर कुमार के साथ इस बार आशा भोसले।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: बात है 70 के दशक की शुरुआती सालों की। एक छोटे बजट की फिल्म बन रही थी जिसके संगीतकार थे श्याम जी घनश्याम जी, और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी धुन बनी थी और श्याम जी चाहते थे कि ये जो गीत हैं ये मोहम्मद रफ़ी ही गाएं, और उन्होंने प्रोड्यूसर से इस बारे में बात की और प्रोड्यूसर ने कहा कि हमारी तो बहुत ही छोटे बजट की फिल्म है और हम तो नाम भी नहीं ले सकते रफ़ी साहब का। खैर श्याम जी ने कुछ बोला नहीं प्रोड्यूसर से और वो अपने आप जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर चले गए उनसे मिलने के लिए, और उन्हें बताया कि एक धुन है और लेकिन प्रोड्यूसर के पास आपको देने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं हैं, तो अगर आप चाहें तो वो मैं धुन आपको सुनाऊं। तो रफ़ी साहब ने कहा कि आप पैसे वैसे की बात रहने दीजिए, फ़िलहाल आप धुन सुनाइए। तो श्याम जी ने बहुत डरते हुए कांपती आवाज़ से वो धुन जो थी वो सुनाई रफ़ी साहब को, और रफ़ी साहब को वो धुन इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि मैं ये गीत गाऊंगा। और अगले दिन जब वो स्टूडियो में पहुंचे प्रोड्यूसर भी हैरान थे उन्हें देखकर, और गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब ने, और प्रोड्यूसर ने डरते हुए जितना भी वो कर सकते थे एक लिफाफा उन्होंने पकड़ाया मोहम्मद रफ़ी के हाथ में, तो रफ़ी साहब ने वापस प्रोड्यूसर का हाथ पीछे कर दिया, लिफाफा मोड़ दिया पीछे कि मुझे आपसे नहीं चाहिए कुछ भी, और ये जो गीत है ये आपने मुझे गाने का मौका दिया, बहुत सुंदर गीत था। और श्याम जी के कंधे पे उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने कहा कि बहुत प्यारी धुन तुमने बजाई है सुनाई है, और इसके लिए मुझे किसी भी फीस की ज़रूरत नहीं है, और कभी भी अगर आगे मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। तो ऐसे शख्सियत थे मोहम्मद रफ़ी साहब। तो यही गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म ठोकर से, जिसकी अभी हमने बात की।

0: और अब एक जरूरी सूचना। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में भर्ती एक मरीज का लीवर ट्रांसप्लांट होना है और मरीज को अति शीघ्र ए नेगेटिव ग्रुप की ब्लड की जरूरत है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो ए नेगेटिव ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, वो कृपा करके मोबाइल नंबर 7007191415 या फिर 9415036796 पर संपर्क करें। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7007191415 या फिर 9415036796। याद रखिए कि आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आकाशवाणी FM गोल आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर और संगीत.com जारी है। फिलहाल अगला जो गीत, बल्कि कहना चाहिए कि संगीत.com का आज का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म गुड्डी से और आवाज है वाणी जयराम की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है, ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री

0: निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। वित्तीय आसूचना इकाई भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित सेवाओं तक लोगों को पहुंच देने वाले एप्लीकेशन और URL हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में PG आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमले की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with President of Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake in Colombo today. During the meeting, both the leaders reaffirmed that as civilizational twins, close neighbors and maritime partners, India and Sri Lanka will continue to work together for the development of both the countries and welfare of their people. In a social media post, Mr. Singh said that they also reaffirmed to work jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The Defence Minister arrived in Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka. He's leading a high-level delegation comprising senior officials from the Ministries of Defence and External Affairs. The 9th National Nutrition Month was inaugurated with great fanfare at the International Rudraksh Convention Center in Varanasi today.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और यह है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रेणुका, लेकर आपका मन

पसंद कार्यक्रम मन भावन, जहां हम चलाते हैं आपके मन के पसंद के गीत। जी हाँ, और आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे मन के पसंद के गीत ये कैसे चला सकते हैं। भाई बहुत चला सकते हैं, अच्छे खासे तरीके से चला सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि व्हाट्सएप जो है ना उसे ओपन करना है। हमारा नंबर बहुत से श्रोताओं को पता है और वो मैसेजेस करने लग भी गए हैं, और नंबर मैं फिर भी बताना चाहूंगी हमारे श्रोताओं को। नंबर है जी 9868868753। मैं दोहरा देती हूँ 9868868753। इस नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और आपकी फरमाइश ज़रूर लिखकर भेजिएगा हमें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मैसेजेस को मैं कार्यक्रम में शामिल करूं, आपकी फरमाइश को पूरी करूं और आपके मनपसंद गीत आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। और हमेशा की तरह पहला गीत मेरी पसंद का, और उम्मीद है कि आपको भी ये गीत उतना ही अच्छा लगेगा। पेश है माया फिल्म से गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

दिल में तो हमने आपको बसा लिया है और इसीलिए आपका जो प्यार इतना बरस रहा है ना मैसेजेस के थ्रू, उसे पढ़ने का समय आ गया है। तो पहला मैसेज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये हमें आया है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, ये हमें झारखंड से जो है सुन रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है ये आया है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये हमें सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश से। और अगला जो मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ ये आया है हमें बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, हमें सुन रहे हैं ममता, संजय और बेबी, ये हमें जो है

मैसेज भेजा है, इन्होंने अगला मैसेज आया है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का अगला मैसेज हमें आया है गुन्नौर यूपी से फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, ये भी जो है हमें परिवार संग सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है अनिल, अमर, दिलीप, राजू, रज्जन, संजीव, विपिन, अरुण, संजय, सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस, सौम्या और उनके मम्मी पापा, ये भी हमें परिवार संग जो है सुन रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से। पूरा परिवार का हिस्सा हम भी बन चुके हैं। मेरठ कैंट से आया है दिग्दर्शन और कविता गौड़ का संदेश। अगला मैसेज हमें आया है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची, तनु करमकर, ये भी हमें सुन रहे हैं मध्य प्रदेश से। अगला मैसेज हमें आया है छीपा कॉलोनी खांडवा से और लिखते हैं मोहम्मद यूनिस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, आयुब खत्री, ये भी हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख, ये हमें जाफराबाद से जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधाना खुराना, ये भी हमें परिवार संग सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है कहाँ से भेजा है आपने मैसेज, छत्तीसगढ़ से आया है रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन, ये हमें मैसेज कर रहे हैं और सुन रहे हैं। अगला हमें मैसेज भेजा है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, ये भी हमें जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश, चंद्र शेख, मूसा भाईजा, भाईजा राम कुमार बुड़ाना, सुदामा नगर, खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज आया है हमें कर्नाटका से और लिखते हैं कौन, एनुद्दीन बनहाती, मुमताज, रियाज, रुबीना, जुनैद, अंजुम, मरिया, हुमेरा, सलमान, शीमा, ये भी हमें सुन रहे हैं परिवार संग। अगला मैसेज हमें आया है वर्ली मुंबई से, नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खां, अजीम खां, ये भी हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, आप ऐसे ही हमें मैसेज करते रहिए क्योंकि आपके मैसेजेस बताते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और मैं बता दूं कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस हमारी कुछ बंदिशें हैं, हम सभी श्रोताओं के मैसेजेस शामिल नहीं कर पाते हैं, वक्त की पाबंदी है और आपकी फरमाइश कभी कभी पूरी नहीं कर पाते, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, आपको तो पता ही है, पर प्यार तो बहुत करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। अगला गीत पेश करने जा रही हूँ मैं जॉन डिकोस्टा, रोजी पर और विलिस डिकोस्टा के लिए जिन्होंने हमें सहारनपुर से मैसेज किया था और फरमाइश की थी इस गीत की, जिसे गाया है येसुदास ने और फिल्म है चित चोर।

आप तो हमसे गाने की फरमाइश करते ही हैं और मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है आपसे। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में भर्ती एक मरीज का लिवर ट्रांसप्लांट होना है। मरीज को अति शीघ्र ए नेगेटिव ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो ए नेगेटिव ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर 7007191415 और 9415036796 इस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 7007191415 और 9415036796। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। और अब है बारी मैसेजेस की जो लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। अगला जो मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ ये हमें आया है पंजाब से। गुरप्रीत तंगौरी, जसबीर कौर, महीकृपीत कौर और सहजप्रीत सिंह, इन्होंने जो है हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज आया है हमें उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का। और अगला जो मैसेज पढ़ रही हूँ मैं ये हमें आया है राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, ये भी हमें परिवार संग सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ये भी हमें जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता, ये भी हमें सुन रहे हैं। अगला मैं मैसेज पढ़ने जा रही हूँ मध्य प्रदेश से जो आया है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजा, मैं आपको पहले भी शामिल कर चुकी हूँ मैसेजेस से। अब

रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, ये भी हमें परिवार संग सुन रहे हैं। और अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, ये आया है हमें महाराष्ट्र से, और ये भेजा है नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुन्हेकर, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है जगदीश सिंह मठाड़ू, वीरपाल कौर मठाड़ू, मोगा पंजाब से हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज गुवाहाटी से अलख निरंजन, और ये मैं मैसेज पढ़ रही हूँ हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया का, जो हमें जमशेदपुर से सुन रहे हैं। बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, माहे नूर अंसारी, परिवार संग हमें जो है सुन रहे हैं। अगला मैसेज गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ शेफाली, शेफी डेविस, बिमला और सतीश अनेजा का, जो हमें चंडीगढ़ से सुन रहे हैं, और मनाली से हमें सुन रहे हैं हर्ष, विनय, विनीत और रोजाज। अगला मैसेज आया है हमें कहाँ से, हमें ये आया है महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश, पूरा संघई परिवार हमें साथ में सुन रहा है। और अगला मैसेज हमें भेजा है किसने, किसने भेजा है, प्यार भरा आदाब, ये आया है हमें गंज टुडवारा से, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, ये भी हमें सुन रहे हैं। गुड़गांव से सयान और रानी भी हमें सुन रहे हैं। और अगला जो गीत मैं पेश करने जा रही हूँ ये है फिल्म मेरे सनम से, और इसकी फरमाइश की थी उत्तम सिंह, मोरस, अनिल, अजीत और आयुष ने, ये हमें सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ से। तो पेश है आपके लिए ये प्यारा सा गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2000.

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके रेडियो सखी रेणुका और कार्यक्रम चल रहा है मन भावन। सच बताऊं, जब आप देखते हैं कि आपको कितना प्यार किया जा रहा है, वो अनुभव है ना, शब्दों से बयां नहीं होता। और ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे सामने आए रखे हैं, इतने सारे मैसेजेस, काश मैं इन मैसेजेस को बस पढ़ती रहूं और मेरे पास वक्त की कोई पाबंदी ना हो और मैं बस आपकी फरमाइश पूरी करती रहूं, कितना अच्छा लगेगा ना। पर अफसोस, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने हो सके उतने मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करूं और आपकी फरमाइश भी पूरी करूं। तो चलिए मैसेजेस का सिलसिला जारी रखते हैं। अगला हमें मैसेज जो भेजा है, ये हमें आया है विरम सिंह, सरोज, मनोज, रोहित, कैलाश नगर, गाजियाबाद से ये हमें सुन रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है, ये हमें आया है अलीपुर से, और अलीपुर से कौन सुन रहा है हमें, मोनू पराशर जी ये हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज किशन सबका, आशा सबकाल, सोनिया, सायरा सबकाल, विशाल सबकाल, ये हमें शास्त्री नगर बीर शहर से जो है सुन रहे हैं परिवार संग। अगला जो मैसेज आया है, ये आया है गुन्नौर से आदल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, ये भी जो है हमें सुन रही हैं। अगला जो मैसेज आया है, ये हमें आया है आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश से। और अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये आया है हमें राजस्थान से और मैसेज लिखा है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, ये भी जो हैं हमें सुन रहे हैं। अगला जो मैसेज आया है, ये हमें बिहार से आया है और लिखा है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार ने। अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरज वसीम, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बिहार से जो है ये हमें सुन रहे हैं। आपका शुक्रिया परिवार संग हमें सुनने के लिए। अगला मैसेज हमें आया है कहाँ से, ये आया है हमें मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शब्बिस्ता, मोहम्मद नसीम पलक, लुबना यंश मंसूरी और प्यारा नवासा नुमैर मंसूरी, ये हमें सुन रहे हैं मूंगी सापुर से। और अगला जो मैसेज आया है, ये हमें आया है खेड़ा खुर्द से, लिखा है किसने, नाम नहीं लिखा आपने। अगला जो मैसेज आया है, ये हमें आया है स्वर्ण सिंह, गांव दोले वाला जिला मोगा पंजाब से, ये हमें सुन रहे हैं। और

अगला मैसेज दर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। अगला मैसेज हमें आया है मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से सुन रहे हैं, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं, कैलाश रुक्मणी, दिनेश गौरांश, महेंद्र पार्क दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज आया है हमें श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, ये हमें, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा। अगला जो मैसेज आया है हुकुम करम कर, मैं आपका मैसेज शामिल कर चुकी हूँ पहले ही, और मेरी आपसे ये एक दरख्वास्त है श्रोताओं की, जिन श्रोताओं के मैसेजेस को मैं शामिल कर चुकी हूँ या आपकी फरमाइश पूरी कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप दोबारा मत करिए मैसेज। उन श्रोता को भी थोड़ा सा हमें देना है ना मौका कि उन बाकी श्रोताओं के भी मैसेजेस में शामिल करूं और उनकी फरमाइश पूरी करूं, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिएगा कि अगर मैं आपका मैसेज एक बार कार्यक्रम में शामिल कर चुकी हूं तो दोबारा मत करिएगा, अगली बार कर लीजिएगा। और अगली जो फरमाइश मैं पूरी करने जा रही हूँ, ये हमें भेजा था पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश ने, इन्हें सुनना है धर्मात्मा फिल्म से गीत, तो पेश है आपके लिए ये प्यारा प्यारा सा गीत।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर कार्यक्रम मनभावन आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ है। और मैसेजेस तो बहुत सारे हैं और मैं उन श्रोताओं से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिन श्रोताओं के मैसेजेस को मैं शामिल नहीं कर पा रही हूँ या आपके जो फरमाइश है उसे पूरी नहीं कर पा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, हमारी भी बंदिशें हैं, वक्त इतना ज़्यादा है नहीं, कभी कभी जो है गाने हम नहीं चला पाते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अगला मैसेज पढ़ने जा रही हूं मैं। कहां से आया है ये? आया है छत्तीसगढ़ से। लिख रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती वनिता, रुद्रा वर्मा, ये हमें जो है सुन रहे हैं। और अगला जो मैसेज ये हमें आया है बुलंदशहर से, मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी, पूरा अब्बासी परिवार जो है हमें सुन रहा है। अगला मैसेज हमें आया है गाजियाबाद से, लिख रहे हैं मनोहर लाल गांधी। और अगला मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ शिवा भारती का, ये हमें उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर, ये हमें महाराष्ट्र से सुन रहे हैं। प्यार भरा नमस्कार और आदाब हमें भेजा है, किसने ये भेजा है हमें? सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने। अगला मैसेज राजकुमारी अनुज अंजलि, डॉक्टर पारुल, आद्विक समयपुर दिल्ली से, ये हमें सुन रहे हैं। मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम, ये भी हमें कीर्तिनगर दिल्ली से सुन रहे हैं। बंटिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ये भी जो है हमें सुन रहे हैं। भारती बदोला, सुनील बदोला, त्रिशिका बदोला, ये भी हमें दिल्ली से सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमें आया है कहाँ से, ये आया

है हमें झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णम आनंद, सत्यम आनंद, ये हमें सुन रहे हैं। और अगला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, ये आया है हमें खानपुर दिल्ली से और सुन रहे हैं राम पुकार जरीवाला। अगला मैसेज हमें आया है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित अहूजा, ये भी जो हैं हमें सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला गीत मैं पेश करने जा रही हूँ, ये हमें इसकी फरमाइश की थी औरंगाबाद से प्रकाश सुषमा प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन, बेबी ओवी ने। फिल्म है नमक हलाल और गाना है आशा भोसले की आवाज़ में। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, स्टूडियो की घंटी कह रही है कि कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो गया है। तो जो गीत आप सुन रहे थे उसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना मन भावन कार्यक्रम। और आप ऐसे ही सुनते रहिए, अपना प्यार भेजते रहिए हमें मैसेजेस के थ्रू, अपने मेल्स के थ्रू, और हमें बताते रहिए कि आप कितना प्यार करते हैं हमसे। और आप तो इस बात को जानते ही हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। मुझे पता है कि कुछ श्रोता नाराज़ भी होंगे कि रेणुका जी ने हमारा गाना नहीं चलाया, हमारे मैसेज शामिल नहीं किए। मैं उन सभी श्रोताओं से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि वक्त की पाबंदी है, वरना मैं तो बस आपके मैसेजेस ही पढ़ती रहूँ। मुझे इतना मज़ा आता है आपके मैसेजेस पढ़ने में, आपका प्यार पाने में। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz। और कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे समाचार, और मैं लौटूंगी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते के साथ 5:10 पर। तो सुनते रहेगा आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक भीड़भाड़ वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: मंत्रिमंडल ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। ये परियोजनाएं खड़गपुर से झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन है। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ कम करने में सहायता करेंगे। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतरिम बैठक हो रही है। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, फिजी फिनिक्स, पायोनिक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और URL हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण पर रोक लगाने वाले कानून के दायरे में लाया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आज नागरिकों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार हैं। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमेरिकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है गीत तलाश फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026.

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: Attention, national recognition for your hard work. For those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices, the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to 10th September 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026, issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिल्ली के ILBS अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती एक मरीज के लिए ए नेगेटिव रक्त की 10 यूनिट्स की तत्काल आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदाता कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 7007191415 या 94150367 96। मैं नंबर फिर दोहरा देती हूं, 7007191415 या 94150367 96। आपका रक्तदान किसी की जान बचा सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार इंग्लिश और हिंदी में।

0: Office of the Controller of Communication, Accounts, Maharashtra and Goa Circle, Mumbai, Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, invites applications for filling up 31 posts on deputation basis for 3 years from eligible and willing officials of central or state governments, union territories, autonomous bodies and PSUs. The vacancies comprise 1. Stenographer Grade 1, 11. Junior Accountants, 1 stenographer grade 2 and 15 lower division clerks, carrying pay levels 6, 6, 5, 4 and 2 respectively. The upper age limit is 56 years and the primary place of posting is Mumbai, with possible postings at Aurangabad and Nagpur regional offices. Applications must be sent through proper channel and will be considered if received by 30th 9 2026. For detailed criteria, terms and conditions and the prescribed application format, kindly visit www.cgca.gov.in. National Jute Board, Ministry of Textiles, Government of India, invites applications for engagement of independent consultants and young professionals for positions in administration and establishment, civil engineering, finance and economic services, market promotion and scheme implementation and technology and technical areas. The vacancies include consultant, administration and establishment, 2 posts, consultant, civil engineer, 7, consultant, finance and economic services, 2, consultant, market promotion and scheme implementation, 4, young professionals, finance and economic services, 2, young professionals, market promotion and scheme implementation, 2, and young professionals for technology and technical, 1. Consultants may be engaged up to 63 years of age, while young professionals must generally not be more than 35 years of age, as on 1-8-2026, with qualifications and relevant experience prescribed for each position. Enumeration and service conditions will be governed by the applicable Government of India guidelines. Applications in the prescribed format along with required annexures should reach the National Jute Board within 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.jute.com. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पारादीप पत्तन प्राधिकरण को आवश्यकता है एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की। कुल 2 पद उपलब्ध हैं। योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं रोजगार समाचार पत्र में विस्तृत जानकारी। दिनांक 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में आपको आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकता है एक कंसल्टेंट की। पद की प्रकृति अनुबंध आधारित है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट ndma.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को आवश्यकता है पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 1, प्रबंधक पर्यवेक्षक, लॉन्ड्री प्रबंधक, मैनिफोल्ड तकनीशियन और वरिष्ठ प्लम्बर की। वरिष्ठ प्लम्बर पद के लिए 4 रिक्तियां उपलब्ध हैं, मैनिफोल्ड तकनीशियन के लिए 2, जबकि अन्य शेष सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की वेबसाइट www.aimspatna.edu.in। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के अधीन एक मानित विश्वविद्यालय है जो कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.education.gov.in। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन। प्रबंधक विधि, कुल रिक्तियां 4, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी 1 रिक्ति। पदों से संबंधित आवश्यक शर्तों, योग्यताओं, वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.

0: आवश्यकता है। उप महाप्रबंधक तकनीकी पदों की संख्या 30 है तथा प्रबंधक तकनीकी इसके लिए भी पदों की संख्या 30 है। पदों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। आवश्यक जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.nhai.gov.in। बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अप्रेंटिस टेलीकॉलिंग रिक्तियां 150, टेली कलेक्शन एजेंट रिक्तियां 100, एग्जीक्यूटिव एटीएम रिक्तियां 40, एग्जीक्यूटिव ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस रिक्तियां 25, एग्जीक्यूटिव कॉलिंग रिक्तियां 40, प्रोक्योरमेंट मैनेजर 1 रिक्ति, MIS एनालिस्ट 3 रिक्तियां, डेप्यूटी मैनेजर मानव संसाधन एवं प्रशासन 1 रिक्ति, एग्जीक्यूटिव 20 रिक्तियां, डेस्कटॉप सपोर्ट एनालिस्ट 20 रिक्तियां, डायलर कॉलिंग ऑपरेशंस 1, AM DM लीड्स टेली कलेक्शन 6 रिक्तियां, AM डेप्यूटी मैनेजर 1 रिक्ति, एग्जीक्यूटिव डेबिट कार्ड ऑपरेशंस 10 रिक्तियां, फील्ड कलेक्शन ऑफिसर्स 400, डिजिटल ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट 350 और आधार ऑपरेटर 400 रिक्तियां। योग्यता मानदंडों नियम और शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.bgss.in/careers। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है। संस्थान आमंत्रित कर रहा है लेखाधिकारी के एक पद को भरने के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nios.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना साल 1976 में आई फिल्म मंथन का गीत। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म भारत की श्वेत क्रांति और दुग्ध सहकारी आंदोलन की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। और हमने आज आपको ये गीत क्यों सुनाया, इस पर चर्चा कार्यक्रम में आगे होगी। साथ ही आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और बात करेंगे उन कहानियों की जो खबर नहीं बनती। परिक्रमा के इस अंक में मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
1: Hello, Sir Firozi. Hello and a very good afternoon to all our listeners. Tune in to Parikrama 100.1 FM Gold. I am Abhishek Mukhopadhyay. And with me today is, of course, my co-host, Sir Firozi. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: फाइनल ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग किक्स ऑफ इन मुंबई।
0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया।
1: बीजेपी टू लॉन्च मंथ लॉन्ग

0: Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life.
1: पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का अनुमान.
0: एंड न्यूएस ओपन टेनिस बेन शेल्टन एंटर्स मेन सिंगल सेमीफाइनल बीटिंग डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Rashtriya Poshan Maah. Well, Sir Firozi, every year the month of September is observed as Rashtriya Poshan Maah, a dedicated platform to bring communities together and reinforce key nutrition, health and caregiving practices.
1: बिल्कुल अभिषेक, और आज हम एक ऐसी चीज की चर्चा करेंगे जो हर परिवार से जुड़ी है. हम बात कर रहे हैं पोषण की, क्योंकि अच्छा पोषण सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं होता. ये सही तरह से खाना खाने, जरूरी पोषक तत्व पाने और खाने की अच्छी आदतों के बारे में है.
0: Absolutely, Sir Firozi, and Rashtriya Poshan Maah focuses especially on pregnant women, lactating mothers, children, adolescents and the families.
1: और 2026 के लिए पोषण माह का संदेश खास तौर पर अहम है. बेहतर पोषण के लिए न सिर्फ जागरूकता बल्कि कार्रवाई और सामुदायिक भागीदारी भी जरूरी है. तो आइए एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं अभिषेक, पोषण इतना जरूरी क्यों है?
0: Because, Sir Firozi, nutrition affects almost every aspect of our lives. Malnutrition remains one of India's significant public health challenges. It can affect the health, growth, learning and productivity of women and children across the life cycle.
1: बिल्कुल अभिषेक, और इसलिए पोषण को सिर्फ एक आयु वर्ग से जुड़ा मुद्दा नहीं माना जा सकता.
0: Exactly, Sir Firozi, and it begins even before a child is born with the nutrition and health of the mother during pregnancy and continues through infancy, childhood and adolescence.
1: बिल्कुल, यही वजह है कि छोटे बच्चों को सही तरीके से खाना खिलाना, खाने पीने में विविधता लाना, विकास की निगरानी, साफ सफाई और प्रसव पूर्व देखभाल जैसी आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं.
0: And the Union Minister of Women and Child Development launched the 9th National Nutrition Month at the International Rudraksha Convention Center in Varanasi today. Chief Minister Yogi Adityanath, along with Union Minister for Women and Child Development Annapurna Devi, inaugurated the program.
1: इस मौके पर उन्होंने कहा कि 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के जरिए पोषित और सशक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया है. उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ की सेहत, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा हुआ है. सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि शुद्ध और संतुलित पोषण स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र की मजबूत नींव है.
2: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप 9 सितंबर 2026 से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है. हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. इस वर्ष पोषण माह का हमारा संकल्प है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें हमारा विशेष ध्यान विविधतापूर्ण और प्रोटीन युक्त आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पौष्टिक भोजन ECCE और गर्भवती व धात्री माताओं की समग्र देखभाल पर केंद्रित रहेगा.
0: And speaking on the occasion, Chief Minister Yogi Adityanath said, Anganwari center system in Uttar Pradesh has also undergone significant changes. He said, these centers are now becoming not just places for nutrition distribution, but for children's health, nutrition and early development. We have more from a correspondent.
3: The inaugural event in Varanasi featured a nutrition fair, a video presentation based on beneficiaries' experiences, and a dialogue between the union minister and Anganwadi workers. Additionally, the Chief Minister Yogi Adityanath gathered feedback from Anganwadi workers from across the country on their work and sought suggestions on how to improve it. He, along with union minister, also inspected the stalls set up for the occasion. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि कुपोषण से निपटने के लिए एक समन्वित प्रयास के अंतर्गत भारत सरकार ने मार्च 2018 में पोषण अभियान शुरू किया था.
0: एंड पोषण अभियान ब्रॉट न्यूट्रिशन टू द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा बाय एनकरेजिंग कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड कम्युनिटीज.
1: और इस मिशन के केंद्र में है एक बहुत ही शक्तिशाली विचार, यानी जन आंदोलन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केवल सरकार के प्रयासों से स्थायी बदलाव नहीं आ सकते.
0: Exactly, Sir Ferozi, and whether it's improving infant feeding practices, encouraging dietary diversity,

0: promoting antenatal care, ensuring hand hygiene, or encouraging timely health-seeking behavior. These changes become sustainable when families and communities actively participate, and that is what makes Rashtriya Poshan Maha so significant.
1: बिल्कुल अभिषेक, पोषण माह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां सरकारी सिस्टम, फ्रंटलाइन वर्कर, परिवार और समुदाय एक साथ आ सकते हैं और बेहतर पोषण के लिए मिलकर कदम उठा सकते हैं.
0: So, Sir Firozi, this September, the message is not simply know more about nutrition. It is know, act and participate.
1: बिल्कुल अभिषेक, और आइए अब राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के लिए प्रस्तावित पहले विषय पर बात कर लेते हैं, जो कि है आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन. तो अभिषेक, आहार में विविधता का असल में मतलब क्या है?
0: Well, Sir Firozi, it means including a variety of foods in a daily diet. A diverse diet can include cereals and millets, pulses, fruits and vegetables, nuts and seeds, milk and milk products, along with adequate protein from both plant and animal sources. So it is not about eating just one type of food.
1: जी अभिषेक, हमने पोषण, समुदाय की भागीदारी और आंगनवाड़ी केंद्रों की अहम भूमिका के बारे में बात की है, लेकिन एक और मजबूत जरिया है जो पूरे देश में पोषण से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रहा है, जो कि है पोषण ट्रैकर.
0: That's right, Sir Firozi. And when we hear the word nutrition, we usually think about food, health and healthy habits. But today, technology is also playing an important role in ensuring that nutrition services reach the people who need them. So what exactly is the Poshan Tracker?
1: पोषण ट्रैकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी की निगरानी के लिए मुख्य गवर्नेंस टूल के तौर पर काम करता है और इसे 1 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था.
0: Exactly, and since its launch, the application has facilitated near real-time data collection, helping monitor various aspects of आंगनवाड़ी services.
1: लेकिन अभिषेक, असल में ये किस तरह की जानकारी को ट्रैक करने में मदद करता है?
0: Well, a range of important activities, Sir Firozi. For example, it helps monitor the opening of the Anganwadi centers, daily attendance of children, early childhood care and education or ECCE activities and growth monitoring.
1: और अभिषेक, ये सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि ये जानकारी जमीनी स्तर पर सेवाएं कैसे दी जा रही हैं इसकी तस्वीर साफ करती है, और इसके साथ ही ये जानकारी पोषण और शुरुआती बचपन की सेवाओं की बेहतर निगरानी और गवर्नेंस में मदद कर सकती है.
0: Absolutely, Sir Firozi, and the Poshan Tracker currently monitors a wide beneficiary universe that includes pregnant women, lactating mothers, children up to 6 years of age and adolescent girls. That covers some of the most important stages of the life cycle when nutrition and care can make a lasting difference.
1: और गर्भावस्था तथा स्तनपान से लेकर बचपन और किशोरावस्था तक सही समय पर जानकारी और निगरानी से जरूरी सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
0: So, Sir Firozi, in a way, the Poshan Tracker brings together two very important ideas. Technology and nutrition governance.
1: बिल्कुल अभिषेक, टेक्नोलॉजी लगभग रियल टाइम जानकारी देने में मदद करती है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर और समुदाय सर्विस डिलीवरी के केंद्र में बने रहते हैं.
0: And to conclude our discussion on the Rashtriya Poshan Maha, Sir Firozi, we can say that by combining technology-driven real-time tracking with large-scale community mobilization, Jan Andolan Rashtriya Poshan Maha has transformed nutrition into a nationwide public movement and operating under the unified framework of Mission Poshan 2.0. This annual campaign continues to bridge service delivery gaps, promote dietary diversity, and prioritize the critical initial years of a child to build a healthier, malnutrition-free India.
1: श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि आज उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है.
0: Absolutely, we start off with a story from Jammu, and the first International Film Festival of Jammu and Kashmir is showcasing a diverse range of Indian and international cinema and bringing together leading filmmakers, actors, cinema professionals and film enthusiasts under the theme Rang e Cinema. We have more from a correspondent.
2: As the festival enters its third day today, Mirzapur the movie has emerged as one of the prominent attractions, with actors Pankaj Tripathi and Deviyandu present at the festival. The actors, known for their popular characters Kalin Bhaiya and Munna Bhaiya, interacted with Chief Minister of Jammu and Kashmir Umar Abdullah and audiences during the festival. Other prominent Indian films being showcased include Laila Majnu and Ikkis, besides classics such as Aarzu, Kashmir Ki Kali, Jangli and Kabhi Kabhi, reflecting the long-standing association between Kashmir and the Bollywood. The international selection has brought films from several countries,

कैप्टन विक्रम बत्रा को सन 1999 में सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विक्रम बत्रा को इनकी बहादुरी के कारण शेरशाह के नाम से भी बुलाया जाता था।

0: आज पुण्यतिथि है असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जोगेश दास की। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह पृथ्वीवीर असुक के लिए इन्हें सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका असम का लोकगीत, जो मूल रूप से अंग्रेजी और फिर अन्य भारतीय भाषाओं में था, असमिया लोक कथाओं पर एक सरल और व्यापक पुस्तक है।
1: And Adam Sandler also celebrates his birthday today. He's a highly successful American actor, comedian, screenwriter, and producer. He's one of the most recognizable and commercial successful figures in modern Hollywood comedy, with his films collectively grossing over $2 billion worldwide. And also Hugh John Mungo Grant was born on this day in 1960. He's an English actor. He established himself early in his career as a charming and vulnerable romantic leading man, and has since transitioned into a character actor. He has received several accolades, including a British Academy Film Award and a Golden Globe Award, as well nominations for 2 Primetime Emmy Awards. He received an honorary Caesar in 2006. In 2022, Time Out magazine listed Grant as one of Britain's 50 greatest actors of all time. As of 2025, that is last year, Sarfirozi, his films have grossed over $4 billion worldwide.
0: और अब हम याद कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश की काशी नगरी में जन्मे भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने साहित्य के हर क्षेत्र, कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि पर काम किया। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
1: Yes, and of course, Bharatendu Harishchandra was the iconic Indian poet, writer and playwright who is universally recognized as the father of modern Hindi literature and Hindi theatre. Well, moving on, Leela Chitnis was born on this day in 1909. She was a pioneering Indian actress who left an indelible mark on Hindi cinema, transitioning from a glamorous 1930s leading lady to Bollywood's ultimate quintessential on-screen mother. Born Leela Nagarkar, she was one of the first highly educated women to enter the film industry, holding a Bachelor of Arts degree at a time when education for women was uncommon and acting was socially discouraged.
0: अभिनय के अलावा लीला चिटनिस ने फिल्म आज की बात का निर्माण और निर्देशन भी किया। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी ही आवाज में एक गीत।

0: Yes, and Sarala Devi Chaudhrani was born on this day in 1872. She was a pioneering Indian educationist, feminist icon, and political activist who fundamentally shaped the early women's empowerment and the nationalist movements in India. She is the most renowned for founding the Bharat Stree Mahamandal in 1910, which was the first national-level women's organization in India.
1: आज ही जयंती है भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब रमजान खान की. हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया.

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक भीड़भाड़ वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: मंत्रिमंडल ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पैंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पैंड्रा रोड तक तीसरी लाइन। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ कम करने में सहायता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की और दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा जो भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ हों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्त चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार सहयोग।

0: और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। वित्तीय सूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिटयूनिक्स, डीजीफिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स्ड फ्लॉट और ट्यू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगिताओं का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। बेन शेल्टन ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमेरिकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet has approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of more than 10,700 crore rupees. Briefing media New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian railways by about 656 kilometers. The Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometres. The total estimated cost of the projects is more than 10,021 crore rupees and they are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav informed that the government has decided for four lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors.
2: Out of the 11,000 kilometers of the high-density corridors, the 7 corridors which carry about 40% of the traffic of railways, in these corridors, about 2,000 is already four-lined, completed, about 5,000 is being done or already approved now, and another 4,000 is in the process of final sanction.
1: Defence Minister Rajnath Singh today met Sri Lankan President Anurakumarathis Naika in Colombo. Both sides reaffirmed their commitment to work together for the welfare and development of both nations. They discussed ways to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. Extending a warm welcome to Raksha Mantri, President Dissanayake recalled his interactions with Prime Minister Modi and reiterated that Sri Lanka would never allow its territory to be used for any activity activities inimical to India's security interests. The two sides also exchanged MOUs on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force. The Defence Minister arrived in Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka. Ahead of the BRICS Leaders Summit to be held in New Delhi later this week, the final BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors meeting is taking place in Mumbai. Previously, the Finance Ministers and Governors had met in Jaipur last month. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has directed the Municipal Corporation of Delhi, MCD, to take action against illegal structures in several parts of the national capital following the Satyaniketan building collapse incident. The Delhi Chief Minister also instructed all senior MCD officials to remain on the ground during the action. The Union Ministry of Women and Child Development launched the 9th National Nutrition Month at Varanasi in Uttar Pradesh today. Chief Minister Yogi Adityanath, along with Union Minister for Women and Child Development, Annapurna Devi, inaugurated the program. Speaking on the occasion, the minister said, through the 9th National Nutrition Month, the government reiterates its commitment to a well-nourished and empowered India. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday and the completion of 25 years of his public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said, Prime Minister Modi will complete 25 years in public service on the 7th of October this year. He said on this day, in 2001, Mr. Modi began his tenure as the Chief Minister of Gujarat. The flood situation in Bihar has improved slightly as water levels in the Ganga, Gandak, Kosi, Son and Punpun and other rivers are showing a declining trend. However, several rivers are still flowing at high levels and relief operations continue in affected areas. Relief operations are underway in flood-affected areas of Patna, Saran, Vaishali, Begusarai, Khagadia, Samastipur, Jahanabad and Arwal districts. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal and parts of Northeast India till tomorrow. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and the Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. In the US Open tennis, American Ben Shelton and 11th seed Francis Tiafoe have set up a semi-final clash in men's singles. And with that, we end this news bulletin.

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम शुरू हो गया है गाते गुनगुनाते आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ, और मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन गीत जो हैं यहाँ पर संजो के रखे हैं। और इनमें से जो गीत है ना, जो 90s के गीत हैं, ये बहुत ही प्यारे तो हैं ही, और साथ में जब इनको सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि आप वक्त में पीछे चले गए हैं। और कुछ गाने सुनने में अच्छे तो होते ही हैं, उनके अंदर जो एक संदेश छुपा होता है ना, वो भी बहुत प्यारा और बढ़िया होता है। ऐसा ही है हमारा पहला गीत, जो है फिल्म त्रिमूर्ति से, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और विनोद राठौड़ ने। तो चलिए सुनते हैं।

वेरी गुड। एक बात पता है क्या है? वो है रक्तदान करना। दिल्ली के ILBS अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती एक मरीज के लिए ए नेगेटिव रक्त की 10 यूनिट्स की तत्काल आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदाता कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 700-7191-415 या 94150-36796। आपका रक्तदान किसी की जान बचा सकता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है और गाने से ज्यादा मुझे इसका फिल्मांकन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप इस गाने को देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि काश ये गाना चलता है रहे और ऐसी ही चीजें होती रहें फिल्म पर, टीवी पर, पर्दे पर। पेश है आपके लिए यस बॉस फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

वक्त में अगर पीछे जाना है ना, तो इंटरनेट या एआई की मदद क्यों लेना? जब हमारे पास इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, तो उसे बस आंख बंद करके शांत होकर सुने तो हम पक्का वक्त में पीछे जरूर जा सकते हैं। अगला गीत आपके लिए पेश है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि

0: बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम जारी है गाते गुनगुनाते आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। कुछ गाने ऐसे हैं उनके चाहे जितने भी रिमिक्स बन जाएं, पर जो ओरिजिनल वर्जन है ना, उसे सुनने का मजा ही कुछ और है। तो पेश है आपके लिए अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म है मेजर साहब।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। और आपसे एक दरख्वास्त है, दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती एक मरीज के लिए ए नेगेटिव रक्त की 10 यूनिट्स की तत्काल आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदाता कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, नंबर है 7007191415 या फिर 94150367 96। आपका रक्तदान किसी की जान बचा सकता है। और अब बढ़ते हैं गानों की तरफ। अगला गीत आपके लिए पेश है बड़े मियां छोटे मियां से, और उम्मीद है इस गाने को सुनकर आपके कदम भी जरूर थिरक उठेंगे।

कुछ गाने हमेशा के लिए एवरग्रीन हो जाते हैं और उसके पीछे कई फैक्टर्स छिपे होते हैं, जैसे कि कोरियोग्राफी, उस फिल्म की अभिनेत्री और जिन्होंने डायरेक्ट किया है, और कहानी, और जिसने उस गीत को गाया है, संगीतकार, सब कुछ मिलकर ही उस एक गाने को उतना हिट बना देते हैं। अगला भी गाना कुछ ऐसा ही है जो एवरग्रीन है। पेश है आपके लिए अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में फिल्म सैलाब से ये गीत।

तो श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनर कुमार देसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं

0: करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले दो सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 multi-tracking projects of the Railways Ministry at a total estimated cost of more than 20,700 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. The minister further informed that the government has decided to undertake 4-laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
2: The 7 high-density railway corridors, along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future, are being upgraded to 4-line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its 2 diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled along with the Delhi to Guwahati corridor.
1: In reply to a question on Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. He said the construction work on this corridor is progressing rapidly and initially the 100-kilometre section from Surat to Vapi in Gujarat will be open. Defence Minister Rajnath Singh called on President of Sri Lanka Anurakumara Dissanayake in Colombo today and discussed the entire spectrum of the multifaceted partnership between the two countries. During the meeting, the two sides reaffirmed their commitment to work together for development of both nations while working jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The two sides also exchanged Memorandum of Understanding, MOU, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both countries. During the meeting, President

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी, वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहां कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। पहली अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे के कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा

0: डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
1: इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा। इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स। इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो, गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और उसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
0: श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं है, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
1: भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इंपैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा

0: में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोवर्धन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 20,000 कोट्यधिक व्ययेन 8 रेल बहुपथ प्रकल्पाः अनुमोदिताः। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्गस्य चतुष्पथीकरणाय च स्वीकृतिः प्रदत्ता। श्रीलंका वायुसेनायाः L-70 प्रक्षेपकाणाम् आधुनिकीकरणाय भारत श्रीलंका सैन्य सन्धिः हस्ताक्षरितङ्गतः। स्वभूमिः भारत विरोधी कृत्येभ्यः न प्रयुज्यते इति कोलंबो प्रशासनेन आश्वासितम्। आगामिनः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वांग रूपेण मुंबईयां ब्रिक्स वित्तमंत्रिणां, केन्द्रीय बैंक नियामकानां च अंतिमा महत्वपूर्णा संगोष्ठी साम्प्रतं प्रचलति। चीनदेशस्य शंघाई नगरे आयोज्यमानायां विश्व कौशल स्पर्धायां भारतं प्रथमवारं 11 नवीनासु कौशल श्रेणीषु भागं ग्रहीष्यति। अपि च अहमदाबादे प्रचलन्त्याः विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायाः अन्तिमे दिवसे भारतेन उत्कृष्ट प्रदर्शनेन 2 स्वर्ण पदके, 4 च कांस्य पदकानि स्वायत्ती कृतानि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं रेल संजालस्य अभूतपूर्व विस्ताराय, क्षमता संवर्धनाय च 20,000 कोट्यधिक रूप्यकाणां व्ययेन निर्मीयमानेभ्यः 8 बहुपथ रेल प्रकल्पेभ्यः स्वाकृतिं प्रादात्। नवदिल्ल्यां संवाददातृन् संबोधयन् सूचना प्रसारण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत् यत् एतेषु प्रथमचरणे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्येषु व्याप्त 14 मण्डलेषु नूतन मार्गस्य निर्माणं विधास्यते। अस्मिन् खड़गपुर झारसुगुड़ा चतुर्थपथः, कटनी पेंड्रा रोड चतुर्थपथः तथा बिलासपुर पेंड्रा रोड तृतीयपथः समाविष्टाः सन्ति। अनेन सहैव मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्येषु 45-500 किलोमीटर परिमित विस्ताराय 21,000 कोटि रूप्यकाणां अन्य 5 परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। मन्त्रिणा सविशेषं प्रख्यापितं यत् सर्वकारेण देशस्य सप्तोच्च सांद्रता

0: This is Akashwani. Namaskar, good evening and welcome to Market Mantra. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और स्टूडियो में आज हमारे साथ तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे. उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद निखिल जी.
1: और सबसे पहले डालते हैं नजर मुख्य समाचारों पर.
0: यस, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अराउंड 1%. सेंसेक्स प्लंजेस ओवर 800 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23,450. Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की गिरावट. सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,450 से नीचे आया. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल. ब्रेंट कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी.

0: Well, friends, before we move ahead, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग तीन महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक यानी 1.1% लुढ़क कर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक यानी 0.9% नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी आधा आधा प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended lower for the third consecutive session today. The Sensex plunged 813 points or 1.1% to close at 74,764. The Nifty also shed 204 points or 0.9% to settle at 23,432. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 and the small-cap 100 indices also declined 0.5% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियां HCL टेक 4.5%, इंफोसिस 4.4% और टेक महिंद्रा 3.9% रहीं। वहीं सबसे ज्यादा लाभ वाली कंपनियों में अडानी पोर्ट्स

0: 3.7%, टाटा स्टील 2.4% और ट्रेंड 1.1% की बढ़त में थी।
1: A look at the sectoral indices. Well, in the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, IT fell 3.2%, focused IT dropped 3%, and realty lost 2%. In contrast, metal advanced 1.9%, hospitals gained 1.4%, and utilities added 1.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,600 companies declined, 1,792 advanced, and 196 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ। उदयन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर बाजार को हम देखें तो 3 महीने पहले किस स्तर पर हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये चिंता का विषय है या ये एक मार्केट में सर्टेन ऐसी स्थिति जिस पर आगे आकर के हम बढ़त पा सकते हैं या इससे भी नीचे जाने की संभावना है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि तेल के बढ़ते दामों की वजह से जो खाड़ी में संघर्ष चल रहा है उसके वजह से तेल के दामों में जो उछाल आया है और एक $100 प्रति बैरल का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसको मेरे ख्याल से आज रीच किया गया है, तो वो एक चिंता अपनी जगह में बनी हुई है। और इसको अब जो बाजार है विश्व स्तर में लोगों का अब ये मानना हो रहा है कि ये जो संघर्ष है ये अब बहुत जल्दी ये रुकने वाला नहीं है। और जो दाम है, सबसे इम्पोर्टेंटली कच्चे तेलों के दाम में जो एक कमी, जो एक सस्टेन्ड कमी है, वो शायद देखने को फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 अगले साल में शायद तब तक का इंतज़ार करना पड़े। और ये आपूर्ति से जुड़ी हुई बात है और जब तक वो संघर्ष ख़त्म नहीं होगा तो आपूर्ति में जो जो कैपेसिटी में जहाँ पे रिफाइनरी होती जो मालवाहक जहाज़ हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सप्लाई रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये रातों रात ठीक नहीं होते हैं, तो इसमें वक्त लगेगा। तो वो बात अब मार्केट्स फैक्टर इन कर रही हैं। दूसरी बात आपने बताया कि ये निफ्टी 50, तो कई मुझे एक सोच जो काफ़ी विश्लेषक कर रहे हैं वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। वो ये है कि वो उनका ये कहना है कि आप हम लोग निफ्टी 50 को देख के मार्केट्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन वाले जो हैं उसी से डिपेंड, वहीं से निकलता है। पर लोगों का दावा नहीं ये तर्क है और वो उसमें डेटा भी है कि दूसरी जो कंपनी जो वो 50 निफ्टी 50 से आगे जो मिड कैप की टेरिटरी में चली जा रही है, तो उनके अगर आप रिजल्ट्स देखें, उनके अगर फाइनेंशियल्स देखें, वहाँ पे काफ़ी प्रगति नज़र आ रही है और वो आपके शेयर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इंडियन जो वित्तीय संस्थान हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वो भी वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, तो वो लार्ज कैप में नहीं कर रहे हैं जो कि निफ्टी 50 तो है ही वो, पर वो उधर उस साइड में जा रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे निवेश हो रहा है, तो आप पाएंगे कि वो जो इंडिया, हालांकि आज प्रभावित वो भी हुए नेगेटिवली जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा, पर वहाँ पे लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। तो आप 1 year 6 month अगर रिटर्न्स देखें, जो कि देखना नहीं चाहिए इक्विटीज़ में, 3 year देखें, 2 year देखें, 5 year देखें, तो सारे पीरियड्स में अगर देखें, रिस्क एडजस्टेड देखें, सब में वो आप बेहतर करते हुए पाएंगे। तो उनका तर्क ये है और ये मेरे को काफ़ी आकर्षक लगता है, तो ये श्रोताओं को बताने लायक बात है।
0: लेकिन इन सब के बीच में आईटी शेयर्स में गिरावट हम जो देख रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आईटी के फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसके बाद भी हम लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं?
2: तो वो कारण सीधा तो मैं नहीं बता पा रहा क्योंकि मैंने विश्लेषण किया नहीं है
0: जी, जी।
2: पर मेरे को ताज्जुब ना होगा कि अगर ये इसका कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनकी सेलिंग की वजह से हो, क्योंकि वो भी बाहर लेके निकल रहे हैं। हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट वो कहते हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो एक रिस्क ज़्यादा होता है, फिर करेंसी से जुड़ी हुई रिस्क होती है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से जुड़ी हुई रिस्क होती है, जो कि हमारे केस में नहीं, हमारी करेंसी के केस में है, और हमारी करेंसी को दबाव में है, तो वो जब आप देखते हैं तो एक हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है। और यील्ड्स जो हैं, लोअर रिस्क यील्ड्स जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो कि बहुत सेफ़ माने जाते हैं क्योंकि यील्ड वहाँ पे बेहतर हो रहे हैं, तो कोई फंड मैनेजर होगा इंटरनेशनल, वो ये देखेगा कि ये रिस्क लेके मैं ये उठाऊं या मैं इधर लगाऊं, तो वहाँ पे एक जो कंपैरिजन है वहाँ पे वो फेवरेबल हो रहा है। तो कई बार जो पुल आउट हो रहा है वो कुछ दूसरे मार्केट्स में भी जा सकता है, जैसे आप साउथ कोरिया में आप दिलचस्पी रख सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल फंड मैनेजर है साउथ कोरिया दूसरे मार्केट्स में। पर बाकी जो है आप इस तरफ भी देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि नहीं भाई रन अप काफ़ी हो गया गोल्ड और दूसरे एसेट क्लासेस में हम US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएं, तो मुझे ना ताज्जुब हो कि ऐसी बात हो रही हो और जिसके वजह से आप ऐसे रिजल्ट्स देख रहे हैं।
1: But then Nikhil mentioned IT. I think he touched a raw nerve, so to speak. Could it also be because of the fact that US, much of our IT export is in the US and Europe, and they are having high inflation? It's about 3.4% in US, which is much beyond their digestible limit. Do you think that could be a factor as well?
2: It could be, but you know. See, you will not. I'm an eternal optimist, but one has to also give. One has to look at it also with equanimity, uh-huh, right? Uh-huh. See, is the whole whiplashing that has been happening about Indian IT is that they are not coming up with foundational models and it's only the Mag 7 or whatever names you want to give. They are not into making chips, they are not coming up with the AI foundational models, or they are not adapting like the way Chinese are doing. Is that the only part of the chain that will exist in AI? Okay, who are the people who are going to be using AI? We have got the largest population and we have got the largest mobile penetration. Who do we think are going to be using the AI, right? And who do we think, where will the innovation will be happening? Where people are using it, where do you think there the innovation will happen, or where there are just 20 million, 40 million, 50 million people, that's where it's going to happen? Where do we think data centers are going to come about? Where do we think chips will have to be made on the ground because users are using it? So if we start looking at it from that point, then this whiplashing, you start to discount it quite a bit. And it's okay. I mean, these things move in circles. Tomorrow, if Sarvam does a grand job, which it is, and there are others, you might see the story change. It doesn't take much time.
1: Right. All right. Well, global crude oil prices surged today as escalating conflict in West Asia heightened concerns over disruptions to oil flows. Brent crude was trading 2.9% up at $100 and 81 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.7% up at $95 and 55 cents per barrel when reports last came in. And friends, now we go over live to our correspondent who is currently in Dubai for the latest updates from the region. Manish Shiva Zori is with us. Manish, hello.
3: Hi, Lalima.
1: Hi, Manish. Firstly, could you tell us what is the current situation in the region?
3: The situation remains tense. We've seen direct confrontation between US and Iran off late, but yesterday it was at a sharply escalated levels. So, I think it was one of the biggest attacks on ships, direct ships, since the beginning of the current conflict. I mean, we've seen other infrastructure being attacked earlier, but Iran, US claimed to have hit 5 ships, Iran claimed to have hit 10 ships directly. So, which I think is not such a good news for the maritime transport thing. Another news that that was reported yesterday is the Houthis attacking Saudi energy infrastructure, including some of their oil facilities. So if you look at it, it's not a great news in terms of not just shipping, but also in terms of general energy infrastructure in the region.
1: Right. Manish, today Brent crude has crossed the $100 per barrel mark. How is the current situation impacting the world from an economic perspective?
3: So Brent crude

0: Crude crossing 100 is always a warning sign for the global economy.
1: Yeah.
0: Because higher oil prices would mean higher costs for transport, electricity, manufacturing. And, you know, if we extrapolate that, almost inflation for almost every goods that we consume. Now, the problem here is, back in July also, we saw Brent rising beyond 100.
1: Mm-hmm.
0: And we have seen in the past also Brent spiking beyond 100, but then coming back to the normal. The problem is the underlying causes this time around. The conflict doesn't seem to be dying down. There has not been any concrete diplomatic solution to it. And this whole uncertainty is what is making the situation tense. Because only this week, if I remember it right, the core OPEC plus countries decided to keep the output in October same as September. So that means there's no new oil coming in to the system.
1: Right.
0: Plus the uncertainty of this US-Iran conflict means a lot of issues in terms of oil prices.
1: Right. Thank you. Thank you, Manish, for giving us an insight into the current situation in West Asia. That was Manish Shivazuri from Dubai. And moving on.
2: Uddin ji, abhi hum jab oil ki baat kar rahe hain, to kacche tel ki kimaton ka is tarah $100 se upar jana, bharatiya arthavyavastha ke according agar is cheez ko samajhne ki prayas kare, to kya lagta hai aapko ki kaisi sthiti hamare samne utpann ho rahi hai?
3: सबसे पहली बात तो इमीडिएटली मुद्रास्फीति के जो दबाव हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, वो सीधे आ जाते हैं और ऑलमोस्ट इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है. तो वो क्योंकि वो एक लाइफ ब्लड की तरह है, आपके शरीर में रक्त जो है सारे अंगों में जाती हैं, तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के में इम्पैक्ट होगा, चाहे वो एनर्जी जनरेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो. ट्रांसपोर्ट में अगर होगा तो सारी चीज़ों में आ जाएगा. तो वो एक प्रेशर है और हम अधिकतर बहुत ज़्यादा आयात करते हैं. हमारे पास डोमेस्टिक जो सोर्सेज हैं वो है नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है. और यूं तो हम रिन्यूएबल्स, हमारे जो नॉन पेट्रोलियम वाले जो हमारे सोर्सेज हैं वो हम वहाँ पे बेहतर कर रहे हैं रिन्यूएबल्स में, पर अभी भी हमारे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. तो वो सीधा इम्पैक्ट करेगा और वो क्योंकि ये मार्केट मंथ प्रोग्राम है तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल्स में असर होने के अलावा मेरे को तो कोई वो नज़र नहीं आता कि उसमें असर आप देखेंगे. और कुछ दिन तक रहा तो वो तो आप ज़रूर पाएंगे, हो सकता है कुछ केस में इमीडिएटली देखें, कुछ केस में कैस्केडिंग इफेक्ट होगा वहाँ आगे चल के मिलेगा, और कुछ तो ऑब्वियसली पास ऑन हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे कंपनीज. तो वो इम्पैक्ट है. बट ये भी मैं कहता चलूँ, भारत क्योंकि हम ऐसे पीरियड से गुजर चुके हैं जब मुद्रास्फीति होती रही है, तो हमारे जो मैनेजर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में फिस्कल को मैनेज करें या मॉनेटरी मौद्रिक नीति को मैनेज करें या कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेज करें या लघु उद्योग में करें, हमें आदत है, प्रैक्टिस है
2: जी.
3: ये प्रैक्टिस बाकियों को नहीं है दुनिया में. तो वो टीका जो है ना मुद्रास्फीति के विरुद्ध जो टीका है वो हमें लग चुका है, तो इसमें से हम बेहतर उभरेंगे और उभर जाएंगे.
2: उदिन, एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज की स्थिति को देखें जहां पर हम देख रहे हैं कि 3 महीने के पहले के स्तर पर यानी नीचे के स्तर पर आ चुके, मार्केट में इन्वेस्ट करने के हिसाब से या मार्केट में कुछ खरीदने के हिसाब से, ये कैसा समय है?
3: फैंटास्टिक समय है, पर आप वो सब ना करें. आप कोई भी वक्त जो है निवेश जो है वो डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हम हर रोज़ सुबह व्यायाम करते हैं
2: जी.
3: कुछ चीज़ें जो है नियमित रूप से करते हैं, तो जैसे पौष्टिक खान पान करते हैं, ये वो आदत की तरह है. आपको ये नहीं कि आपने एक दिवाली या दशहरे का भोज की तरह आपने निवेश किया कि हमने साल में एक बार करा, वो अगर करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है. आप नियमित रूप से करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हर मार्केट में मिलती हैं. और ये जो दो साल वाली बात है, ये इट इज़ 2 साल 2 महीने वट एवर आप कहेंगे, इट इज़ डजन लुक नाइस. देखने में लगता नहीं कि ऐसा लगता है हम वहीं बैठे हैं, हमने एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया, फिर कहीं और डाल देते तो अच्छा होता. पर दिक्कत यह है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, उसकी अपनी यूटिलिटी होती है। अगर फिक्स डिपॉजिट में मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को लड़ने के लिए हथियार सिर्फ इक्विटी ही है, इसलिए आपको जो पैसा आपको फौरन नहीं चाहिए आप वहाँ लगाएं, उसको छेड़े मत। मैं कई लोगों को देख चुका हूँ, वो ना क्या करते हैं, हर हर घंटे देखते रहते हैं, वो नहीं करना। डाल के जैसे आप एक पौधे के वो प्लांट डालते हैं और वेट करते पानी देते रहते हैं, वही काम निवेश के साथ करना है।
1: राइट, सो हैव अ डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट, राइट। ओके, मूविंग ऑन, सॉरी, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 10,700 करोड़ रुपीज। ब्रीफिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट Casting Minister Ashwini Vaishnav said that these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of the Indian Railways by about 656 kilometers. While the Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, increasing the existing network of the Indian Railways by about 540 kilometers. The total estimated cost of the projects is more than 10,000 21 crore and they are planned to be completed by up to 2029-30. Well, Mr. Vaishnav also informed the government has decided to four-lining of all the 7 high-density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. In reply to a question on the Mumbai Ahmedabad bullet train project, Minister Ashwini Vaishnav informed that the bullet train service will commence next year.
4: बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन 2027 में फिक्स है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है। पहले सूरत से बिलीमोरा का 50 किलोमीटर का सेक्शन का प्लान था, अब उस प्लान को और बढ़ा के 100 किलोमीटर है सूरत से वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है, अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी टेस्टिंग के लिए।
1: So then, talking about these developments on infrastructure, particularly the railways and the four-lining of the 7 high-density railway corridors, do you think it'll add to the PM or it'll enhance the PM Gati Shakti mission?
3: Of course it will. The good part is that we need these freight corridors where the freight will move. See, the whatever we produce, it needs to move very fast.
1: Yes.
3: Through the road and also through the rail. Now what happens is same track is being used by both freight and passenger, then one cannot be going up at the cost of the other. Mm-hmm. So you need these dedicated stuff so that if one gets affected, the other doesn't. So you will need these kind of expansion because, if you produce something, you need to get to the port fast so that you can export fast.
1: Absolutely.
3: And compete better.
1: Yeah.
3: So these are all things which foreign direct investment is also dependent on.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले 9 और 10 सितंबर को मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक की थीम है मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में होने वाली इस बैठक से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के मुख्य नतीजों की समीक्षा भी की थी। उदयन, ब्रिक्स की इतनी बड़ी मीटिंग हमारे यहां देश में होने जा रही है, कई सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना है, खासतौर पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ट्रेड के हिसाब से देखें, खासतौर पे इंडियन ओशियन की हम जब बात करते हैं तो काफी कुछ नजर आता है कि यहां पर हमें नजर आएगा आगे चल करके। इंडो पैसिफिक की भी यहां पर बात होती है।
3: देखिए, ब्रिक्स में जो है एक समन्वय करने की कोशिश की जा रही है फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच में। एक तो ट्रेड है जो कि हो रहा है और वो होता रहेगा, पर फाइनेंशियल सिस्टम, मान लीजिए एक कंट्री ब्रिक्स में, एक कंट्री दूसरी कंट्री को पेमेंट करती है, आदान प्रदान हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या खुद के करेंसी में, खुद के पेमेंट सिस्टम में इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है, पर क्या हम दूसरे सिस्टम्स हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं? कुछ कंट्रीज अपने हिसाब से कर रही हैं, म्यूचुअली आपने किया, हमारे जैसे यूपीआई इस्तेमाल होता है, क्या हम यूपीआई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं बाकी दूसरे देश हमारे यहाँ इस्तेमाल किया, हमने उनके देश में किया? अगर ऐसा हो जाता है, ब्रिक्स इतना बड़ा, इतनी बड़ी मानवता का इतना बड़ा हिस्सा

0: वो कवर करता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी भी हम जो सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म में डिपेंड करते हैं वो यूरोप और अमेरिकन सेंट्रिक है, तो वहाँ से थोड़ा सा अगर एक कुछ हमें ऑल्टरनेटिव्स विकल्प और मिल जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वायत्तता मतलब ऑटोनोमी
1: जी
0: और इंडिपेंडेंस जो है उसको मेंटेन करके पॉलिसी पोजिशंस और ईजीली हम ले सकते हैं।
1: आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आज 1.4% की बढ़त रही, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिर कर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 1.6% नीचे और लंदन का फुटसी 100 0.9% गिर कर काम कर रहे थे। उदयन जी, अभी अगर हम बात करें चाइना की इन्फ्लेशन की, तो लगभग 3.8% टू 3.5% तक की बात हो रही है आगे बढ़ने की, ये किस तरह के हालात हैं? मतलब 3.5% से 3.8% तक जाने के जो हालात हैं, इनका क्या असर देखने को मिलेगा?
0: देखिए, ये उनका कंज्यूमर के हिसाब से और प्रोड्यूसर के हिसाब से अलग अलग चल रहा है। कंज्यूमर में लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि उनका भी उनके भी डोमेस्टिक डिमांड चैलेंजेस हैं कुछ कुछ इलाकों में, जो उनके भी जो यूथ जनरेट हो रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो वर्ल्ड ओवर ये एक चैलेंज है। कई लोगों का आर्ग्यूमेंट मतलब कॉन्वर्सेशन में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे भारत को ही ये चैलेंज है, ये चैलेंज हर जगह है और सरकारें अपने हिसाब से वो डील कर रही हैं। तो डोमेस्टिक में जो आप अगर उनका रिटेल देखेंगे, मेरा हंच ये है कि वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, ये कुछ और इनपुट कॉस्ट है उसके वजह से हुआ होगा या कुछ और इश्यूज हैं उन जिनके वजह से हुआ होगा। अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखें, वो बहुत दिलचस्प सिचुएशन, दिलचस्प मतलब हमारे लिए अगर हम वहाँ रह रहे होते वो उतना दिलचस्प नहीं होता। वो ये है कि उनकी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं पर उनका डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इंटरनल जो डायनामिक्स हैं वो, उसका जो अगर हेल्थ चेकअप लेंगे वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो उनके क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स एक्सेस कैपेसिटी है, दूसरी जगह में उन्होंने एक्सपोर्ट किया, हर जगह में उन्होंने उनका ट्रेड बैलेंस उनकी तरफ और मूव कर गया, क्योंकि वो यूएस से हटके दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे ब्रिलियंट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, पर आपको जो पिक्चर है वो संतुलित एक बैलेंस्ड वे में देखना पड़ेगा। तो इंटरनल डिमांड का वहाँ पर चैलेंज है। तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइसेस, मेरे को ताजुब नहीं होगा कि अगर इनपुट प्राइसेस जो उनके पास पहुंची हैं, ऑल्दो वो सोर्सिंग बहुत अच्छा करते हैं, मेटल्स वगैरह जो हैं वो सीधे मान लीजिए अफ्रीका इंडोनेशिया जहां से सोर्स है, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेन बना, सप्लाई चेन बना रखे हैं, पर फिर भी इसका इंपैक्ट जरूर हो रहा होगा।
2: All right, let's take a look at the US markets now. Well, Wall Street ended lower yesterday as investors turned cautious amid escalating tensions in West Asia ahead of a key inflation reading later this week that could shape the Federal Reserve's monetary policy decision. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average shed 1.2%, the S&P 500 lost 0.6%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. Well, Fed will be meeting next week. Which way do you think things will go in the US?
0: It's a pretty tricky situation for them because there are inflationary pressures. There's no doubt about it, and it's reasonably. It is. See, Lalima, what also happens is sometimes it is about how you feel, you know. So if somebody's in the US, what happens is because you use your personal vehicle so much, and it's a very large country, and you have to use personal vehicle. So oil prices at the pump really determines your sentiment. There's nothing else you can do about it. If the prices of oil are going up, people are not going to feel good, no matter what you do. So there is a pressure out there. The prices are high. People are not liking it. Now the question is, if the governor raises the rate at any point this year, it is not going to be all that popular with the administration. So what the administration is doing, this bond buyback, which the Treasury Secretary has been doing, is basically to preempt that and make sure that you create a condition where you say that you don't have so many reasons to raise the interest rate. But the problem is when you start intervening in an artificial way, markets do figure out and investors also figure out, which is exactly what's happening.
2: राइट,
1: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% की बढ़त के साथ 1,53,486 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, और चांदी 0.6% बढ़कर 2,35,249 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। उद्यन, इस वक्त निवेशकों को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, निवेश करने की या सब्र करने की या थोड़ा बढ़ाने की?
0: नॉर्मल काम करने के, कुछ स्पेशल नहीं करना। निवेश जब आप करते हैं वो बोरिंग होना चाहिए। एक्सरसाइज की तो डेली एक्सरसाइज में जो करते हैं, हर रोज आप नया एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वही प्राणायाम करेंगे, जो भी आसन करते हैं, जो भी जिम में जाते हैं, तो जो रेगुलरली करते हैं वही कीजिए, और बोरिंग चीजें करेंगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलेंगे।
2: सो समटाइम्स डूइंग नथिंग कैन आल्सो बी अ स्ट्रेटजी।
0: ओह एब्सोल्युटली।
2: ऑलराइट फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बिफोर दैट, यस, थैंक यू वेरी मच उदयन फॉर जॉइनिंग अस एट आकाशवाणी एंड giving us an insight into the markets. All right, the headlines now. Benchmark domestic indices decline around 1%. Sensex plunges over 800 points. Nifty settles below 23,450. Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states. And that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. So, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
5: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
4: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
5: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व और मध्य रेलवे विभाग के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: ललित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हैं। इनमें 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर भी शामिल हैं। इन कॉरिडोरों को चौगना और 4 लाइन बनाने के साथ कई अन्य कॉरिडोर पर भी काम किया जा रहा है।
2: रेलवे के जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है 11,000 किलोमीटर के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर, उनको अगर हम देखें, जैसे आप कल्पना करो, श्रद्धेय अटल जी ने स्वर्ण चतुर्भुज बनाया था हाईवे का, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: ललित जी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय लिए गए हैं, इनमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर करीब 20,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं और इतना धन खर्च किया जाता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव करने के प्रयास किए जा रहे हैं रेलवे के नेटवर्क में, कैसे परिवर्तन हमें आगे चलकर देखने को मिलेंगे?
3: ये आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कैबिनेट के निर्णय के बाद, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक ये बड़ा अहम हिस्सा है। इस बार का जो ये अनाउंसमेंट हुआ है, इसकी खास बात यह है कि इसमें दक्षिण भारत के राज्यों को ऊपर केंद्रित है, क्योंकि इस बीच में वहां पर कई ऑटोमोबाइल हब आ गए हैं, तिरुपति जैसे मंदिर बने हुए हैं, कई कोलार माइंस और कई जगह टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, और पूरा दक्षिण भारतीय क्षेत्र बहुत तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये जो हमारे रेलवे के ट्रैक थे उसमें कंजेशन की समस्या बहुत आ रही थी। इस बार एक अच्छा काम कैबिनेट ने ये किया है कि इसके टारगेट डेट भी अभी से निर्धारित कर दी गई है। अधिकतर शुरुआत की डेट दी जाती थी, टारगेट डेट नहीं दी जाती थी। इस बार कैबिनेट ने एक टारगेट डेट भी दी है 29-30 की, और जो एक मेरा आकलन है करीब 2,121 गांव
1: जी
3: और 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे, और करीब 47 मिलियन टन हम ज्यादा माल का दोहन कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एक रेलवे की खासियत है, रेलवे से जब कोई माल ढोया जाता है तो उसमें रोड के कंपैरिजन में सड़क मार्ग के तुलना में 1/8 हमारा एनर्जी खर्च होती है। तो इससे एक आकलन ये भी है कि करीब 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी, और जो एक पॉल्यूशन होता है उसको एक CO2 में नापा जाता है आजकल का स्केल है, तो 42 करोड़ KG कम हम पर्यावरण में CO2 छोड़ेंगे
1: जी। ललित जी, अभी आपने कंजेशन की बात की थी, तो करीब 1,196 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़ेंगे जिससे रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ेगी, और जाहिर

0: बात है, इसका सीधा फायदा यात्रियों और मालगाड़ियों के संचालन को मिलेगा। और आपने एक बात बोली कि 2029-30 तक की टाइमलाइन निर्धारित की गई है जब ये सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि इससे यात्री अनुभव और माल ढुलाई में किस तरह के परिवर्तन आगे चलकर हमारे सामने होंगे?
1: देखिए निखिल जी, इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पूरा जो 540 किलोमीटर है, इसके पांच हिस्से हैं। एक जैसे है अराकोनम से रेणुगुंटा, ये जगह ऐसी है जहां पर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति लोकेटेड है,
0: जी
1: और वहीं पर हमारे कई सारी इंडस्ट्रीज भी लोकेटेड हैं। जैसे अराकोनम से रेणुगुंटा की जो 77 किलोमीटर लंबी लाइन है, इससे जो यात्री लोग ज्यादा ट्रेनें तिरुपति मंदिर के लिए चाहते हैं, और साउथ, और वहां पर एक ऑटोमोबाइल का भी बहुत बड़ा हब है, श्री सेंटर करके एक जगह है नजदीक में चेन्नई के उत्तर में, तो उन सभी जगहों को यातायात की सुविधा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर ये दूसरा, इन्होंने एक व्हाइट फील्ड टू बंगारपेट फोर्थ लाइन है।
0: जी
1: अभी इस बीच में क्या हो गया, बैंगलोर से चेन्नई के बीच में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इसमें जो बैंगलोर से जो चेन्नई की तरफ ट्रैफिक जाएगा, तमिलनाडु की तरफ ट्रैफिक जाएगा, उसमें ये बहुत बड़ा कैपेसिटी क्रिएशन हुआ है, एक नई क्षमताएं बढ़ी है ज्यादा ट्रेनें ले जाने की। फिर एक होसूर से ओमालूर डबलिंग है, ये
0: जी
1: 147 किलोमीटर का है, ये हमारी बैंगलोर होसूर सलेम एक्सिस, आप समझिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग का हब है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, कंटेनर्स, इंडस्ट्रियल ट्रैफिक और काफी सारी जो हमारे औद्योगिक जगत की इकाइयां हैं यहाँ पर स्थित हैं। उन सबको मुश्किल आ रही थी कि वो ट्रेन से माल भेज नहीं पा रहे थे, और ट्रेन से माल भेजने से माल की लागत बहुत कम हो जाती है, तो
0: जी
1: इस बैंगलोर होसूर सेलम एक्सेस में जितने भी हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको अपनी जो भार वाहन क्षमता में जो उनकी पैसा लगता था, उसमें बहुत कमी महसूस होगी।
0: ललित जी, आपने जैसे यहाँ पर बताया कि माल ढुलाई की आपने बात की है, तो हमने देखा कि इन रूटों पर कोयला, सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकतम ढुलाई की जाती है। तो जो अब नई क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं, इससे उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचने और तैयार उत्पाद आम लोगों तक पहुंचाने में कितनी मदद मिलेगी?
1: इसमें जो अभी आकलन है कि करीब 47 मिलियन टन हम ज्यादा माल भेज पाएंगे। और एक बात और होती है माल वाहन के अलावा, हमारे देश की समस्या है कि वो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रेन में चलती है, क्योंकि एक ही ट्रैक है, तो उसी से हमको मालगाड़ी भी चलानी पड़ती है, उसी से हमें पैसेंजर ट्रेन भी चलानी पड़ती है। तो इसकी वजह से हम लोग, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग होती है, मालगाड़ी 40-50 किलोमीटर पर चलती है और मेल एक्सप्रेस ट्रेन 110 किलोमीटर पर चलती है, दो डिफरेंट गति की ट्रेनें एक ही रूट से चलाई जाती हैं, तो उस हम लोग उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। जब मल्टी ट्रैकिंग हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ ट्रैक हो जाएगा, तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस वाली लाइन से मालगाड़ियां चलेंगी और इस वाली लाइन से मेल एक्सप्रेस कोचिंग ट्रेन चलेंगी, तो उससे हम ज्यादा ज्यादा दोहन कर सकते हैं अपनी आधारभूत क्षमताओं का। और दूसरा ये कि मेंटेनेंस के लिए,
0: जी
1: हमको आज की तारीख में इतना ज्यादा ट्रेन चलती थी कि मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलता, तो उसमें मेंटेनेंस भी हम ट्रैक की अच्छे से कर सकेंगे, जिससे कि हमारी सुरक्षा को भी एक नया आयाम मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, आपने देखा हो कई जगहों में, कई सेक्शंस में, आपने रोड में भी देखा होगा कि ट्रैफिक ऐसा होता है कि सबेरे एक तरफ जाता है, शाम को एक तरफ आता है, तो
0: जी
1: इक्वल नहीं रहता। हमारी मल्टी ट्रैकिंग होती है, तो हम ये कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक है उसमें तीन लाइन खोल दी, जिसमें कम ट्रैफिक है उसमें कम लाइन करी, तो उससे ट्रैफिक की बैलेंसिंग करने में भी हमें बहुत सुविधा मिलती है।
0: ये जो परियोजनाएं अब यहां से शुरू की जा रही हैं, तो देखा ये भी जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थल जो हैं वहां तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका फर्क इन बातों में भी पड़ेगा कि पर्यटन बेहतर होगा, स्थानीय कारोबार को मौके मिलेंगे और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
1: इसमें देखिए कई तरह से फायदे होते हैं। पहले तो पंक्चुअलिटी जो ट्रेन की होती है, अभी क्या अगर मान लो बड़ा सघन ट्रैफिक चल रहा है किसी सेक्शन में, तो उसमें आप चाहे ना चाहे ट्रेनें अपने टाइम से चल नहीं पाती, इसलिए नहीं कि वो चल नहीं सकती ज्यादा स्पीड से, क्योंकि उनको चलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो अब इससे पंक्चुअलिटी में सुधार होगा, ट्रेनें समय पर चलेंगी, और टाइम टेबल में एडिशनल ट्रेन का प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर मान लो जी कुछ गड़बड़ हो भी जाती है कभी ट्रैक में, कभी कुछ विघ्न बाधा आ जाती है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी कोई कैटल ट्रैक के ऊपर आ जाता है, कभी कोई बोल्डर आ जाता है, कई तरह की बाधाएं आती हैं, उसमें ट्रैफिक एकदम थम सा जाता है। अगर आपके पास एडिशनल कैपेसिटी होगी तो वो एक कुशन की तरह काम करती है, और आपको बाधाओं के होने के बावजूद समयबद्ध तरीके से आपकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियां इच्छित स्थान तक पहुंच जाती हैं।
0: ललित जी, अभी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि ट्रेनों की समयबद्धता में अधिकतम सुधार हो, ट्रेन संचालन बेहतर हो, सफाई की जो बात है वो बेहतर हो और यात्रियों को जो अनुभव है उसको और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास किया जाए। तो मौजूदा परियोजनाएं जो रेलवे के लिए शुरू की जा रही है, आपको लगता है कि जो हमारा बढ़ता हुआ रेलवे का ट्रैफिक है उसमें ये काफी मददगार साबित होगा?
1: बिल्कुल अवश्य, चाहे समयबद्धता हो, चाहे संरक्षा हो, चाहे साफ सफाई हो, ट्रेन की साफ सफाई के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आपको एक टाइम देना है जिससे कि आपके पास टर्मिनल्स में ज्यादा समय मेंटेनेंस के लिए साफ

0: सफाई के लिए हो और यात्री के अनुभव में एक बढ़ोतरी हो। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा यात्री को आवश्यकता होती है उसकी ट्रेन समय से चले और समय से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। रस्ते में जहां पर उसको पानी भरना है ट्रेन में पानी भरे, इससे कि उसको रस्ते में पानी की कोई समस्या ना हो। और जो कैटरिंग हॉल्स होते हैं जहां पर यात्रियों को समय पर खाना देना है, अगर जिस जगह पर खाना लोड होता है ट्रेन में उस जगह पर ट्रेन को सही टाइम पर पहुंचना जरूरी होता है। जब एक कैपेसिटी इन्हांसमेंट होता है तो वो सब फायदे हो जाते हैं और इन सभी चीजों की आपूर्ति कर पाते हैं। और जिस एरिया में ये हो रहा है दक्षिण भारत के,
1: जी
0: उसमें करीब के 52 लाख लोग रहते हैं, तो उन 52 लाख और जो 121 गांव हैं उनको तो डायरेक्ट इसका फायदा मिलेगा। उनको न सिर्फ ये फायदे मिलेंगे बल्कि ये जो हम नया कंस्ट्रक्शन होगा, जॉब के अवसर बढ़ेंगे, कई ठेके दिए जाएंगे इसमें, टी के, ट्रैक के, स्लीपर के, सिग्नलिंग के, तो इससे पूरी जो एक इकोनॉमिक गतिविधि होती है जो वहां की, उन लोगों के जीवन स्तर में भी फर्क आएगा क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन के दौरान ही काफी सारे चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि आम जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है।
1: बिल्कुल, अभी अगर दो बातें हम एक साथ लेकर के चलें, पहली ये कि आज रेलवे से करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं, हजारों गांवों के लोग उनसे यात्रा करते हैं, शहरों के लोग यात्रा करते हैं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के जो लोग होते हैं प्रिफर करते हैं कि रेलवे से ही अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। वहीं दूसरी ओर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। अगर दोनों को समन्वय करके हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि बीते कुछ वर्षों में या एक दशक की हम बात करें, किस तरह से बदलाव हम देख पा रहे हैं रेलवे में?
0: रेलवे में सबसे बड़ा बदलाव, मैंने तो काफी पूरी अपनी लाइफ टाइम रेलवे में ही निकाला है,
1: जी
0: तो जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने पिछले एक दशक में देखा, एक तो इस पीरियड में फंड की जो होती है, जो निधि उपलब्धता होती है, अब इंजीनियर्स लोग प्रोजेक्ट्स को तभी बढ़ा पाएंगे जब उसके लिए पैसा हो।
1: बिल्कुल
0: तो इस पूरे पीरियड में पैसे के, जैसे बोलते हैं, नल खोल दिया है, खासकर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसमें हमने ये पाया कि अब कोई भी प्रोजेक्ट रेलवे का जो महत्वपूर्ण होता है वो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं है। दूसरा, ये सेंक्शन, अब जैसे हम लोग हर साल, पहले ऐसा होता था कि जब नया बजट आएगा तब वो नए प्रोजेक्ट सेंक्शन होंगे, तब उसके ऊपर काम होगा। अब इस दशक में हम लोग उस एनुअल इवेंट, जो वार्षिक एक आयोजन होता था बजट का, उसके बाद ही सारी, तब तक सारी गतिविधि हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो खत्म हो गया है। अब
1: जी
0: देखिए, ये सितंबर का महीना है, अभी बजट बहुत दूर है, लेकिन हमको जो भी जमीनी स्तर पे काम करने वाले अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, स्टाफ हैं, उनको अभी से पता है कि ये ट्रेनें बनानी है और उसका जो निश्चित अवधि में खत्म करना है वो भी इसमें दिया गया है। तो अब जो इतनी क्लैरिटी आ गई है, आपको फंड की उपलब्धता है, आपके जो नीतिगत कई सारे आदेश जारी किए गए जिससे कि जो फील्ड का जो ऑफिसर्स हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनकी डीआरएम्स की, जीएम्स की पावर बहुत बढ़ा दी गई है। जैसे कई डिसीजन जिसके के लिए पहले हर बार रेलवे बोर्ड जाना पड़ता था, दिल्ली में रेल मंत्रालय जाना पड़ता था, एक बहुत बड़ा तबका रेलवे का महकमा दिल्ली और अपने क्षेत्र के बीच में यात्राओं, फाइलों को घुमाने में लगा रहता था, अब वो सब खत्म हो गया है।
1: जी
0: अब आपको जिन निर्णयों के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था वो आप चेन्नई में ले सकते हैं, गुवाहाटी में ले सकते हैं, अहमदाबाद में ले सकते हैं। दिल्ली की तरफ से बस एक ही दबाव रहता है, जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं उनको जल्दी खत्म किया जाए।
1: जी जिस तरह से आपने बताया कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके अलावा सरकार इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रही है कि यात्रियों को नई ट्रेनों में यात्रा करने का मौका मिले, नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, रैपिड रेल की हम बात करते हैं, या फिर इससे भी कहीं आगे जाने की भी बातें हो रही हैं। जहां एक और पहले इंजन बनाना और रेलवे कोच बनाना बहुत बड़ा काम माना जाता है, आज वो काम आसानी से किया जा रहा है, वहीं एक चीज ये भी है कि सरकार का पूरा फोकस इस बात पर भी है कि माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाया जाए। तो मैं आपसे ललित जी ये पूछना चाहूंगा कि रेलवे के फ्रेट बिजनेस का क्या महत्व है, खासतौर पे इकोनॉमी के लिए, और वस्तुओं की ढुलाई से जो पैसा आता है रेलवे उसको इस्तेमाल करता है उन सारी चीजों को ठीक करने में।
0: आपने बिल्कुल सही बोला, हमें जो पैसा मिलता है वो माल की ढुलाई से ही मिलता है और उसके लिए सबसे जरूरी है रोलिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं, वैगन,
1: जी
0: इंजिन्स और कोचेस, ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब आपको बताता हूं, आज से कुछ साल पहले तक, एक दशक पहले तक, पूरे देश में 400-500 इंजिन्स का प्रतिवर्ष निर्माण होता था। आज हम लोग करीब करीब 1,500 इंजिन हर साल बना रहे हैं और ये
1: जी
0: जो इंजन बना रहे हैं इनकी जो क्षमता है, इनकी हॉर्स पावर जो है पुराने जमाने के इंजनों से बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे देश की यह रही है, जिसका कि अभी जो पश्चिम एशिया में तेल का संकट आया उसमें का पता चला है, कि हमारे देश में पूरा संपूर्ण 70,000 के लगभग जो हमारे रूट किलोमीटर है, पूरा ब्रॉडगेज का जो नेटवर्क है वो पहाड़ी, जो हिल स्टेशन की ट्रेन छोड़ दीजिए उनको छोड़ के, जहां से माल यातायात वाहन होता है वो पूरा इलेक्ट्रिफाइड है।
1: जी
0: तो हमें अपना माल एक जगह से, और जो बिजली बनती है हमारे देश में तो कोयला जला के बनती है, कोयले का उत्पादन हमारे देश में ही होता है। तो आज रेलवे का ट्रांसपोर्ट वेस्ट वेस्ट एशिया या विश्व की किसी भी जगह के तेल के आपूर्ति पर निर्भर नहीं है, और तेल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो, रेलवे अपनी उसी गति से चलती रहेगी, क्योंकि हम लोग ट्रेन चलाते हैं बिजली से, तो ये एक बहुत बड़ा वाया। दूसरा, ट्रेनों की लंबाई, हमने अब जो इंजन अधिक गति से ट्रेन चलाने के लिए हमें पावरफुल इंजन की जरूरत होती है। अभी जो आपके मधेपुरा में हमारे WAG-12 इंजन बन रहे हैं, उसमें एक इंजन की पावर 12,000 हॉर्स पावर है, जो अभी सीमेंस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गुजरात के दाहोद में, उसका निर्माण होगा, वो तो उससे ही पावरफुल है। उसमें उतनी जगह में ट्विन इंजन अगर करें तो उसका 18,000 हॉर्स पावर निकलेगा, क्योंकि उसमें मधेपुरा का ट्विन इंजन है, यहाँ का सिंगल इंजन है, तो यहाँ पे भी दो इंजन लगा दो, यहाँ का एक एक इंजन 9,000 हॉर्स पावर का है, जो कि समूचे विश्व में उतनी कैपेसिटी का हॉर्स पावर का इंजन है ही नहीं।
1: जी ललित, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व और मध्य रेलवे विभाग के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। सुर्खियों में

शाम का भी अपना एक अलग जादू होता है। भाग दौड़ धीरे धीरे थमने लगती है, सूरज अपनी लाली लिए कहीं दूर निकल जाता है और चांद अभी बादलों की ओट में ही होता है। ऐसे में दिल चाहता है अपनापन और दिमाग चाहता है बेफिक्री, और जब दिल और दिमाग के बीच कश्मकश हो तो सुकून पाने के लिए आप ट्यून इन करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मिलता है संगीत और शांति का संतुलन। जी हाँ, सांझ ढले, और सांझ ढले में आज साथ हूं मैं विभा। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें एक मुसाफिर की बेफिक्री भी है और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने का जुनून भी। साल 1951 की फिल्म आवारा से मुकेश साहब की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, और गीत लीजिए सुनिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभाग के साथ, जिसमें हम लेकर आते हैं वो गीत जो हमेशा दिल में यूं ही अपनी जगह बना कर रहते हैं। वक्त बदल जाता है, फैशन बदल जाता है, पर ये गीत अपनी जगह नहीं बदलते। पता है क्यों? क्योंकि इन हल्के फुल्के गीतों से हम सीखते हैं जीवन जीने का फलसफा। और ऐसा ही एक गीत है फिल्म बाजी में, जिसके शब्द उम्मीद और हौसले की रोशनी लिए हुए हैं कि अगर इरादों में दम हो तो बिगड़ी हुई बाजी भी बदली जा सकती है। आइए सुनते हैं गीत आदत की आवाज़ में।

सांझ ढले में आज बस इतना ही। 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 8:10 पर लेकर आऊंगी मधुरिमा। और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम MCD ने भी राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकना है। संवाददाताओं से बातचीत में MCD साउथ जोन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि इसके लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिल्डिंग का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति का आकलन करें।
1: मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिए हैं सभी बिल्डिंगों की, सभी मालिकों से भी निवेदन किया है कि आप भी सब बताएं और सारे अधिकारी जा के इसको देखें कि कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी नहीं है, और जो अगर मरम्मत से ठीक हो सकती है तो उसे मरम्मत करवाएंगे, मरम्मत से ठीक नहीं होगी तो उसे डिमोलिशन करवाएंगे।
0: राजधानी में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों के विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, इनोवेटर्स और उद्यमियों को एक साथ लाया गया। इसके अलावा सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच शुक्रवार से आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास जारी है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7 बजे से शुरू हो गई है और रात 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया गया है और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा, सरदार पटेल मार्ग और मथुरा रोड सहित कई प्रमुख मार्ग परिवर्तित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवा का उपयोग करने और वाहन चालकों से निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करने तथा मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यात्री यातायात पुलिस की आधिकारिक पोर्टल पर मार्गों की जानकारी भी देख सकते हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक

0: समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: वहीं दिल्ली नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा राजधानी में आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर अपने हरित क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, सुधार और रखरखाव के लिए एक व्यापक योजना लागू करते हुए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में NDMC द्वारा हरित सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत क्षेत्र में व्यापक बागवानी और लैंडस्केपिंग कार्य किए जा रहे हैं। NDMC द्वारा 15 प्रमुख स्थानों पर पुष्प बोर्ड स्थापित किए जाएंगे, जबकि 9 प्रमुख स्थानों पर पुष्प फव्वारे लगाए जाएंगे। साथ ही NDMC की नर्सरी में तैयार किए गए 15,000 से अधिक गमलेदार पौधों को प्रमुख सड़कों, चौराहों, गोल चक्करों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। NDMC ने चाणक्यपुरी स्थित ब्रिक्स फ्रेंडशिप रोज गार्डन में बागवानी और सौंदर्यीकरण कार्य को भी तेज कर दिया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप कुमार के साथ आज ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर राजधानी के प्रमुख स्थानों का विस्तृत संयुक्त निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन स्थल और भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों से की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला, उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष N. सरवाना कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने DDA को निर्देश दिया कि वे PG के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने का काम तेजी से करें, साथ ही एक ठोस योजना बनाने और हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने के लिए नए मास्टर प्लान के प्रावधानों पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बातचीत करें। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास मिले। उपराज्यपाल आज एक निजी मीडिया समूह के वरिष्ठ नागरिक क्लब द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ और सेवा कैंप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम देश के प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण के 45वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि एक प्रगतिशील समाज अपने युवाओं की ऊर्जा को बुजुर्गों के अनुभव और समझदारी के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन ऐप और नियमित संपर्क जैसी पहल उनकी सुरक्षा और भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत

0: मजबूत करती है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज होलंबी कला वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण कार्यक्रम दिल्ली को कूड़े से आजादी मुहिम के अंतर्गत चलाया गया। इस दौरान श्री यादव ने मेट्रो विहार होलंबी कला में अतिक्रमण हटाने और नालियों की सफाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री यादव ने एक पेड़ माह के नाम पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और उपस्थित नागरिकों तथा कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसरों, छात्र प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान छात्रों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना शीर्षक से अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें क्षेत्र की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए विचारपूर्ण सुझाव और व्यवहारिक समाधान साझा किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि उन्होंने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, बायोमास जलाने, नदी पुनर्जीवन, बेहतर तकनीक और नवाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिरसा ने कहा कि युवाओं को इस मिशन में सच्चे साझेदारी के रूप में आगे बढ़ते देखना अद्भुत रहा। पर्यावरण मंत्री ने छात्रों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते रहने, नए क्षितिजों की खोज करने और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के लिए पीजी सुविधाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मजबूत नियामक व्यवस्था पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए दाखिला वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉ. महेश वर्मा ने राजधानी में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को और व्यापक बनाना है। स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन नए दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक शोध, नवाचार, छात्र कल्याण और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये अत्यंत उत्साहजनक है कि आज की युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नजदीक से जानने और समझने में विशेष रुचि ले रही है। उन्होंने कहा कि जेंजी भारत की जागरूक, जिज्ञासु और ऊर्जावान पीढ़ी है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग PWD के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कैडर CPWD से अलग कर स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव 30 वर्षों से लंबित रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय राजधानी को तेजी से विकसित, सुरक्षित और विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के एस्केप ड्रेन 1, बिहारीपुर ड्रेन, बंड ड्रेन और गोकलपुर ड्रेन सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव से निपटने के लिए ड्रेन की सफाई तथा पंपिंग व्यवस्था मजबूत करने और इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार

0: फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
2: रेलवे की मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर पर शुरू में सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर का खंड खोला जाएगा।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के निर्णय से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात की। इस दौरान भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने कहा कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया से भी मुलाकात की। दोनों ने विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया है। ईरान की कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की गई। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 multi-tracking projects of the Railways Ministry at a total estimated cost of more than 20,700 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Mr. Vaishnav said, the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. The minister further informed that the government has decided to undertake 4-laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
4: The 7 high-density railway corridors, along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future, are being upgraded to 4-line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its 2 diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled along with the Delhi to Guwahati corridor.
3: In reply to a question on Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the minister informed that the bullet train service will commence next year. He said the construction work on this corridor is progressing rapidly and initially the 100-kilometer section from Surat to Vapi in Gujarat will be open. Prime Minister Narendra Modi has said that today's cabinet decision ensures faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, he said it will also encourage tourism, especially heritage and wildlife-related tourism and lower logistics costs. Defence Minister Rajnath Singh called on President of Sri Lanka Anura Kumara Sirisenayake in Colombo today and discussed the entire spectrum of the multifaceted partnership between the two countries. During the meeting, the two sides reaffirmed their commitment to work together for development of both nations while working jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The two sides also exchanged Memorandum of Understandings, MOU, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. During the meeting, President Sirisenayake reiterated that Sri Lanka would never allow its territory to be used for any activities inimical to India's security interests. Mr. Singh also met Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasurya and exchanged views on issues related to development cooperation, education and the close cultural and civilizational ties between India and Sri Lanka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today met Thailand's Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Suphani Suthumpun in New Delhi. The Commerce and Industry Ministry said that the two ministers discussed ways to further strengthen the India and Thailand economic partnership, with a focus on enhancing bilateral trade and investment, expanding business opportunities, and deepening business-to-business linkages between the two countries. Ahead of the BRICS Leaders Summit to be held in New Delhi later this week, the final BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors meeting

मधुर गीत शब्दों और सुरों के ऐसे खूबसूरत संगम से बनते हैं जिनमें जीवन के अनगिनत रंग समाए होते हैं। कुछ गीत हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं, कुछ पुरानी यादों में ले जाते हैं और कुछ सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। और जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत अपनी कहानी बयां करता है। यही मिठास, यादों की खुशबू और दिल को छूते नगमे हम समेट कर लाते हैं मधुरिमा में। स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ है आपके विभाग, नमस्कार। मधुरिमा में आज हम लेकर आए हैं राग भीम बलासी की मधुर छाया। तो पहले सुनते हैं एक गीत, बाकी की बातें गीत के उस पार।

राग भीम पलासी दिन के उत्तरार्ध में गाया बजाया जाने वाला राग है। इसकी धुनों में गहरा ठहराव, कोमलता और भावनात्मक मिठास महसूस होती है।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है। मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभाग के साथ, और आज हम आपके लिए वो नगमे लेकर आए हैं, वो गीत लेकर आए हैं जिनमें राग भीम पलासी की छाया है। कभी कभी आंखें वो कह देती हैं जो होठ नहीं कह पाते। किसी की याद में भीगी हुई आंखें, मन में उमड़ते भाव और यादों के आसमान पर छाए बादल। इसी भाव को अपने सुरों में समेटे फिल्म मेरा साया का ये खूबसूरत नगमा सुनिए लता दी की आवाज में।

योगों में से एक है जो मन को तनाव मुक्त करता है, इसलिए व्यस्तता कितनी भी हो गीत संगीत सुनते रहिए। फिलहाल विभा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे स्पोर्ट्स कैन।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेके खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तो कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से और बेन शेल्टन, अरीना सबालेंका और जेसिका पेगुला अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए तीरंदाजी की दुनिया के साथ, जहां अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व्ड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
1: What can Sheetal Devi do for India? An X, the inner ring of the 10. Zaida Saidan of Kazakhstan, can she match that? No, it's only a 9, and Sheetal Devi has done it for India. And the Indians will celebrate this one. First big tournament that they've had in India. Sheetal Devi has delivered the gold.
0: और भावना ने रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड इंडिविजुअल और स्वाति चौधरी ने WN व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुषों में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत में कांस्य पदक अपने नाम किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विश्व के नंबर 1 तीरंदाज शीतल देवी ने बेहद रोमांचक शूट ऑफ में कजाकिस्तान की एजादा सेदान को हराकर पैरा कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले शीतल ने तोमन कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था। उधर पैरा रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में दोहरे पैरालंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह और भावना की जोड़ी ने चीन की लियांग क्यूरोंग और शिया ली की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भावना ने इसके बाद महिला रिकवर व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की ही राजश्री राठौड़ को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत को 2 अन्य कांस्य पदक पैरा कंपाउंड वर्ग में मिले, जहां सरिता ने चीन की वांग हुईटिंग को हराया, जबकि तोमन कुमार ने इराक के अब्बास कादिर को पराजित कर प्रतियोगिता में अपना दूसरा पदक पक्का किया। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तो अंतिम दिन के शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट का भी एक शानदार समापन किया है। भारत 15 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, जहां पे चेक गणराज्य 5 स्वर्ण पदक जीतते हुए पहले स्थान पे था। हालांकि भारत के पदकों की संख्या अधिक थी, लेकिन क्योंकि चेक गणराज्य के पास 5 पदक स्वर्ण पदक थे, इसलिए वे पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक अपने नाम किए। तो कह सकते हैं कि भारतीय पैरा तीरंदाजों का एक शानदार प्रदर्शन स्वदेशी धरती पर देखने को मिला। और अब तीरंदाजी के बाद बात हॉकी की। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम चीन के मोकी में जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जबकि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने अपने आखिरी एलीट पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारतीय महिला टीम का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। आज खेले गए मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से करारी शिकस्त दी और सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ने इसी शानदार जीत के साथ 5 बार की चैंपियन भारत 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ इस पूल ए में 10 अंक हासिल करते हुए शीर्ष स्थान पर रहा। आज भारत के लिए कप्तान अनमोल इक्का ने मैच के 25वें, 29वें, 32वें, 33वें, 45वें और 51वें मिनट में 6 गोल दागे। अनमोल ने यह सभी गोल पेनल्टी

0: कॉर्नर से की है, जो बताते हैं कि कितनी शानदार पकड़ इस उभरते हुए खिलाड़ी की पेनल्टी कॉर्नर्स पर है। जबकि आर्यन जेम्स ने 17वें, 52वें और 53वें मिनट में भारत के लिए 3 गोल किए। हरपाल ने मैच के 48वें मिनट में और 53वें मिनट में गोल दागे, जबकि प्रभदीप सिंह, गुरुसेवक सिंह और अर्जुन संतोष हरगुड़े ने और अजीत यादव ने भारत के लिए 1-1 गोल किया। अगर महिला टीम की बात कर ली जाए तो अपने आखिरी एलीट मैच में भारत ने चीन के साथ आज 0-0 यानी गोल रहित ड्रॉ खेला। दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन एक दूसरे के मजबूत डिफेंस के आगे वो तमाम गोल करने के प्रयास, वो तमाम पेनल्टी कॉर्नर लगभग लाचार नजर आए और कोई भी टीम गोल स्कोर नहीं कर सकी। इसके साथ ही भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने पूल स्टेज के 4 मुकाबलों में 3 में जीत दर्ज की और आज का अंतिम मुकाबला ड्रॉ रहा। भारत 10 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर अपने ग्रुप में रहा। और अब क्रिकेट के मैदान का रुख। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में कल भारतीय महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप ए के अपने 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजर बांग्लादेश पर। जीत दर्ज कर 13 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह बनाने पर होगी।
1: अपने 3 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी अपना वही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। भारतीय महिला टीम की निगाहें रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब जीतने पर हैं। भारत ने अब तक 4 बार एक दिवसीय प्रारूप और 3 बार T20 प्रारूप में ये खिताब जीता है। भले ही भारत ने अपने 3 मुकाबले बड़े अंतर से जीते हों, लेकिन मध्य क्रम में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा लगातार बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे में भारत की नज़र एक बार फिर उन सभी गलतियों से पार पाकर एक मजबूत टीम यूनिट के रूप में मैदान पर उतरने पर होगी। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो विमेन इन ब्लू का प्रदर्शन शानदार रहा है। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने पिछले 8 T20 मुकाबलों में 21 विकेट लिए हैं। श्री चरणी के अलावा दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ ने लगातार अपनी गेंदबाजी से करिश्मा दिखाया है। अगर बांग्लादेश पर भारतीय टीम के आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने अब तक 24 T20 मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 21 और बांग्लादेश ने 3 मुकाबले जीते हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और महिला एशिया कप पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, भारतीय टीम एक शानदार पूल अभियान के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक का सफर इस मैच के लिए भारत की क्या इमेज सेट करता हुआ नजर आ रहा है?
2: भारत का जो प्रदर्शन रहा है शक्ति, इस एशिया कप में बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। अगर पहले मुकाबले में थाईलैंड की बात करें, हांगकांग की बात करें दूसरे मुकाबले में, और सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में, भारत ने कमाल ही कर दिया। भारत के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है डिपार्टमेंट वाइज। अगर बल्लेबाजी की हम बात करें तो कुछ गलतियां हमको, कुछ खामियां नजर आती हैं, जहां पर जो टॉप ऑर्डर है भारत का वो शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना पर ही टिका हुआ है। कह सकते हैं कि पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है हमारे सिर्फ ओपनिंग पेयर पर टिका हुआ है। प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, भारती फूलमाली बहुत ही मामूली से स्कोर किए हैं इन लोगों ने, जिससे बल्लेबाजी की गहराई में काफ़ी कुछ जो है गलतियां नज़र आती हैं। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय टीम के गेंदबाजों ने। अभी तक किसी भी टीम को 100 का आंकड़ा नहीं छूने दिया है। थाईलैंड की बात करें तो उनको 65 पर, हांगकांग की बात करें तो 56 पर, और पाकिस्तान जो कि एक मजबूत प्रतिद्वंदी मानी जा रही थी भारत की, उसको 55 पर ऑल आउट करके एक स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय गेंदबाजी के आगे कितनी भी मजबूत टीम हो उसको अपने घुटने टेकने ही होंगे। वहीं स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे मुकाबले में उन्होंने 124 रन बनाकर इतिहास रच दिया था। मंधाना कल एक और इतिहास रचने की कगार पर है। अगर वह 69 रन कल के मुकाबले में बनाती हैं तो वो वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाएंगी। इससे पहले ये रिकॉर्ड सुजी बेट्स के नाम है, जिन्होंने 186 मुकाबलों में 28 के औसत से 7558 रन बनाए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरे स्थान पर भी भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं, जिन्होंने 174 मुकाबलों में 4690 रन बनाए हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्मृति, स्पेशल स्मृति जो है वो एक और कीर्तिमान की कगार पर है, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विमेंस के वो सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो पिछले मैच में वो जब शतक निकला था तो वो तमाम रिकॉर्ड वहीं पर ध्वस्त कर दिए गए थे, और आपने जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का भी जिक्र किया जो 4000 से ऊपर रन बना चुकी हैं, 4700 से ऊपर, तो स्मृति की पूरी नज़र होगी कि किस तरीके से इस 69 रन के गैप को पाटा जाए और रिकॉर्ड जिसके लिए स्मृति जानी जाती हैं उसको पूरा किया जाए। कल भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी, जो कह सकते हैं कि हालांकि वो उम्मीद थी कि पाकिस्तान से भारत को कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन क्या ये अटकलें लगाई जाएं या अनुमान लगाया जाए कि बांग्लादेश भारत को वो टक्कर देगा, तो इसके लिए हम सभी को देखना होगा ये मुकाबला कि किस तरह ये दोनों टीमें खेलती हैं और कौन सी टीम 13 तारीख को फाइनल मुकाबले के लिए अपना टिकट कटा पाती है। और अब महिला एशिया कप के बाद बात दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले की, जो खेला जा रहा है चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। आज चौथे दिन ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ मैच में अपनी पकड़ कुछ और मजबूत कर ली है। पहली पारी में 708 रन बना करके साउथ जोन को 336 रन पे समेटने के बाद ईस्ट जोन ने बुधवार को खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 212 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ईस्ट जोन की कुल बढ़त 584 रन की हो चुकी है और ईशान किशन की कप्तानी वाली ये टीम अब सोच रही होगी कि एक और किताब अंतिम दिन अपने हिस्से में किया जाए। ईस्ट जोन ने 2011-12 और 12-13 में लगातार खिताब जीते थे और उसके बाद अब मौका आया है जहां टीम जीत की दहलीज पर है, वो जीत जो आपको दलीप ट्रॉफी ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इस तक पहुंचाएगी। अब तक ये जिस तरह का मुकाबला गुजरा है विशेष, पूरा का पूरा कह सकते हैं कि इतना डोमिनेटिंग क्रिकेट ईस्ट जोन की तरफ से, बाकी तो सब एक तरफ हैं 10 खिलाड़ी, अभी तो लगता है कि साउथ जोन की टीम अकेले ईशान किशन के स्कोर से पार नहीं पा पाई है।
2: बिल्कुल शक्ति, ये मुकाबला साउथ जोन वर्सेस ईस्ट जोन से ज़्यादा ईशान किशन वर्सेस साउथ जोन लग रहा है, क्योंकि ईशान किशन जब पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो किसी को नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे। उन्होंने 334 गेंदों पर 270 रन की पारी खेली और जब वे अब दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया और 80 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को एक मजबूत बढ़त दिलाई है। 13 साल बाद ये फाइनल खेल रही है ईस्ट जोन, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको फाइनल खेलने की आदत नहीं है। ये मुकाबला जो है ईस्ट जोन के झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 584 रन की विशाल काय लीड जो है वो आखिरी दिन पर चेज होना मुश्किल है और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि पहले इनिंग के स्कोर के हिसाब से विजेता घोषित किया जाएगा, तो ईस्ट जोन के लिए उम्मीदें काफ़ी हद तक जो है बरकरार हैं इस मुकाबले में।
0: जी बिल्कुल, तो उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन आज उस फैसले ने कि हम फॉलो ऑन नहीं देंगे और दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, क्या चौंकाने वाला फैक्टर हो सकता है या फिर क्या सोच रही होगी। हालांकि तिलक वर्मा ने फाइट की, 99 रन बनाए, शतक से चूक गए, दुर्भाग्यवश रहे, लेकिन ईशान किशन बतौर कप्तान क्या माइंड पे रहा होगा और क्या, जैसा कि आपने कहा कि अंतिम दिन आप अगर ड्रॉ भी कराते हैं तो मौका आपके पास होगा, वो सोच थी।
2: बिल्कुल शक्ति, और ईशान किशन बहुत ही अपने डिसीजन को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। तिलक वर्मा जिन्होंने 99 रन बनाए लेकिन टीम को 336 रन पर ही जो है सिमटना पड़ा, लेकिन अब जो ईशान किशन ने डिसीजन लिया था कि फॉलो ऑन नहीं देंगे, उसके पीछे सिर्फ एक ही जो मंशा उनकी नज़र आ रही थी कि मुकाबले को ड्रॉ की तरफ ढकेला जाए ताकि ये जो खिताब है बिल्कुल दूर ना जा सके ईस्ट जोन से।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि दोनों जो पहलू हैं सिक्के के, हेड्स और टेल, दोनों ही ईस्ट जोन की तरफ आते हुए नजर आते हुए, मुकाबला ड्रॉ होता है तब भी पहली पारी के आधार पर टीम जीतेगी और अगर जीत दर्ज करती है तो स्वाभाविक है कि एक शानदार और ऐतिहासिक जीत इस टीम के रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी। अब अंत में बात की जाए यूएस ओपन अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जहां बेन शेल्टन ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसके साथ साथ महिला वर्ग में अरीना सबालेंका और जेसिका पेगुला भी अंतिम चार में पहुंच गई हैं। विशेष टेनिस के कोर्ट से क्या खास अपडेट है आपके पास?
2: शक्ति, शेल्टन ने ये जो जीत अल्कराज पे जीत दर्ज करी है वो बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 18 मुकाबलों की विनिंग स्ट्रीक थी अल्कराज के पास ग्रैंड स्लैम में, वो उसको तोड़ा है और इससे पहले 17 मुकाबले शेल्टन जो है वो टॉप 3 के जो खिलाड़ी थे उनसे हार चुके थे, अल्कराज से भी 3 मुकाबले हार चुके थे, तो ये जीत उनके लिए खुद में एक बहुत बड़ी जीत है और एक बार वो फिर से अपने तीसरे सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आएंगे। अल्कराज जो अपना गेम बहुत देर तक लेके जाते हैं, आखिरी तक मुकाबले को खींचते हैं, ये उन पर ही भारी पड़ता आज नजर आया और शेल्टन ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को अंतिम सेट में जीत लिया।
0: जी बिल्कुल, हम श्रोताओं को बता दें कि 4 घंटे 28 मिनट तक चला ये मुकाबला, अमरीकी ओपन के इतिहास का सबसे लंबा खेला गया मैच है और अब शेल्टन का मुकाबला अमेरिका के ही फ्रांसिस टियाफो से होगा। यानी एक चीज इस तस्वीर में साफ है कि फाइनल में कम से कम एक अमरीकी खिलाड़ी जरूर कोर्ट पर उतरेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने

0: का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
2: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the group

0: marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
4: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
3: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
3: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
3: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
10: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
3: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
11: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
3: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण

0: संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
3: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल प्रयुक्त पदार्थ हैं जिनमें कि प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
1: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
4: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी, मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड

0: में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स. बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए. तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें. फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने. अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए. बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है. अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए. तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है. अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है. और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए. उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है. बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो. ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउसहोल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है. माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है.
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है. तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उनसे भी बचाव मिलेगा. तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए, जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा.
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम. तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए. दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम, माँ का पहला दूध जो बच्चों

0: को देते हैं, वो उसको नहीं पिलाने देती हैं, वो बच्चा ले जाती हैं, वो चाय पिलाएंगी, गुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है शहद पिलाना है, क्योंकि रस्में पूरे करना ज्यादा जरूरी है। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा। और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है, तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी। अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है। एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ। तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है इसको हटाना बहुत जरूरी है, और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन्स बनेंगे। और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की IQ बहुत बढ़िया हो, NEET JEE निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके IQ पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी। डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है। सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है। और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है। और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं, मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए, और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड

0: नया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो एमसीपी कार्ड ना आप पूरा पढ़िए। हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग आल्सो। जो RUTF की हम जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ, नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे, तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक ओपीडी के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था। तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे, और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे। तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया। RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को। आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है। और RUTF बहुत गाढ़ा होता है, तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले, और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनबाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक ओपीडी होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए। जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का। बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे, या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में, जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स विलेट्स ज्यादा खाते हैं, तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है। और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से।
1: जी बिल्कुल, पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है।
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है। जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, और जैसा आपने कहा कि अब हम 9वां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं। इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है। पर स्थायी रूप से डाइट और फूड की हैबिट्स को चेंज करने के लिए, जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, सभी की रोल है। और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है। और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं। तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत औरत है जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट

0: कि हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.5 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है उसमें, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं, उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके, जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को ये जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटेजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी।
1: जी
2: तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसीज होती हैं, लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है स्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले
1: जी
2: हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना।
1: जी
2: जब मैं एमडी कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए। तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे ही, एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा, एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है। बीमार बच्चा मैल न्यूरिस्ट हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिस्ट हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिस्ट हुआ। ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है, एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें। अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें, बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं।
1: जी
2: तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है।
1: जी डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व

0: विद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
1: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है। और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है, और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5-10% के बीच में है। तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सकें, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा। पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे। इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू।
0: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
2: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है, और जो भी आपके मन में शंका होती है आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें, एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओं को लगता है कि हाँ उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स है, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए, अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी, उसके बाद तो सब कुछ पजल की तरह फिट हो जाएगा।
0: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है, और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू आनंद जी,
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए

0: से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसलों से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेल परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इनसे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारत रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासूरिया से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फॉरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि भारत अपने राहत और बचाव अभियान जारी रखे हुए है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार हैं और इससे बाब अल मंदीब जल डमरू मद में आवाजाही प्रभावित होती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय ये सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। भारत इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल होगा। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक समेत कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra

0: देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कोलंबो ने भरोसा दिलाया कि वह कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल नई दिल्ली के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हुती विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। अमरीका ईरान संघर्ष में तीव्र तनाव, दोनों पक्षों ने सैन्य ठिकानों और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की जानकारी दी। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 4 स्वर्ण पदक सहित 15 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने दोहराया कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। उन्होंने चक्रवात दित्या के दौरान सागर बंधु अभियान के तहत भारत की ओर से दी गई राहत सहायता और व्यापक पुनर्वास पैकेज के लिए भी आभार व्यक्त किया। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल सार्थक बताया।
1: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल सरकार के अनुसार चितवन से 363, नवलपरासी पूर्व से 226, नवलपरासी पश्चिम से 222 और नुआकोट से 197 शव बरामद किए गए हैं। रसुआ से 174, गोरखा से 75, धादिंग से 70 और तनहू से 38 शव मिले हैं। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। यह बाढ़ 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने से आई थी। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस मदद में एनडीआरएफ का सामान, बचाव कार्य का उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। उनके पास कन्फर्म टिकट, होटल बुकिंग और स्पष्ट यात्रा योजना भी होनी चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 2 दिवसीय लंदन यात्रा के दौरान 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड प्रदान किया जाएगा। कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन सम्मान बुधवार को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यूके की एशियाई व्यापार परिषद और कैनवस फॉर केयर द्वारा दिया जाएगा। यह सम्मान उनके जन केंद्रित शासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, शासन आपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

0: के लिए दिया जा रहा है। श्री शिंदे कल गुरुवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में मुख्य अतिथि के रूप में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2026 ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग में शामिल होंगे और नेतृत्व सम्मान ग्रहण करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने पूर्वी यरूशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। यह कदम अमेरिका द्वारा इसराइल की बस्तियों से आने वाले सामान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के जवाब में उठाया गया है। विदेश मंत्री गिदोन सार ने इन उपायों की घोषणा की है, जिसमें कई ब्रिटिश सांसदों के प्रवेश पर रोक भी शामिल है। यरूशलम के शेख जर्राह इलाके में स्थित यह ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास मुख्य रूप से गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलम में फिलिस्तीनियों से जुड़े मामलों को देखता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दो और लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया है। इससे बलूच लोगों के गायब होने और प्रभावी परिवारों को जानकारी न मिलने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार अली बलूच को कथित तौर पर 23 अगस्त को सुबह करीब 3 बजे मस्तुंग में पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में लिया था। उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक अलग मामले में शकील बलूच के परिवार ने बताया कि उन्हें 16 अप्रैल की आधी रात के आसपास क्वेटा के किली गोहाराबाद स्थित उनके घर से ले जाया गया था। परिवार का आरोप है कि उनके गायब होने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकरोधी विभाग CTD के लोग शामिल थे। दोनों में से किसी भी परिवार को इन दोनों लोगों के ठिकाने या मौजूदा हालात के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके लगातार गायब रहने से प्रांत भर में कथित तौर पर लोगों को जबरदस्ती गायब करने के तरीके को लेकर रिश्तेदारों और स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंताएं और बढ़ गई हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अन्य अज्ञात शवों की खबरों पर भी चिंता जताई है और बलूचिस्तान में लोगों को जबरदस्ती गायब करने, प्रताड़ित करने और गैर कानूनी हत्याओं की घटनाओं को लेकर चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: आज उत्तरी पश्चिमी सीरिया में एक हथियार गोदाम में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हो गए। इस गोदाम में 2011 से 2024 तक देश में चले विद्रोह और गृह युद्ध के दौरान बचे हुए हथियार और गोला बारूद रखे थे। विस्फोट का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक दशक से अधिक समय से चल रहे युद्ध से जूझ रहे सीरिया में इस तरह की घटनाएं आम हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब चलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। अमरीका ईरान संघर्ष में तीव्र तनाव, दोनों पक्षों ने सैन्य ठिकानों और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की जानकारी दी। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 4 स्वर्ण पदक सहित 15 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस।

प्यारी सी इस डगर में आज की आपकी हम सफर है अर्पना। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर श्रृंखार पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसी कहानियां होती है ना, जब मन करता है कि बस अपने किसी खास के साथ बांट दी जाए। कोई ऐसा दोस्त हो जिसे बताया जाए कि हमारी प्रेम की कहानी शुरू हो गई है। बात समझे आप, नहीं समझे तो चलिए फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ समझ जाएंगे। आवाज है सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश की, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हो गया है 10:31 और 40 सेकंड। हर श्रृंखार सुन रहे हैं आप।

कौन है वो, कैसी है वो तेरे सपनों की रानी। सपनों में जब कोई आता है ना तो बताते तो हम उसी को हैं जो हमारा खास सबसे पक्का दोस्त होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है ना कि ख्वाबों में ना आया करो, क्योंकि आँख तो सुबह खुली जाएगी और रोज जब आँख खुलती है तो दिल टूट सा जाता है।

लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और आपने ट्यून इन किया हुआ है

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together.

10:47 और 30 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है। ये हर श्रृंगार में आज अर्पना आपके साथ है। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये मोहब्बत बहुत लंबी चलेगी, लेकिन कभी ये भी होता है कि पल दो पल की बात लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, आज है और कल नहीं। मोहब्बत का कुछ ऐसा ही है। लेकिन आपको बता दें कि पल तो पल की बात नहीं होती, ये मोहब्बत जिंदगी भर का एहसास बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, और उनकी मुस्कान आपकी जान बन जाती है। और फिर लगता है कि भाई, इस मुस्कान के आगे तो कोई बात ही नहीं बनती, बस वो मुस्कुरा दे और हमारा दिन क्या, रात क्या, हमारे ख्वाब क्या, सब हमारी जिंदगी ही बन जाए। अगला गीत होगा परिंदा फिल्म से आशा जी और एक बार फिर से सुरेश वाडकर की आवाज आप सभी के लिए।

दोस्तों, कहा सुना और माना तो ये जाता है कि प्यार, इश्क और मोहब्बत अंधी होती है। इसमें अक्सर लोग बिगड़ जाते हैं, तो हम तो बस इतना कहते हैं कि इतना प्यार ना देना कि बिगड़ जाए हम, थोड़ा सा दर्द भी देना ताकि सुधर जाए हम। अगला गीत होगा फिल्म बोल राधा बोल से। इस गीत के बाद 11 बजे होंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर, जिसे आपने ट्यून इन किया है 100.1 MHz पर। 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत संग्रह होंगे आपके मैं अर्पणा। फिलहाल आप लीजिए इस गीत का आनंद और 11 बजे सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को

0: हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. Namaskar, good evening and welcome to Market Mantra. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और स्टूडियो में आज हमारे साथ तमाम खबरों पर चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ।

0: शीर्षक उद्यान रे। उद्यान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद निखिल जी।
0: और सबसे पहले डालते हैं नजर मुख्य समाचारों पर।
2: यस, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अराउंड 1%, सेंसेक्स प्लंजेस ओवर 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,450। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज, ब्रेंट क्रूड क्रॉसेस 100 US डॉलर per barrel mark, and Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की गिरावट। सेंसेक्स 800 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,450 से नीचे आया। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।

0: Well, friends, before we move ahead, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग तीन महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक यानी 1.1% लुढ़क कर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक यानी 0.9% नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी आधा आधा प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended lower for the third consecutive session today. The Sensex plunged 813 points or 1.1% to close at 74,764. The Nifty also shed 204 points or 0.9% to settle at 23,432. In the broader market on the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices also declined 0.5% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियां HCL टेक 4.5%, इंफोसिस 4.4% और टेक महिंद्रा 3.9% रही। वहीं सबसे ज्यादा लाभ वाली कंपनियों में अडानी पोर्ट्स 3.7%, टाटा स्टील 2.4% और ट्रेंड 1.1% के बढ़त में थी।
0: A look at the sectoral indices. Well, in the sectoral indices on the BSE, 20 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, IT fell 3.2%, focused IT dropped 3%, and realty lost 2%. In contrast, middle advanced 1.9%, hospitals gained 1.4%, and utilities added 1.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,600 companies declined, 1,792 advanced, and 196 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ। उदयन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर बाजार को हम देखें तो तीन महीने पहले के स्तर पर हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये चिंता का विषय है या ये एक मार्केट में सर्टेन ऐसी स्थिति जिस पर आगे आकर के हम बढ़त पा सकते हैं या इससे भी नीचे जाने की संभावना है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि तेल के बढ़ते दामों की वजह से जो खाड़ी में संघर्ष चल रहा है उसके वजह से तेल के दामों में जो उछाल आया है और एक $100 प्रति बैरल का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसको मेरे ख्याल से आज रीच किया गया है, तो वो एक चिंता अपनी जगह में बनी हुई है। और इसको अब जो बाजार है विश्व स्तर में लोगों का अब ये मानना हो रहा है कि ये जो संघर्ष है ये अब बहुत जल्दी ये रुकने वाला नहीं है। और जो दाम है, सबसे इम्पोर्टेंटली कच्चे तेलों के दाम में जो एक कमी, जो एक सस्टेन्ड कमी है, वो शायद देखने को फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 अगले साल में शायद तब तक का इंतजार करना पड़े। और ये आपूर्ति से जुड़ी हुई बात है और जब तक वो संघर्ष खत्म नहीं होगा तो आपूर्ति में जो जो कैपेसिटी में जहां भी रिफाइनरी होती

0: जो मालवाहक जहाज हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सप्लाई रिलेटेड इश्यूज हैं, ये रातों रात ठीक नहीं होते हैं, तो इसमें वक्त लगेगा। तो वो बात अब मार्केट्स फैक्टर इन कर रही हैं। दूसरी बात आपने बताया कि ये निफ्टी 50, तो कई मुझे एक सोच जो काफ़ी विश्लेषक कर रहे हैं वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। वो ये है कि वो उनका ये कहना है कि आप हम लोग निफ्टी 50 को देख के मार्केट्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं,
1: जी
0: जो कि कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन वाले जो हैं उसी से डिपेंड, वो वहीं से निकलता है। पर लोगों का दावा है, दावा नहीं, ये तर्क है, और वो उसमें डेटा भी है कि दूसरी जो कंपनी जो वो 50 निफ्टी 50 से आगे जो मिड कैप की टेरिटरी में चली जा रही है, तो उनके अगर आप रिजल्ट्स देखें, उनके अगर फाइनेंशियल्स देखें, वहां पे काफी प्रगति नजर आ रही है, और वो आपके शेयर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इंडियन जो वित्तीय संस्थान है जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो भी वहां पे खरीदारी कर रहे हैं, तो वो लार्ज कैप में नहीं कर रहे हैं, जो कि निफ्टी 50 तो है ही वो, पर वो उधर उस साइड में जा रहे हैं। तो क्योंकि वहां पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि वहां पे निवेश हो रहा है, तो आप पाएंगे कि वो जो इंडिया, हालांकि आज प्रभावित तो वो भी हुए नेगेटिवली, जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा, पर वहां पे लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। तो आप 1 ईयर 6 मंथ अगर रिटर्न देखें, जो कि देखना नहीं चाहिए
1: जी
0: इक्विटीज में, 3 ईयर देखें, 2 ईयर देखें, 5 ईयर देखें, तो सारे पीरियड्स में अगर देखें, रिस्क एडजस्टेड देखें, सब में वो आप बेहतर करते हुए पाएंगे। तो उनका तर्क ये है, और ये मेरे को काफी आकर्षक लगता है, तो ये श्रोताओं को बताने लायक बात है।
1: लेकिन इन सब के बीच में आईटी शेयर्स में गिरावट हम जो देख रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आईटी के फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसके बाद भी हम लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं।
0: तो वो कारण सीधा तो मैं नहीं बता पा रहा, क्योंकि मैंने विश्लेषण किया नहीं है,
1: जी,
0: पर मेरे को ताज्जुब ना होगा कि अगर ये इसका कारण जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उनकी सेलिंग की वजह से हो, क्योंकि वो भी बाहर लेके निकल रहे हैं।
1: जी
0: हमें याद रखना पड़ेगा कि भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट वो कहते हैं, तो जब वो आ रहे हैं तो एक रिस्क ज्यादा होता है, फिर करेंसी से जुड़ी हुई रिस्क होती है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से
1: जी
0: जुड़ी हुई रिस्क होती है, जो कि हमारे केस में नहीं, हम हमारी करेंसी के केस में है, और हमारी करेंसी को दबाव में है। तो वो जब आप देखते हैं तो वो एक हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और यील्ड्स जो है लोअर रिस्क यील्ड्स जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, जो कि
1: जी
0: बहुत सेफ माने जाते हैं, क्योंकि यील्ड वहां पे बेहतर हो रहे हैं। तो कोई फंड मैनेजर होगा इंटरनेशनल, वो ये देखेगा कि ये रिस्क लेके मैं ये उठाऊं या मैं इधर लगाऊं, तो वहां पे एक जो कंपैरिजन है वहां पे वो फेवरेबल हो रहा है। तो कई बार जो पुल आउट हो रहा है वो कुछ दूसरे मार्केट्स में भी जा सकता है, जैसे आप साउथ कोरिया में आप दिलचस्पी रख सकते हैं
1: जी
0: अगर आप इंटरनेशनल फंड मैनेजर है साउथ कोरिया दूसरे मार्केट्स में। पर बाकी जो है आप इस तरफ भी देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि नहीं भाई रन अप काफी हो गया गोल्ड और दूसरे एसेट क्लासेस में, हम यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए, तो मुझे ना ताज्जुब हो कि ऐसी बात हो रही हो
1: जी
0: और जिसकी वजह से आप ऐसे रिजल्ट्स देख रहे हैं।
2: Then Nikhil mentioned IT. I think he touched a raw nerve, so to speak. Could it also be because of the fact that US, much of our IT export is in the US and Europe, and they are having high inflation? It's about 3.4% in US, which is much beyond their digestible limit. Do you think that could be a factor as well?
0: It could be, but see, you will not. I mean, I know I'm an eternal optimist, but one has to also give. One has to look at it also with equanimity, right? See, is that the whole whiplashing that has been happening about Indian IT is that, oh, they are not coming up with foundational models and it's only the Mag-7 or whatever names you want to give. They are not into making chips. They are not coming up with the AI. Foundational models, or they are not adapting like the way Chinese are doing. Is that the only part of the chain that will exist in AI? Okay, who are the people who are going to be using AI? We have got the largest population and we have got the largest mobile penetration. Who do we think are going to be using the AI, right? And who do we think, where will the innovation will be happening? Where people are using it,

0: सोर्सेज हैं वो है नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो गई है. और यूं तो हम रिन्यूएबल्स हमारे जो नॉन पेट्रोलियम वाले जो हमारे सोर्सेज हैं वो हम वहाँ पे बेहतर कर रहे हैं रिन्यूएबल्स में, पर अभी भी हमारे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. तो वो सीधा इम्पैक्ट करेगा, और वो क्योंकि ये मार्केट मंथ प्रोग्राम है तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल्स में असर होने के अलावा मेरे को तो कोई वो नज़र नहीं आता कि उसमें असर आप देखेंगे. और कुछ दिन तक रहा तो वो तो आप ज़रूर पाएंगे, हो सकता है कुछ उन कुछ केस में इमीडिएटली देखें, कुछ केस में कैस्केडिंग इफेक्ट होगा आगे चल के मिलेगा, और कुछ तो ऑब्वियसली पास ऑन हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे कंपनीज, तो वो इम्पैक्ट है. बट ये भी मैं कहता चलूं, भारत क्योंकि हम ऐसे पीरियड से गुजर चुके जहाँ पे मुद्रास्फीति होती रही, तो हमारे जो मैनेजर्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट में फिस्कल को मैनेज करें या मॉनेटरी मौद्रिक नीति को मैनेज करें या कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेज करें या लघु उद्योग में करें, हमें आदत है, प्रैक्टिस है
1: जी.
0: ये प्रैक्टिस बाकियों को नहीं है दुनिया में. तो वो टीका जो है ना मुद्रास्फीति के विरुद्ध जो टीका है वो हमें लग चुका है, तो इसमें से हम बेहतर उभरेंगे और उभर जाएंगे.
1: उधर एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज की स्थिति को देखें जहां पर हम देख रहे हैं कि तीन महीने के पहले के स्तर पर यानी नीचे के स्तर पर आ चुके मार्केट में, इन्वेस्ट करने के हिसाब से या मार्केट में कुछ खरीदने के हिसाब से कैसा समय है?
0: फैंटास्टिक समय है, पर आप वो सब ना करें. आप कोई भी वक्त जो है निवेश जो है वो डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हम हर रोज सुबह व्यायाम करते हैं
1: जी.
0: कुछ चीजें जो है नियमित रूप से करते हैं, तो जैसे पौष्टिक खान पान करते हैं, ये वो आदत की तरह है. आप उस ये नहीं कि आपने एक दिवाली या दशहरे का भोज की तरह आपने निवेश किया कि हमने साल में एक बार करें, वो अगर करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है. आप नियमित रूप से करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हर मार्केट में मिलती हैं. और ये जो दो साल वाली बात है, यस इट इज दो साल दो महीने व्हाटएवर आप कहेंगे, इट इज डजंट लुक नाइस, देखने में लगता नहीं कि ऐसा लगता है हम वहीं बैठे हैं, हमने एक्स्ट्रा रिस्क ले लिया फिर कहीं और डाल देते तो अच्छा होता. पर दिक्कत यह है कि अगर आप अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, उसकी अपनी यूटिलिटी होती है, अगर फिक्स डिपॉजिट में डालते, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को लड़ने के लिए हथियार सिर्फ इक्विटी ही है, इसलिए आपको जो पैसा आपको फॉरन नहीं चाहिए आप वहां लगाएं, उसको छेड़े मत. मैं कई लोगों को देख चुका हूं वो ना क्या करते हैं, हर हर घंटे देखते रहते हैं, वो नहीं करना. डाल के जैसे आप एक पौधे के वो प्लांट डालते हैं और वेट करते पानी देते रहते हैं, वही काम निवेश के साथ करना है.
2: राइट, सो हैव अ डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट. राइट, ओके, मूविंग ऑन. सॉरी, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 10,700 करोड़ रुपीज. ब्रीफिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट Casting Minister Ashwini Vaishnav said that these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of the Indian Railways by about 656 kilometers. While the Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, increasing the existing network of the Indian Railways by about 540 kilometers. The total estimated cost of the projects is more than 10,021 crore and they are planned to be completed by up to 2029-30. Well, Mr. Vaishnav also informed the government has decided to four lining of all the 7 high density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. In reply to a question on the Mumbai Ahmedabad bullet train project, Minister Ashwini Vaishnav informed that the bullet train service will commence next year.
3: बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन 2027 में फिक्स है. कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है. पहले सूरत से बिलीमोरा का 50 किलोमीटर का सेक्शन का प्लान था, अब उस प्लान को और बढ़ा के 100 किलोमीटर है सूरत से वापी. वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा. और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी टेस्टिंग के लिए.

0: one cannot be going up at the cost of the other. Mm-hmm. So you need these dedicated stuff so that if one gets affected, the other doesn't. So you will need these kind of expansion because, you know, if you produce something, you need to get to the port fast so that you can export fast.
1: Absolutely.
0: And compete better.
1: Yeah.
0: So these are all things which foreign direct investment is also dependent on.
2: आगे बढ़ते हैं ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले 9 और 10 सितंबर को मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक हो रही है. इस वर्ष ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक की थीम है मजबूती नवाचार सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण. इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में होने वाली इस बैठक से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के मुख्य नतीजों की समीक्षा भी की थी. उदयन, ब्रिक्स की इतनी बड़ी मीटिंग हमारे यहाँ देश में होने जा रही है, कई सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना है, खासतौर पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ट्रेड के हिसाब से देखें, खासतौर पे इंडियन ओशियन की हम जब बात करते हैं तो काफी कुछ नजर आता है कि यहां पर हमें नजर आएगा आगे चल करके. इंडो पैसिफिक की भी यहां पर बात होती है.
0: देखिए, ब्रिक्स में जो है एक समन्वय करने की कोशिश की जा रही है फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच में. एक तो ट्रेड है
2: जी.
0: जो कि हो रहा है और वो होता रहेगा, पर फाइनेंशियल सिस्टम मान लीजिए एक कंट्री ब्रिक्स में एक कंट्री दूसरी कंट्री को पेमेंट करती है, आदान प्रदान हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या खुद के करेंसी में, खुद के पेमेंट सिस्टम में, इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है, पर क्या हम दूसरे सिस्टम्स हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं? कुछ कंट्रीज अपने हिसाब से कर रही हैं, म्यूचुअली आपने किया. हमारे जो जैसे यूपीआई इस्तेमाल होता है, क्या हम यूपीआई जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं बाकी दूसरे देश हमारे यहाँ इस्तेमाल किया, हमने उनके देश में किया? अगर ऐसा हो जाता है, ब्रिक्स इतना बड़ा, इतनी बड़ी मानवता का इतना बड़ा हिस्सा को कवर करता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी भी हम जो सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म में डिपेंड करते हैं वो यूरोप एंड अमेरिकन सेंट्रिक है. तो वहां से थोड़ा सा अगर एक कुछ हमें अल्टरनेटिव्स विकल्प और मिल जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है उसको मेंटेन करके पॉलिसी पोजिशन और इजिली हम ले सकते हैं.
2: आगे बढ़ते हैं एशियाई शेयर बाजारों में. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में आज 1.4% की बढ़त रही, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरकर बंद हुआ. उदयन जी, अभी अगर हम बात करें चाइना की इन्फ्लेशन की, तो लगभग 3.8% टू 3.5% तक की बात हो रही है आगे बढ़ने की. ये किस तरह के हालात हैं, मतलब 3.5% से 3.8% तक जाने के जो हालात हैं, इनका क्या असर देखने को मिलेगा?
0: देखिए, ये उनका कंज्यूमर के हिसाब से और प्रोड्यूसर के हिसाब से अलग अलग चल रहा है. कंज्यूमर में लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि उनका भी, उनके भी डोमेस्टिक डिमांड चैलेंजेस हैं कुछ कुछ इलाकों में, जो उनके भी जो यूथ जनरेट हो रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से नहीं हो रहा है. तो वर्ल्ड ओवर ये एक चैलेंज है. कई लोगों का आर्ग्यूमेंट मतलब कॉन्वर्सेशन में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे भारत को ही ये चैलेंज है. ये चैलेंज हर जगह है और सरकारें अपने हिसाब से वो डील कर रही हैं. तो डोमेस्टिक में जो आप अगर उनका रिटेल देखेंगे, मेरा हंच ये है कि वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा. ये कुछ और इनपुट कॉस्ट है उसके वजह से हुआ होगा, या कुछ और इश्यूज हैं उन जिनके वजह से हुआ होगा. अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखें, वो बहुत दिलचस्प सिचुएशन, दिलचस्प मतलब हमारे लिए अगर हम वहां रह रहे होते वो उतना दिलचस्प नहीं होता. वो ये है कि उनके एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, पर उनका डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इंटरनल जो डायनामिक्स है वो, उसका जो अगर हेल्थ चेकअप लेंगे वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो उनके, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स एक्सेस कैपेसिटी है, दूसरी जगह में उन्होंने एक्सपोर्ट किया, हर जगह में उन्होंने उनका ट्रेड बैलेंस उनकी तरफ और मूव कर गया, क्योंकि वो यूएस से हटके दूसरी जगह कर रहे हैं, वो वहां पे ब्रिलियंट कर रहे हैं. तो कई बार क्या होता है, हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, पर आपको जो पिक्चर है वो संतुलित एक बैलेंस्ड वे में देखना पड़ेगा. तो इंटरनल डिमांड का वहां पर चैलेंज है. तो ये जो प्रोड्यूसर प्राइसेस, मेरे को ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इनपुट प्राइसेस जो उनके पास पहुंची है, ऑल्दो वो सोर्सिंग बहुत अच्छा करते हैं, मेटल्स वगैरह जो है वो सीधे मान लीजिए अफ्रीका, इंडोनेशिया जहां से सोर्स है, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेन बना, सप्लाई चेन बना रखे हैं, पर फिर भी इसका इंपैक्ट जरूर हो रहा होगा.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% की बढ़त के साथ 1,53,486 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, और चांदी 0.6% बढ़कर 2,35,249 रुपए

0: प्रति किलोग्राम पर थी। उद्यन इस वक्त निवेशकों को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, निवेश करने की या सब्र करने की या थोड़ा बढ़ाने की?
1: नॉर्मल काम करने के, कुछ स्पेशल नहीं करना। निवेश जब आप करते हैं वो बोरिंग होना चाहिए। एक्सरसाइज की तो डेली एक्सरसाइज में जो करते हैं, हर रोज आप नया एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वही प्राणायाम करेंगे, जो भी आसन करते हैं, जो भी जिम में जाते हैं, तो जो रेगुलरली करते हैं वही कीजिए, और बोरिंग चीजें करेंगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलेंगे।
2: सो समटाइम्स डूइंग नथिंग कैन आल्सो बी अ स्ट्रेटजी।
1: ओह एब्सोल्युटली।
2: ऑलराइट फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बिफोर दैट, यस, थैंक यू वेरी मच उदयन फॉर जॉइनिंग अस एट आकाशवाणी एंड गिविंग अस an insight into the markets. All right, the headlines now. Benchmark domestic indices decline around 1%. Sensex plunges over 800 points. Nifty settles below 23,450. Global crude oil prices surge. Brent crude crosses $100 per barrel mark. And Union Cabinet approves multi-tracking railway projects across 9 states. And that's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. So, namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। आज आपके साथ है अर्पना। 11:41 हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मन मीत की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज के साथ। संगीत शंकर जयकिशन का है, फिल्म का नाम है ससुराल। और इस गीत के बाद अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर से मोहम्मद रफी की आवाज में होगा, साथ दिया है आशा जी ने और संगीत पद है ओपी नैयर का। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत होगा, फिल्म का नाम है नया दौर। तो दो गीतों का बैक टू बैक आप आनंद लेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP ट्रैफिक देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: ग्यारह बजकर 50 मिनट और 25 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर गीत मेरे मन में। अगला गीत होगा लता जी की आवाज में, मदन मोहन का संगीत है और फिल्म का नाम है मेरा साया।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: ग्यारह बजकर 56 मिनट और 25 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आशा जी की आवाज में।

होगा। ओपी नैयर का संगीत है, फिल्म का नाम है कश्मीर की गली। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIST संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन का विषय है विकासशील देशों के बीच सहयोग के जरिए शुष्क क्षेत्र की कृषि में बदलाव। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र के जुड़े साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केटप्लेस को चलाता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने उन दो कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है जिन पर ज़िनबी गारंटी के कामकाज के लिए जरूरी डिजिटल करेंसी, प्रौद्योगिकी और दूसरी वित्तीय सेवाएं देने का आरोप है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-track projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway.

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू है आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कर रही हूँ हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए खूबसूरत गीतों का,

गुलदस्ता भी साथ में। कि दिल तो ले ही लिया है, अब जान का क्या इरादा है, साफ साफ कह दो, क्यों धड़कने को तड़पाते हो।

जुबान से कुछ ना कहा, बस आंखों से बयां किया। जुबान से कुछ ना कहा, बस आंखों से बयां किया। दिल की ये कहानी या तुमने समझी या फिर हमने जानी।

तेरे बिना तो ये जिंदगी एक सूने रास्ते जैसी है, तेरे बिना तो ये जिंदगी एक सूने रास्ते जैसी है। कदम तो चलते हैं मगर मंजिल का पता नहीं होता।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और कार्यक्रम है निशिगंधा। अंजू है आपके साथ।

अपनी नजर से खुद को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, अपनी नजर से खुद को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। कभी मेरी नजर से देखो, तुम अपनी कीमत खुद ही जान जाओगे।

अब तो दूर जाने का सोचना भी एक सजा जैसा लगता है। अब तो दूर जाने का सोचना भी एक सजा जैसा लगता है। तुमसे मिलकर ही तो मुझे ये जहां अब अपना जैसा लगता है।

दुनिया की हर बात हर फसाना भूल जाते हैं हम। दुनिया की हर बात हर फसाना भूल जाते हैं हम। जब तुम सामने आते हो तो खुद का ठिकाना भी भूल जाते हैं हम।

जमाने भर की दौलत और शोहरत फीकी है इसके आगे, जमाने भर की दौलत और शोहरत फीकी है इसके आगे, तेरी एक निगाह के सिवा हमें और क्या चाहिए।

खामोशियां अब हमसे झेली नहीं जाती, खामोशियां अब हमसे झेली नहीं जाती कि ये दिल तड़प कर पुकारता है तुम्हें जब भी घुटने टेकता है किस्मत के आगे।

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। आप ही होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम फिर आपसे मिलेंगे 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बनी। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

0: ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICAR-ISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 800 से अधिक वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र से जुड़े लोग साझेदार भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बब अल मंदाब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आवर्जन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। अमेरिका ने चीनी भाषा वाले प्लेटफॉर्म ज़िनबी गारंटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस पर आरोप है कि वह अमरीकियों को निशाना बनाने वाले साइबर स्कैम, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गैर कानूनी मार्केट प्लेस को चलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे स्कैम सेंटर हर साल अमरीकी पीड़ितों से अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन विदेशी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों में एकजुट है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 km and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi, in a social media post, highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Parvari elevated corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, where infrastructure is good, there is capital investment and where there is capital investment, employment is created. He said several highway, bridge, flyover and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Parvadi corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. New Delhi and Colombo yesterday exchanged Memoranda of Understanding, that is MOUs, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defence guns will strengthen the air defence architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalize the NCC Youth Exchange Program between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anurag Kumar Dissanayake in Colombo. Municipal Corporation of Delhi MCD has intensified its enforcement drive against dangerous buildings, unauthorized constructions and violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws across all 12 zones of the city. As part of the intensive enforcement exercise carried out today, 34 demolition actions were undertaken across all 12 zones of MCD. In addition, 17 properties were sealed, 22 show cause notices were issued and 4 demolition orders were passed. MCD had also carried out enforcement action yesterday, during which 17 properties were demolished and 5 other properties were sealed for violations of the Master Plan of Delhi and building bylaws. Under a massive survey of PG buildings across the national capital, approximately 1,243 buildings where PG facilities are operational have been identified, accommodating approximately 24,000 occupants. The survey exercise is continuing across Delhi and directions have been issued to complete the survey by today. India ended their campaign at Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad on a high note, winning a total of 15 medals, including 4 gold, 3 silver and 8 bronze, with 2 gold and 4 bronze medals on the final day yesterday. And that is the end of this news bulletin.

0: दोस्तों समय हुआ है 1:11:07। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकर आई हूँ बहुत ही मधुर गीत कार्यक्रम गीत सुहाने में। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। हजार चेहरे हैं इस दुनिया के मेले में, हजार चेहरे हैं इस दुनिया के मेले में, पर सुकून सुकून सिर्फ तेरी तस्वीर देती है तन्हाई के झेले में।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस

तुम अपनी मासूमियत को यूं सरेआम ना दिखाया करो, तुम अपनी मासूमियत को यूं सरेआम ना दिखाया करो, लगा लो नज़र का टीका और इस दिल की धड़कन को ना बढ़ाया करो।

इबादत की तरह चाहा है मैंने तुम्हें हर लम्हा, इबादत की तरह चाहा है मैंने तुम्हें हर लम्हा, मेरी मोहब्बत पे शक ना करना क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं।

तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की इस दिल ने, तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की इस दिल ने, पर हर धड़कन ने रुककर कहा कि तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं।

नजरें जहां भी जाएं बस तुम्हारा ये अक्स दिखाई देता है। नजरें जहां भी जाएं बस तुम्हारा ही अक्स दिखाई देता है। हर पल यही लगता है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। जब भी हवाओं में कोई साया लहराया सा लगता है।

ना कोई पर्दा ना कोई बनावट तुम्हारे चेहरे पर, ना कोई पर्दा ना कोई बनावट तुम्हारे चेहरे पर, तेरी सादगी ने ही जो जादू किया है मेरे इस दिल पर।

चांद भी तुम्हें देख नजरें चुराता है और बादलों के पीछे छुप जाता है। उसे डर है कि जमाना तुम्हें देखकर कहीं उसे न भूल जाए।

पास बैठो कि मैं अपने दिल की बात कह दूं, पास बैठो कि मैं अपने दिल की बात कह दूं, खुदा के लिए रुक जाओ कहीं रात ढल ना जाए।

दोस्तों भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर फिर से आपके साथ रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाले बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व विकास सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास और अवसरों को बढ़ाने के लिए ऋण, बाजार और व्यापार के स्पष्ट नियमों तक आसानी पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा, कौशल और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से उन्हें देश के विकास का वाहक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। यह चेतावनी ईरान के तेल टैंकरों पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इनकी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद से कार्रवाई करने की अपील की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया है। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमय का। मैं हूं अंजू आपके साथ, लेकर बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

हर एक रुत में तेरा इंतजार करते हैं। न तुम समझ सकोगे जिस कयामत तक हम तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं।

तलाश में निकले थे उसकी और हम खुद को ही खो बैठे। तलाश में निकले थे उसकी और हम खुद को ही खो बैठे। एक ही दिल तो था हमारे पास, वो भी हम उसके नाम कर बैठे।

नज़रें चुराने की उम्र में नज़रें मिलाने का दौर आया है। नज़रें चुराने की उम्र में नज़रें मिलाने का दौर आया है, जैसे कह रहा हो कि अब दिल हारने का वक्त।

तेरी तकदीर से जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं, तेरी तकदीर से जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं, खुदा ने मेरी हर दुआ में सिर्फ तुझे ही तराशा है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। जल्द ही आपसे जब मिलूंगी, क्योंकि अब स्टूडियो में आ चुकी हैं भारती। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आगे का सफर रहेगा हम रहे के साथ, भारती के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक की वापसी का भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पिछले 10 दिनों में देश में अलग अलग जगहों पर 6 बड़ी कार्रवाई की। इन छापेमारी में 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित इंडियन स्टार कछुए, 12 जिंदा टोके गेको, एक

0: की छिपकली, लगभग 24 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क और करीब 500 ग्राम बाघ की हड्डियां जब्त की गईं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन ऑपरेशनों के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DRI के अनुसार जब्त की गई ये अलग अलग चीजें संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी को उजागर करती हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण कल संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। कल प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 20,800 crore rupees अक्रॉस 9 स्टेट्स। द प्रोजेक्ट्स विल कवर अराउंड 1,196 किलोमीटर एंड आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव रेल कनेक्टिविटी, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. These projects will add about 540 kilometers to the existing Indian Railways network. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnaw said, the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometers to the existing railway network. In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, the Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. Prime Minister Narendra Modi in a social media post highlighted that the 5 railway projects will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari yesterday inaugurated the 6-lane Parvari Elevated Corridor in Goa, stating that improved infrastructure and connectivity will attract investment, create jobs and boost economic growth. The Union Minister said, where infrastructure is good, there is capital investment, and where there is capital investment, employment is created. He said several highways, bridges, flyovers and port connectivity projects are underway or nearing completion in Goa. He highlighted progress on NH66, NH748 and airport connectivity, along with proposals to improve links between North and South Goa. The 5.15 km Parvari corridor, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to carry 75,000 to 80,000 vehicles a day and take around 60% of traffic off the existing road. The Department of Land Resources (DOLR) under the Ministry of Rural Development will launch the operational guidelines for the Digital India Land Records Modernization Program (DILRMP 3.0) today. The ministry informed that the upcoming DILRMP 3.0 will roll out as a central sector scheme with an anticipated financial outlay of 565.50 crore rupees. The department will also implement this ambitious 5-year roadmap across all states and union territories. The launch event will unveil the co-version vision of DILRMP 3.0, which shifts the focus from simple digital record keeping to establishing a comprehensive GIS-enabled land stack. The ministry added that this digital public infrastructure will seamlessly integrate maps, land ownership details, property registration, and court cases into a single interoperable ecosystem. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will address 3-day Global Dryland Congress 2026 in New Delhi today. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that jointly organized by the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, and the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, that is ICRISAT. The event is themed on transforming dryland agriculture with South-South cooperation. It added that the event will be held at the National Agricultural Science Complex and doubles as a milestone celebration of 50 years of ICAR-ICRISAT partnership. In Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team advanced to the semi-finals after a dominant 15-0 victory over Chinese Taipei at Moqi in China yesterday. Captain Anmolika led the charge with a sensational 6-goal haul, all coming from penalty corners, as defending champions India recovered from a goalless opening quarter to overwhelm their opponents in the remaining 45 minutes. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की।

रात जितनी खामोश होती जाती है, दिल की आवाज़ उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह कोई चुपचाप हमारे पास बैठा महसूस होता है। कहने को तो ये सिर्फ एक एहसास है, मगर कभी कभी यही एहसास पूरी दुनिया से ज़्यादा अपना लगता है। प्यार शायद वही है जहाँ शब्द कम पड़ जाएं और आँखें बहुत कुछ कह जाएं।

कभी लगता है जैसे प्यार भरा मौसम अचानक दिल की खिड़की पर दस्तक दे गया हो, हवा में किसी की याद की खुशबू हो और मन पुराने सपनों की गलियों में फिर से टहलने लगे।

हमने जो सपने देखे थे उनमें कुछ रंग समय ने भर दिए और कुछ रंग अब भी आपकी यादों के पास सुरक्षित हैं, क्योंकि कुछ सपने आंखें खुलने के बाद भी दिल में सोते नहीं, वे उम्र भर हमारे साथ चलते हैं।

हम सफर सिर्फ वह नहीं जो सफर के साथ चले, हम सफर तो वह है जो दूर होकर भी हर मोड़ पर अपने होने का एहसास दे जाए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कभी सुनी बहारें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। फूल खिलते हैं, हवाएं चलती हैं और दिल पूछ बैठता है, क्या कोई हमें भी उसी तरह याद कर रहा होगा जैसे हम उसे याद कर रहे हैं।

मन भी कोरे कागज जैसा होता है। फिर कोई आता है और उस पर अपने प्यार की ऐसी कहानी लिख जाता है जिसे मिटाने की कोशिश भी यादों को और गहरा कर देती है।

शायद प्यार की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाश लेना और बिना कहे भी एक दूसरे को समझ लेना।

कुछ रिश्ते तो पलकों के पीछे छिपे रहते हैं, दुनिया से अनकहे मगर दिल से बेहद करीब। आंखें बंद करो तो वही चेहरा सामने, वही मुस्कान यादों में और वही आवाज दिल के किसी कोने में सुनाई देती है।

इस रात सुहानी में कुछ पल उन खूबसूरत एहसासों के नाम करें जो हमारे पास नहीं होकर भी हमारे दिल के सबसे करीब हैं। गीतों की मिठास के साथ, यादों की खुशबू के साथ और उस प्यार के साथ जिसे कहने के लिए शायद शब्दों की नहीं बस एक धड़कते हुए दिल की ज़रूरत होती है।

और छोड़ के जा रही हूँ मैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ आपको, और जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर। जी हाँ, फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है, जिसके तहत उपभोक्ताओं के शिकायतों को तय समय सीमा के भीतर समाधान के लिए संबंधित कंपनियों को डिजिटल रूप से भेज दिया जाता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बगैर प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में हॉर्मूज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म नया संसार से लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार चित्रगुप्त, गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म नसीब अपना अपना से आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म एक फूल दो माली से रविशंकर शर्मा की आवाज़ में, संगीतकार रविशंकर शर्मा, गीतकार रविशंकर शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म नजराना प्यार का से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार विठल भाई पटेल, संगीतकार हेमंत भोसले।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

प्रोग्राम का आखिरी गीत है फिल्म साजन साथ निभाना से उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, संगीतकार आनंद मिलन और गीतकार समीर। और छोड़ के जा रही हूँ मैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ, जल्द मिलूंगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगों का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक कन्वर्जेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से काम करती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान की इजाजत के बिना नए प्रतिबंधित क्षेत्र में आएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहब्बी ने कहा है कि जो जहाज बिना इजाजत के इस क्षेत्र में आएंगे उन्हें बाद में होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है और उन्हें बंदरगाह, बीमा और दूसरी सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से, जबकि चौथी सीड कोको गॉफ का सामना कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना से होगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve connectivity, ease congestion, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, 5 of the projects, covering 11 districts in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, will add about 540 kilometers to the existing railway network at a cost of over 10,021 crore rupees. 3 other projects, costing more than 10,700 crore rupees, will cover 14 districts in West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding around 656 kilometers to the network. On the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Mr. Vaishnaw said, the service will commence next year. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. Mr. Goyal stressed the need for easier access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. The Department of Land Resources DOLR under the Ministry of Rural Development will launch the operational guidelines for the Digital India Land Records Modernization Program DILR MP 3.0 today. The ministry informed that the upcoming DILR MP 3.0 will roll out as a central sector scheme with an anticipated financial outlay of 565.50 crore rupees. The department will also implement this ambitious 5-year roadmap across all states and union territories. The launch event will unveil the core vision of DILR MP 3.0, which shifts the focus from simple digital record keeping to establishing a comprehensive GIS-enabled land stack. The ministry added that this digital public infrastructure will seamlessly integrate maps, land ownership details, property registration and court cases into a single interoperable ecosystem. India will participate in the 11 new skill categories for the first time at the 48th World Skills Competition to be held at Shanghai in China from the 22nd to 27th of this month. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship said that Team Skill India will participate in 63 out of 64 skills with a contingent of nearly 70 competitors. The ministry added that it makes it one of India's largest and most diverse representations at World Skills to date. The government is preparing to introduce a new and stringent Seed Act aimed at protecting the country's farmers from the losses caused by fake and substandard seeds. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will hold a high-level consultation with senior leaders of major farmer organizations from across the country in New Delhi today in this regard. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will address 3-day Global Dryland Congress 2026 in New Delhi today. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that jointly organized by the Indian Council of Agricultural Research and the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. This event is themed on transforming dryland agriculture with South-South cooperation. Prince Rahim Aga Khan V, the 50th hereditary Imam of the Ismaili Muslim community and chair of the Aga Khan Development Network, has arrived in New Delhi on his maiden visit to India. External Affairs Ministry spokesperson Ardhir Jaiswal said, the visit will provide an opportunity to review ongoing cooperation with the Aga Khan Development Network in social development and heritage preservation and explore collaboration on development and community initiatives. In the US Open, Americans Ben Shelton and 11 seed Francis Tiafoe have set up an

सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन ईश्वर की ओर से मिला एक नया अवसर है। बीती बातों का बोझ छोड़कर आज की शुरुआत विश्वास और मुस्कान के साथ करें। मन में उजाला हो तो साधारण सा रास्ता भी खूबसूरत सफर बन जाता है। तो जी हाँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी की।

कृष्ण का स्मरण जीवन में प्रेम, सरलता और मुस्कान भर देता है। जैसे कृष्ण की बांसुरी बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी ओर बुलाती है, वैसे ही हमारा व्यवहार भी प्रेम और अपनेपन से भरा होना चाहिए।

ईश्वर से केवल सुख मांगना ही क्यों, ऐसी शक्ति भी मांगी कि कठिन समय में हमें टूटे नहीं, सही रास्ते से भटके नहीं और दूसरों के लिए भी सहारा बन सकें। मन मजबूत हो तो परिस्थितियां भी बड़ी नहीं लगती।

जीवन की दिशा हमेशा परिस्थितियां तय नहीं करती, हमारे विचार और कर्म भी उसे दिशा देते हैं। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहे, आज ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन में भी उजाला बढ़े और किसी दूसरे के जीवन में भी थोड़ी सी खुशी आए।

कितनी सुंदर कल्पना है, हम जिस राह से गुजरें वहां उदासी कम और मुस्कान अधिक हो जाए। हमारी एक मीठी बात, एक छोटी सी मदद या एक सच्ची मुस्कान किसी के पूरे दिन को बेहतर बना दे।